ये तो बता वो चुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन सब तलक छुपेगी, ये तो बता चुप

0: दुनिया तो खबर हो जाती है, दिल है के धड़कता रहता है।
1: इधर मत आना, मैं कपड़े बदल रही हूँ।
2: ओ माफ करना, भूल गया था। अच्छा तुम कपड़े बदल लो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ।
1: ए क्या हुआ?
2: हुआ ये मीनू, हमारे दरमियान ये साड़ी एक दीवार बन गई है।
1: अगला कहेगा, इसे दीवार कहता है।

0: तो कोई दीवार नहीं है ना?
1: नहीं, अब कोई दीवार नहीं मीनू।
0: मीनू नहीं, मीना।

0: कहीं दाग न लग जाए।
1: ठीक कहती हूँ, कहीं आग न लग जाए।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को

0: पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा, हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है, हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है, आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे, ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है, क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

पुणेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लेट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने मन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है श्रेष्ठ वृद्धि का निर्माण कैसे करें। वृद्धि का अर्थ होता है रुझान, लालसाई आदि, जो किसी भी विषय किसी भी दिशा में हो सकती है। वृद्धि का निर्माण संकल्पों से होता है और संकल्प हमारी आत्मा में संस्कारों, संबंध, संपर्क, वातावरण, घटनाओं आदि के प्रभाव से निर्मित होते हैं। हमारे चयनित संकल्पों से हमारी वृद्धि का निर्माण होता है। वृद्धि से प्रकंपन, वायुमंडल, वातावरण आदि का निर्माण होता है, जो हमारे कर्मों को श्रेष्ठ या भ्रष्ट बनाते हैं। जैसे संकल्प आया कि हमारे पास आने वाला व्यक्ति चोर है, इससे हमारी वृद्धि उसके प्रति अशुभ हो सकती है, जो हमारे बोल, व्यवहार व कर्म को प्रभावित

कर सकती है। जैसे कि हम देखते हैं भक्ति मार्ग का सर्वोच्च योग शास्त्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में इसमें वर्णित है कि योगश्चित वृत्ति निरोधक, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। यह हमें संकल्प शून्य की अवस्था व निर्संकल्प समाधि की ओर ले जाता है, परंतु संकल्प शून्य होने के कारण ये शून्य से प्रश्न उत्पन्न होता है कि आत्मा गुण व शक्तियों को उनके संकल्पों के चिंतन के बिना कैसे अपने में समाएगी या धारण करेगी, वह आत्मा सत्व प्रधान कैसे बनेगी। शिव परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे सरल ज्ञान व सहज राजयोग को ग्रहण करके ही आत्मा सत्व प्रधान या गुण शक्तियों से संपन्न बन सकती है। अच्छे संकल्पों के माध्यम से श्रेष्ठ प्रीति विकसित करके हम श्रेष्ठ कर्मों द्वारा ही सत्व प्रधान बन सकते हैं। प्रीति के आधार से हम अपने पुरुषार्थ को ज्ञात कर सकते हैं कि किन किन विषयों में हमारी अवस्था क्या है। जिस विषय में हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है उनमें हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा होगा, जिस विषय में हमारी वृत्ति कम है उसमें पुरुषार्थ भी कम होगा। कमजोर वृत्ति को श्रेष्ठ बनाकर चारों विषयों के पुरुषार्थ में बैलेंस को हमें बढ़ाना है। शिव बाबा कहते हैं कि संकल्पों से वृत्ति व वृत्ति से दृष्टि, कृति सृष्टि आदि की रचना होती है। अपनी दृष्टि कृति व सृष्टि को श्रेष्ठ बनाने के लिए वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना होगा, परंतु कैसे? तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है श्रेष्ठ विदेशी का निर्माण कैसे करें। एक होता है ऐश्वर्य ज्ञान, जितना हम ज्ञान मुरली को सुनते हैं या हम जितनी भी ही ज्ञान की पुस्तकों को बार बार पढ़ेंगे उतनी ही श्रेष्ठ संकल्पों की रचना अधिक होगी, इससे ही हमारी प्रीति उत्तम बनेगी। इसके लिए इस निश्चय के साथ प्रतिदिन पढ़ना जरूरी है कि परमात्मा शिव हमें पढ़ा रहे हैं। एक होता है कमजोर संकल्प, संकल्प जो होता है अगर कमजोर संकल्प श्रेष्ठ संकल्प के साथ मिक्स होने से वृत्ति खराब बन सकती है, इससे भ्रष्ट गलत व पाप कर्म हो सकते हैं। श्रेष्ठ संकल्प के साथ कई बार विकल्प व कमजोर संकल्प भी आता है, तो यहाँ पे हमें देखना है जो श्रेष्ठ संकल्प को दबा देता है, इस कारण श्रेष्ठ वृत्ति के साथ इसके स्थान पर गंदी वृत्ति बन सकती है। अतः जागरूक रहकर श्रेष्ठ संकल्प को सदा ऊपर रख उसी पर ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है, तभी श्रेष्ठ वृत्ति का निर्माण व श्रेष्ठ कर्म हो सकती है। ईश्वरीय सेवा भी हमें करनी है, ईश्वरीय सेवा से हम अपना भाग्य बनाते हैं। सेवा करने से पहले यदि हम श्रेष्ठ वृत्ति का भी निर्माण करने की क्वालिटी की सेवा करनी है तो सेवा ज्यादा प्रभावी या फलदायक सिद्ध हो सकती है। मेरा अनुभव है कि कुछ दिन पहले स्कूल सेवा पर जाने से पहले मैंने श्रेष्ठ

कि बाबा आज मैं जो हूँ वह विद्यार्थी और टीचर्स को धारण और उनमें समा जाए। इसका यह असर रहा कि प्रोग्राम की जो प्रोग्राम की गुणवत्ता थी वो बहुत अच्छी रही। प्रोग्राम के बाद टीचर ने कहा, सेवा निवृत्ति के बाद मैं आप जैसा जीवन जीना चाहती हूँ। शिव बाबा ने भी अपने एक अव्यक्त संदेश में कहा है कि ऊंची प्रीति के साथ सेवा करो। तो आपने देखा कि ऊंची प्रीति रखने से और सेवा करने से सभी का कल्याण होता है और सभी का इसमें भला भी है। हमारी भलाई भी इसी में है, सबको श्रेष्ठ प्रीति के बारे में बताएं और समझाएं, इससे हमारी प्रीति और अच्छी बनेगी। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो फिर से स्वागत है अपने इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है श्रेष्ठ विधि का निर्माण कैसे करें। अब हमें सीखना है राजयोग की विधि, शिव बाबा की याद का अभ्यास करते समय श्रेष्ठ गुणों, दिव्य गुणों व शक्तियों के संकल्पों का चिंतन गहराई से व बार बार करना चाहिए। इससे श्रेष्ठ व सुदृढ़ वृत्ति का निर्माण होगा। कर्म योगी की वृत्ति रख कर हम कर्म करें तो कर्म भी श्रेष्ठ होगा तथा खुशी भी रहेगी। हमें यहाँ पे स्वदर्शन चक्र भी फिराना है। इसका भी क्या है, चुने हुए उत्तम गुण व शक्तियों के श्रेष्ठ संकल्पों को अपने स्वदर्शन चक्र में सुविधा अनुसार पिरो लेना चाहिए। जब कम से कम 8 बार स्वदर्शन चक्र चलेगा तो उतनी ही बार श्रेष्ठ गुणों के संकल्पों पर भी ध्यान जाएगा तथा उनकी धारणा, उनको धारण करने की वृत्ति बन जाती है। सत्संग का अर्थ है ही सत्य का संग। संग का ही रंग चढ़ता है शिव बाबा की दैनिक मुरली, क्लास से पढ़कर सच का संग हुई और हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणों के संग से पवित्र प्रीति का उदय होता है। इसी प्रकार दादा नेकराज, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और सुकरात आदि महापुरुषों की जो जीवन कहानी आदि पढ़ने से भी श्रेष्ठ वृत्ति का निर्माण हो सकता है। इसके लिए श्रेष्ठ मित्रों का ही संग करना चाहिए। एक होता है मन का, एक निष्कर्ष होता है श्रेष्ठ वृत्तियों का निर्माण। व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्मों का आधार है। इनका निर्माण करने के लिए लेख में उल्लेखित उपायों का को अपनाना है और उसे अपनाकर श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अपने जीवन को महत्व देने या महान देव की श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारी श्रेष्ठ वृत्ति जो है वो किस प्रकार बन सकती है। हमारी वृत्ति हमारे संकल्पों पे ही, उसी के आधार पे हमारी वृत्ति बनती है और इसे बनाने के लिए हमें थोड़ी सी प्रेरणा की जरूरत होती है और हम ज्ञान मुरली से इसकी प्रेरणा ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: For more entertainment, log on and subscribe.
1: 0102 बोरियत की एरर, नए पन की कमांड रिजेक्टेड. अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नया पन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को एक नए अंदाज से देखते आ रहे हैं हम, और हमने ये जाना कि वही रिश्ते जो कई बार बोझ लगने लगते थे, लगता था कि अरे ये रिश्ता कैसे निभेगा, अगर खुद को पहचान के फिर इस रिश्ते को देखा तो लगा कि यही रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी एक रिश्ता बाकी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और वो है रिश्ता मेरा खुद अपने आप से और परमात्मा से, जिसे मैं आज तक तलाश रहा था और आज खुद उसने अपनी पहचान दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सत्य शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सत्य शिवानी, हमने हर रिश्ते को नए अंदाज में देख लिया, उसे अच्छी तरह से जाना और फिर देखा कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है, और हर बार की तरह एक्सपीरियंस के बाद ही हम ये बात कहने लायक बनते हैं। अभी भी एक रिश्ता बाकी है और वो मेरा खुद से। अपनी पहचान तो मैंने कर ली, परमात्मा से पहचान भी हो गई, लेकिन वो रिश्ता मैंने अपने आप से कायम किया या परमात्मा से कायम किया, वो रिश्ता कैसा होना चाहिए?
1: किसी भी रिश्ते को बनाने में इनिशियल स्टेजेस में चाहिए होता है समय। यू नो, हम कहते हैं रिश्ते की फाउंडेशन है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लेकिन ये भी जो डेवलप होती है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम बिकॉज आई वर्क ऑन द रिलेशनशिप। जितना मैं आपसे मिलती जाऊं, आपके संपर्क में आऊं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो वो ट्रस्ट डेवलप होता है, या वो रिस्पेक्ट जिस लेवल पर चाहिए वो डेवलप होती है। लेकिन आज के वर्तमान भाग दौड़ के समय पर हम औरों के लिए तो सबके लिए समय निकाल देते हैं, दोस्तों के लिए, परिवार, कोलीग्स, एवरीबडी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी टाइम और एनर्जी इतनी फिनिश हो जाती कि हम कहते हैं अपने लिए समय निकालना। सो इफ वी आस्क एनीबडी कि आप रोज सवेरे अपने लिए 15 मिनट निकालिए, जिसमें आप सिर्फ अपने आप के साथ हैं और आप उस परमात्मा के साथ हैं, एंड दैट टू अर्ली मॉर्निंग, जब आपके बाकी सारे रिश्ते सोए हुए हैं। क्योंकि जैसे ही आपके सारे रिश्ते बाकी जाग जाएंगे, यू विल अगेन गेट इनटू दैट एनर्जी एक्सचेंज, व्हिच इज ओके, व्हिच इज फाइन, लेकिन उससे पहले 15 मिनट फॉर दैट वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, क्या हम निकालने के लिए रेडी हैं? तो जनरली पीपल विल इमिजिएट, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, टाइम नेम।
0: अच्छा, और यहाँ एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि हम यूजुअली ये समझते हैं कि मैं सबको वक्त दे रहा हूँ, अपने को वक्त नहीं दे रहा, तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ।
1: दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि हम समझते हैं अपने को वक्त देना,
0: आई एम सो सेल्फलेस, आई डोंट इवन बॉदर अबाउट माई सेल्फ, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर अदर्स, बट आई थिंक समवेयर वी फॉरगेट।

0: एक हम साइकाइट्रिस्ट से मिले जो बहुत सीनियर लेवल के साइकाइट्रिस्ट हैं, जो लोगों के स्ट्रेस, डिप्रेशन इन सब चीजों को ट्रीट करते हैं। लेकिन कहीं उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि वो खुद बहुत तनाव में है। तो उनसे बात करते हुए हमने कहा कि व्हाई डोंट यू टेक आउट 15 मिनट्स फॉर योरसेल्फ एवरी डे। सो ही सेड 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, नो सिस्टर आई हैव नो टाइम। एंड ही वॉज वेरी proud of this ke I do not have 15 minutes,
1: I give all my time to others,
0: to everybody, kyunki mujhe dusron ko heal karna hai। And he said like 14 ghante mere apne profession mein jaate hain, my work is my top priority, to 14 ghante mere din mein uske liye hote hain, baki commuting, travel time aur jo thode se 2-3 ghante bach jate hain wo mere parivar ke liye hote hain। To ab is sab mein apne liye samay nikalna, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप कुछ और बताइए, लेकिन मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता बिकॉज माई टाइम इज फॉर एवरीबडी। तो हमने कहा प्रायोरिटी इन लाइफ क्या है, वर्क, फैमिली एंड देन सेल्फ। एंड दिस हैज बिकम प्रायोरिटी फॉर मेजोरिटी पीपल, यू नो, सभी जो वर्किंग लोग हैं, काम, वर्क प्लेस, फिर परिवार और फिर हम खुद। और ये दोनों कैटेगरीज, परिवार एंड वर्क प्लेस, इतनी सारी टाइम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कि थर्ड स्टेप तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, हम बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। सो नाउ ईच वन नीड्स टू आस्क देमसेल्व्स कि वर्क, फैमिली, सेल्फ, इज दिस द राइट ऑर्डर। एंड एवरीवन फील्स दिस इज द राइट ऑर्डर बिकॉज दे से आई गेट पेड एट वर्क, यू नो, तो मेरा कर्म मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर मेरी फैमिली, यू नो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। वी वुड फील विद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वी कम टू दिस कंक्लूजन कि इट शुड बी टोटली द अदर वे अराउंड। क्योंकि काम पे भी हम क्यों जाते हैं, अपने परिवार के लिए, उन्हीं के लिए वो खुशियां, वो सब कम्फर्ट जो भी हमें लाने, उसके लिए हम काम पे जाते हैं। तो काम से ऊपर एक्चुअली
1: परिवार,
0: परिवार है डेफिनेटली, नहीं तो मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है। अब परिवार को भी मुझे जो देना है, खुशी, सुख, शांति, वो मैं तब दे पाऊंगी जब वो मेरे अंदर भरी होगी। तो फिर परिवार से भी ऊपर हो गया माय सेल्फ। Now when I put the equation the other way round, work, family, self, तो self के लिए समय नहीं निकाला, internal relationship बहुत disturbed है, conflict है, उस conflict की हालत में सुबह सुबह परिवार के साथ जो interaction होता है वो भी क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, time नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो, वो सारे conflict से निकल कर हम office पहुंच जाते हैं और वो energy level हम office में carry करते हैं और वो हम सभी को transmit करते हैं। तो because of not taking out time for myself, उसका असर परिवार पे भी पड़ा और work पे भी पड़ा। तो ये कहना कि ये मेरी top priority है is not fair, क्योंकि हम उसके साथ भी cheating कर रहे हैं, we are only giving negative energy, क्योंकि वो हमारी गलती भी नहीं है, वो हमारे पास है। Now if I change the order and I say self, family and then work, you know, self most important, it's top on the
1: thing. I think baki dono cheeze self pe dependent
0: hai, self pe dependent hai, lekin self jab healed hogi, andar se bilkul bharpoor hogi, us atma ke relationships kaise honge parivar mein, very healthy, aur ek healthy family ko chhod kar jab aap kaam par jayenge to aapki mansik sthiti kaisi hogi, you will be totally empowered to give everything to work, so you will be doing justice to all three। Rather right now we are cheating all three by saying I don't have time। To apne liye samay nikalna, we should remember that I am the most important person in the world, because unless I am healed I cannot do anything,
1: I cannot achieve anything, that's very true।
0: Kuch bhi nahi,
1: I have met people, ek social organization mein main thi, they said ki hum new year resolutions ki baat kar rahe the, to almost everybody was saying ki main logon ke liye help karunga, main itne logon ko introduce karunga iske bare mein। लेकिन फाइनली आई थिंक क्योंकि हम खुद ही हील्ड नहीं है तो हम लोगों को क्या बता सकते हैं,
0: क्योंकि आज जो सबको चाहिए वो ये चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, ये सबको चाहिए, और ये सबको देने के लिए मेरे अंदर खुद कुट कुट के भरी होनी चाहिए, और उसके लिए मुझे चाहिए अपने आप से बहुत अच्छा संबंध, और इन सबका जो सागर है, जो स्रोत है, निराकार परमात्मा जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, तो उसके साथ जब संबंध जुड़ जाता है तो जो उसके पास है वो ऑटोमेटिकली सब मेरा हो जाता है। सो आई गेट फिल्ड इन साइड एंड देन आई एम एबल टू गिव टू एवरीबडी। अब जब हम अपने साथ संबंध जोड़ना शुरू करते हैं तब अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होता है,
1: खुद में विश्वास।
0: आज खुद में विश्वास नहीं है, आज हमारे खुद की रिस्पेक्ट हम नहीं करते हैं डेफिनेटली, और उसका प्रूफ यही है कि हम

0: में औरों को रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और जब कोई और हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अगर सेल्फ एस्टीम बोई अंदर अगर खोखलापन है, तो जैसे ही दूसरा कोई हमें छोटी सी ऐसी बात कहेगा तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, और उस रिस्पेक्ट से अपने आप को देखते हैं कि आई एम नॉट व्हाट आई हैव अचीव्ड इन लाइफ बट आई एम व्हाट आई एम हियर इनसाइड, तो फिर कोई और मुझे हर्ट नहीं कर सकता। आई टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट, और ट्रस्ट मतलब मैं जो सोचूंगी
1: सही सोचूंगी
0: और वो ही बोलूंगी और वो ही करूंगी। तो ऑनेस्टी विद द सेल्फ, अपने आप से धोखा करना बंद कर देंगे। जब अपने आप से धोखा करना बंद करेंगे, औरों से धोखा अपने आप बंद हो जाएगा, और दूसरे मेरे साथ धोखा करने वाले हैं,
1: दूसरों की उम्मीद भी बंद हो जाएगी। हाँ।
0: दूसरे मेरे साथ धोखा करने वाले हैं, ये डर से भी मुक्त हो जाएंगे। तो व्हेन आई स्टार्ट ट्रस्टिंग माई सेल्फ, मेरा औरों को विश्वास करना बहुत ईजी, और मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, इस विश्वास के साथ चलना भी बहुत ईजी। ये सारा दिन डर रहना कि मुझे धोखा तो ना दे दे, मुझे छोड़ के तो ना चले जाए, ये सिर्फ उसी आत्मा के अंदर होगा जो अपने आप को बहुत धोखा देती है। सोचती कुछ और है, करती कुछ और है। जिस दिन वो बंद हो गया धोखा देना, थिंग्स गोइंग टू बी वेरी इजी। लेकिन उसके लिए अपने साथ वो रोज समय निकालना पड़ता है, जिसमें हम अपने आप से बैठकर कहें कि सेल्फ काउंसलिंग करते हैं। वी सॉ ड्यूरिंग दिस होल जर्नी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, टॉक टू योरसेल्फ, क्योंकि अपने आप की जो हम काउंसलिंग कर सकते हैं वो शायद कोई भी और नहीं
1: और
0: कर
1: सकता। एक्चुअली अपने आप से जब हम बात करने लगते हैं, काउंसिल करते हैं, तो आंसर फिर मिलने लग जाते हैं।
0: आंसर सारे यही हैं, सारे आंसर्स यही हैं, क्योंकि सोल का, आत्मा का पूरा रोल इस सीडी के अंदर रिकॉर्डेड है। तो अगर मेरे को कल कुछ काम है या कोई प्रॉब्लम है, मुझे अगर उसका आंसर चाहिए कि कल उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आप मुझे नहीं बता सकते क्योंकि आपकी वो सिचुएशन नहीं है। हाँ, आपके अनुभव से मैं कुछ ले सकती हूँ प्रेरणा, लेकिन फाइनल डिसीजन कि मुझे क्या करना होगा हैज टू बी माइंड। तो इफ आई कैन बी साइलेंट, आई कैन एक्चुअली सी कि मेरा रोल कैसे इवॉल्व होने वाला है, क्योंकि सारा रोल तो यहाँ पर रिकॉर्डेड है। तो इसलिए साइलेंट हो जाए तो उससे क्या होगा, इंट्यूशन पावर, क्योंकि व्हाट आई कैन सी मतलब इंट्यूशन, मुझे ऑलरेडी फीलिंग आ जाएगी कि ऐसे करना है, सोल्यूशन आ जाएगा। क्यों? माइंड साइलेंट। लेकिन माइंड में क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे ये जब ऊपर की लहरों में सारी डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो सोल्यूशन है लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो अंदर का जो ट्यूटर है उसकी तरफ नहीं देखे, और बाहर के सब ट्यूटर्स की तरफ देखते हैं, तो एडवाइस मिलेगी बट नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑलवेज बी राइट फॉर मी। वो अपनी तरफ से बिल्कुल राइट बताएंगे,
1: उनके लिए सही होगा। हाँ।
0: लेकिन मैं जिस सिचुएशन में हूँ वो सिर्फ अंदर के ट्यूटर को पता है कि वो कैसे करना है। तो दैट इंट्यूशन पावर विल ऑल्सो डिवेलप, रिस्पेक्ट फॉर हु एम आई एंड ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ। ये जब बन गया तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तक हम कहते हैं मुझे सब की जिम्मेवारी उठानी है,
1: लेकिन उससे पहले आपने कहा ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली, कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ या मैं जो करने जा रही हूँ वही सही है। हम 50 बार सोच रहे होते क्या मैं करूँ या नहीं करूँ, ऐसे करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो अगेन,
0: क्योंकि हमारी निर्णय शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि निर्णय शक्ति बुद्धि का काम है और ये कमजोर हो गई है, और मेडिटेशन से ये वापस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इट विल बी लाइक दिस, आप एक सेकेंड में डिसीजन लेंगे और आपका डिसीजन एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि एक तो आपका कनेक्शन उस सर्वशक्तिवान से भी जुड़ा है, और जब उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की पावर आपके साथ है, आप हर कर्म करते हुए यू विल हैव दिस क्लियर टचिंग कि आई एम ऑन द राइट पाथ और इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, इमिजिएटली आई विल गेट दैट, नहीं मूव अवे। कर्म जस्ट आप करने लगेंगे और आप रुक जाएंगे, यू नो कि नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा मेरे साथ है जो मेरे हर कर्म के ऊपर सुपरवाइज कर रहा है, एंड दैट विल टच वेरी क्लियरली। तो परमात्मा के साथ भी जब वो रिलेशनशिप होगा और अपने साथ इंटरनली, तो डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा, एंड डिसीजन विल बी राइट, दे विल बी एक्यूरेट, क्योंकि इंटेंशन बहुत राइट है अब कि हर कर्म के पीछे का भाव क्या है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस से हटते जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप से संबंध जोड़ना मतलब सोल कॉन्शियसनेस। तो आत्मा अभिमानी जब हो जाएंगे तो इंटेंशन प्योरिफाई होती जाएंगे।

0: करेंगे. ग्रीड, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ये सब कुछ तो हटता जाएगा. तो जिस कर्म के पीछे की इंटेंशन ठीक होगी, कर्म का रिजल्ट
1: अपने आप
0: ठीक हो जाएगा. वो ऑटोमेटिक है. और जब हम ये डेवलप कर लेंगे तो अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ये इजी हो जाएगा. हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं लेकिन अपनी मन की स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते. हम कहते हैं आई एम डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ यू, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ यू, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ यू. सो दैट्स नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम अपने साथ ये समय बिताना शुरू करते हैं तो मुझे क्लैरिटी आ जाती है कि ये इनर प्रोसेस कैसे वर्क करता है. ये सारा मेरे कंट्रोल में है. तो हर संकल्प की जिम्मेवारी
1: मैं खुद उठा सकता हूँ. और इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क हियर कि मैं जानते हुए अगर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैं अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ वो कर्म करने जा रहा हूँ. सो आई थिंक वो उसका रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए.
0: तो तीन चीजें जो संबंधों में चाहिए, विश्वास, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबसे अच्छी बहुत बढ़िया से जुड़ जाएगी. और जब वो अपने साथ हो जाएगी तो औरों के साथ करना बहुत ईजी हो जाएगा.
1: परमात्मा से रिश्ते की बात करते हैं. ये वो रिश्ता है जिसको हम सब बहुत ज्यादा तलाश रहे थे. अगेन खुद से बात करना, यानी मैं अपने आप को, क्योंकि मैं देख तो पा रहा हूँ कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस में हम इतना है कि मैं अपनी बॉडी का एहसास तो है, परमात्मा वो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको हर बार मैं इमेजिन जरूर करूं जब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ये बातचीत है उसका जवाब मैं, मुझे लगता है कि क्या मुझे मिलेगा. और वो जो तलाशना है या वो, जैसे कहा आपने कि वो कहीं वो विश्वास या वो रिश्ता, एक बार हमने पहले बात की थी कितनी देर लगेगी, तो आपने कहा था कि जहां पहचाना वही रिश्ता बन गया. लेकिन हाँ, उसमें जो दृढ़ता है, सुदृढ़ता है, वो उसमें समय लग सकता है. उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि किस आस्पेक्ट को लेकर हम उस रिश्ते को और स्ट्रांग करें.
0: एक्चुअली जो समय लगता है वो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने में नहीं लगता है. वो एक क्षण लगेगा. समय जो लगता है वो लगता है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाने में. क्योंकि अभी हम जब बैठते हैं याद करने या संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम अभी तक वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है. तो शरीर के भान में जब होंगे तो शरीर से संबंधित सारी बातें याद आएंगी, मन उन्हीं की तरफ चलता रहेगा. तो हमें लगता है बट आई एम गिविंग टाइम, आई एम सिटिंग टू डू मेडिटेशन, तो क्यों नहीं मुझे अनुभव हो रहा. तो सेकेंड स्टेज पहले नहीं अचीव हो सकते हैं, पहले फर्स्ट स्टेज को करना पड़ेगा. तो इसलिए सोल कॉन्शियसनेस ये फर्स्ट स्टेप है. जब तक हम इसको नहीं ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, हमें थोड़ा सा समय लगेगा. अनुभव अभी भी होगा लेकिन हमें थोड़ा सा लगेगा कि आज तो लगा, यू नो मोस्टली पीपल फील आज तो बहुत अच्छी तरह से अनुभव हो रहा था. अब फिर अगले दिन फील करेंगे आज तो बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ. बिकॉज दैट डिपेंड्स मोर ऑन माई कॉन्शियसनेस कि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ या सोल कॉन्शियसनेस. सोल कॉन्शियसनेस अर्थात अपने आप को उस स्वरूप में अनुभव करके मैं आत्मा हूँ, वो आत्म स्वरूप में जब टिक गए, ताकि यहाँ की दुनिया की जो सारी बातें, जो सारे संकल्प थे वो फुल स्टॉप. ये नहीं कि बैठे हैं मैं आत्मा हूँ, वो आज क्या बोला उन्होंने, ऐसे क्यों बोला, नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ,
1: कि वहाँ ये हुआ, वहाँ से वो हो गया, देन यू कम बैक, नहीं मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, फिर अगेन
0: सो यू आर गोइंग ऑन द सीसो. मैं आत्मा हूँ लेकिन ऑफिस में क्या हुआ, मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरे बच्चों ने ऐसे क्यों कहा. सो यू आर नॉट रियली सोल कॉन्शियसनेस. सोल कॉन्शियस मतलब फिर उसको आत्मा के अलावा और कोई संकल्प नहीं आएगा, आत्मा के स्वरूप के अनुभव के अलावा और कुछ नहीं आएगा. तो मॉर्निंग में जब हम बैठते हैं इसका अनुभव करें, इसका प्रैक्टिस करें, लेकिन उसको सिर्फ मॉर्निंग तक नहीं रिस्ट्रिक्ट करें. उसको सारा दिन हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सारा दिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो उसी के इम्प्रेशंस बनते जाएंगे. सी दिस इज लाइक अ शूटिंग विच इज टेकिंग प्लेस द होल डे. कि सारा दिन हरेक को मिले, हरेक संकल्प क्रिएट किया, संकल्प किया कर्म में आया, कर्म का इम्पैक्ट रिकॉर्ड होता गया होता गया. अब जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो सारी सीडी जो रिकॉर्ड हुई होती है वो प्ले करती है ना. अब अगर सीडी में सारे बॉडीली रिलेशंस, बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें वही रिकॉर्ड की है और फिर बैठ गए, सीडी प्ले हो गई, उसमें सारी वही बातें रिवाइंड हो रही है और हम बीच में बोल रहे हैं नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ, यू नो देन दैट कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर. then I will not be able to experience that. तो इसलिए सारा दिन में एक conscious attention रखना ये बहुत बहुत बहुत important है. उससे फिर वो जब morning में हम बैठेंगे वो अनुभव बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोल कॉन्शियसनेस के थॉट्स सारा दिन में क्रिएट किए थे तो उसके इम्प्रेशंस वो सीडी में रिकॉर्ड हो जाएंगे. क्योंकि जनरली जब भी हम साइलेंस में बैठते हैं ना ये सीडी रिवाइंड हो जाती है अपने आप और प्ले होने शुरू हो जाती है, ब्लैंक नहीं रहता है. तो इसलिए सारा दिन में इस सीडी पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो सारा दिन कर्म करते इसलिए हम कहते हैं हर एक घंटे में एक बार, हर एक घंटे में एक मिनट चुप करें, दैट्स फॉर दिस कि बार बार रुके, अगेन रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं एक शक्ति हूँ. दिस इज माई क्वालिटी, पीस, प्योरिटी, नॉट एंगर, नॉट अग्रेशन. सो वाई एम आई यूजिंग इट, यू नो, बिकॉज हर क्षण जब हम इनको यूज कर देते हैं, गुस्से को, संशय को, झूठ, हर क्षण, तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं. तो हमने कितनी लीकेज सारी कर दी, फिर कहे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो सिर्फ सोचने की बात नहीं लेकिन कर्म की क्वालिटी क्या है सारा दिन. क्योंकि अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मेरा सारा दिन रोल कैसा होना चाहिए,
1: शांति का.
0: तब हम कहेंगे कि रियली आप सोल कॉन्शियसनेस में सारा दिन कर्म कर रहे थे. ये नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति, और फिर गुस्सा, फिर किसी के साथ कोई खिटपिट, नहीं. सोल कॉन्शियसनेस मतलब सोल की जो क्वालिटीज है उसको सारा दिन की एक्टिविटी में वो दिखाई देनी चाहिए. आई शुड एक्सपीरियंस दोज क्वालिटीज, देन आई एम इन दैट कॉन्शियसनेस. क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होगी वही तो कर्म में आएगा. डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की तरह बिहेव करूंगा, मदर हूँ मदर की तरह, आत्मा हूँ आत्मा की तरह. तो उसका कॉन्शियस अटेंशन रखेंगे तो मॉर्निंग में जब बैठेंगे वेरी सिंपल, और फिर परमात्मा से वो संबंध, क्योंकि परमात्मा के साथ जो संबंध है दैट इज सो ब्यूटिफुल, बिकॉज दैट्स द ओनली रिलेशनशिप जहां हमें अनकंडीशनल लव मिलता है. वो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड पूरा पूरा ट्रस्ट. ऐसा ट्रस्ट जो कभी टूटता नहीं है, जो दुनिया में बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि परमात्मा हर्ट नहीं होते, क्योंकि उन्हें हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. तो परमात्मा सिर्फ देते हैं, देते हैं, देते हैं. ही डजंट हैव एनीथिंग दैट ही नीड्स फ्रॉम अस. तो जब हमारा ऐसा कोई संबंध जुड़ता है जो हमें सिर्फ देता ही रहे, देते ही रहे, और यही हम ढूंढ रहे थे कि किसके साथ मैं ये संबंध जोड़ू, माँ बाप के साथ जोड़ू, पत्नी के साथ, पति बच्चों के साथ, कौन ऐसा जुड़े जो मेरे को देता रहे. कोई दे नहीं पाया तो फिर वो अंदर पेन आने लगा. जब वो मिल रहा है संबंध फिर हम उसके लिए कह देते हैं टाइम नहीं है, दैट्स चीटिंग विद माई सेल्फ, यू नो. द सोर्स इज देयर रेडी टू गिव एंड आई एम सेइंग आई डोंट हैव टाइम,
1: एंड अगेन रिलेशनशिप विद माई ओन सेल्फ, द इन रियलिटी हु एम आई, उसके साथ जो रिश्ता है. सिस्टर शिवानी, ये पूरा जो हमारा सफर रहा है रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने का, सचमुच बहुत सुंदर रहा है. और उसमें आज जो हमने एक बार फिर उस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है, मेडिटेशन एक्चुअली एक बहुत अहम हिस्सा है, वही फाउंडेशन है. सो हम थोड़ा सा उसमें फिर जाने चाहें
0: कुछ क्षणों के लिए. हम वापस वही अभ्यास करेंगे कि मन संकल्प करेगा, इंटेलेक्ट बुद्धि उसका दृश्य निर्माण करेगी, विजुअलाइज करेगी, क्योंकि हम सीडी को रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो इट विल बी थॉट्स प्लस पिक्चर विजुअलाइजेशन, और जैसे ही वो विजुअलाइजेशन होगी तब वो अनुभव ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा. तीनों पर अटेंशन रख के देखें, एंड इफ सम अदर थॉट कम्स तो स्टॉप इट देन एंड देयर, यू नो, उसको बैठने ना दें और उसकी तरफ ही ना झुक जाएं कि हाँ अब तो मेरा लिंक टूट गया. नहीं, स्टॉप, कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स, क्योंकि हमारा मन हमारी बात मानता है. तो लेट्स गिव इट द इंस्ट्रक्शन देन. कुछ क्षणों के लिए अपने बाकी सभी संबंधों से किनारा करते हुए उस सबसे मीठे संबंध की तरफ ध्यान करें, अपने आप को देखें. सबको देखते हुए इतने व्यस्त हो चुके थे कि अपने आप को देखना ही भूल गए. चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूँ, इस शरीर को चलाने वाली

0: हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने आप को देखें भृकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है, ये मैं हूं। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूं। शांति मेरी अपनी नेचर है, शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से कुछ समय के लिए किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, दैट पॉइंट ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अपवर्ड्स, ऊपर जा रहा है, इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। जस्ट पीस एवरीवेयर अराउंड मी, शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो मात पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं, इतना प्यार देते जो मैं खुद से प्यार करने लग जाती हूँ, जो अपने आप को पहचानना शुरू कर देती हूँ। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं, कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है, जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए, भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है, सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः इस दुनिया की तरफ आ रही हूँ, इस कर्म क्षेत्र पर अपने कॉस्ट्यूम में धीरे धीरे पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाती हूँ। लेकिन स्मृति के साथ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ और मैं किसकी हूँ,
1: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, ये जो अनुभव आज हमने किया और खुद से कैसा रिश्ता बने और परमात्मा या शिव बाबा से रिश्ता कैसे बनाए, ये पूरा ये कैसी जर्नी है, कैसा अनुभव है,

0: सचमुच अनुभव ही किया जाना चाहिए। पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नम शांति। रिश्ते हम बाकी आत्माओं के साथ जब भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज होता है, लेकिन जब हम खुद से बना रहे हैं तो एक नया एस्पेक्ट सामने आता है, और जब हम उस परमपिता परमात्मा से बनाते हैं, उस शिव बाबा से बनाते हैं, तो हम सब कुछ उससे ले रहे हैं। एक एक्सचेंज न होकर यहाँ ऐसा लगता है कि हमें मिल रहा है, तो क्यों ना इस रिश्ते को सबसे अधिक मजबूत करें। रिश्तों को नई पहचान देने का ये प्रयास। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999 3445 9999 3446 9873 6655, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में इस पूरी श्रृंखला में हमने रिश्तों को नई पहचान दी है और एक खूबसूरत मोड़ देकर आगे चलना सीखा है। आगे और भी बहुत सी बातें होंगी, फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। ओम शांति।
1: ब्रह्मा कुमारी द्वारा राज योग मेडिटेशन प्रत्येक सेवा केंद्र पर निःशुल्क सिखाया जाता है। यह कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 0999 3445 5 5 0999 3446 6 6 और 0987366655। आप ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई, तो उन्होंने हमें ट्रीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंदी।
1: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर, तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित।
2: नमस्कार अँड अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज। विचार हमारे मन में ही उपजते हैं। कौन से वो विचार होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, और कुछ विचार ऐसे हैं जो हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि जो विचार हमें गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं या फिर नेगेटिव हैं, उन्हें एक मोड़ पर या जब एहसास हो तभी एक अलग राह पर लेकर मोड़ देना चाहिए और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का सहारा लेना चाहिए। ऐसे में मेडिटेशन काम आती है, क्योंकि यही विचार, यही जो थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हमारे पास हैं, ये हमारी डेस्टिनी तय करते हैं। तो आज एक बार फिर इसी बात पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से अपने विचारों को मोड़ने का ये सफर हम तय कर सकते हैं, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत।
3: नमस्कार।
2: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका भी स्वागत।
4: ओम शांति।
2: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, अगर हम पीछे देखें तो आपने कहा था कि जो विचार कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं, उन्हें मोड़ना जरूरी है।
3: तो अनावश्यक भी है, सिर्फ नेगेटिव न भी हो, अनावश्यक है उसे भी मोड़ना।
2: हाँ, जो जरूरी ही नहीं है, जो
3: वेस्ट।
2: और हम ये भी कहते हैं कि एक मिनट में अगर हमने लगाम नहीं लगाई तो विचार जो है वो एक मिनट में 25 से 30 विचार जो आ जाते हैं, तो मतलब अगर हम देखें तो दिन में जागते हुए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से ये बात आती है, सोते हुए भी विचार आते हैं?
3: स्वप्न में आते ही है ना।
2: हाँ, तो सोते हुए भी विचार, उनको भी क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं?
3: वो भी कर सकते हैं। जैसे बहुत ही अच्छी बात है कि क्या करना चाहिए, किसी ने कभी स्वप्न आते हैं, चलो स्वप्न आते कोई बात नहीं, परंतु इतने सजग हो जाओ, हम जागृति की भी बात कर रहे थे कि भी इतनी अवेयरनेस आ जाए, पर आप सो रहे, लेकिन अगर जागृति के साथ सो रहे तो ये भी आपको पता चल जाए कि ये स्वप्न आ रहा है, तो भी आपका कल्याण हो गया।
2: बहुत अच्छा।
3: ये पता ही नहीं होता कि भी मुझे स्वप्न आ रहा है।
2: बहुत, मतलब अपने ऊपर काम करना कितना इंटरेस्टिंग है। हम अपने दर्शकों से ये कहेंगे कि हम मैथमेटिक्स के जो सवाल है वो करते हैं, कितनी मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं,
4: क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करते हैं,
2: और कितना इंटरेस्टिंग होता है, कितना मजा आता है। तो ये खुद को सॉल्व कर रहे हैं, जो मैं एक पहेली हूँ उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो विचारों को चेंज करने की बात है, वो भी एक टेक्निक है। आपने पिछली बार कहा था कि 5 स्टेप्स पे काम करके, जैसे स्टेप्स, जिसको मैथमेटिक्स का बहुत इंटरेस्ट है, हर स्टेप जो है वो सही होना चाहिए, तभी आंसर सही निकलेगा। तो 5 स्टेप्स इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वो ये थे, विचारों को अगर हमें मोड़ना है, पहला सजग हो जाना, अवेयर होना कि विचार है या कौन सा विचार चल रहा है। सेकेंड होता है उन्हें कैच करना कि क्या वो नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो थर्ड पॉइंट आता है अंडरलाइन करना, उनका वो एहसास उसे बता देना, वो शब्द भी हो सकता है आपने कहा था। और फोर्थ होता है स्टॉप करना, उस विचार को रोकना, एंड देन फिफ्थ इज ट्रांसफॉर्मेशन।
3: वेरी गुड।
2: चलिए, ये तो मुझे याद रहा, लेकिन अवेयरनेस, जो सजगता की बात है कि हमने

0: कोशिश ये की थी कि सजग कैसे होना है. एक एक्सरसाइज ये भी थी कि सिर्फ वॉच करना है, वो अभी भी उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सजग नहीं हो पा रहे हैं हम. तो कुछ और ज्यादा डिटेल में बताएंगे डॉक्टर पटेल और सिस्टर शिवानी की.
1: सिंपल चीज तो ये करो कि भी समय निकालो. मैंने कहा था कम से कम 15 मिनट का समय जरूर निकालो.
0: बिल्कुल, जैसे आपने कहा क्रॉसवर्ड के लिए हम 2 घंटे निकाल लेंगे.
2: सुडोकू खेलते हैं आजकल, कितनी देर लगाते हैं उस पर, है ना. और क्रॉसवर्ड या कुछ भी ऐसा लेकर हम बैठ जाएं तो हम कितनी देर बैठे रहेंगे जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो लाइक दैट, वाई डू वी गिव अप ऑन आर सेल्व सो फास्ट. हम क्या करते हैं, ज्यादातर 5 मिनट बैठे, नहीं हो रहा, उठ जाओ, यू नो, अपने ऊपर बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. सो इट विल टेक लिटिल टाइम.
0: डॉक्टर साहब, वेल सिस्टर शिवानी, ये जो आपने कहा कि हम अपने ऊपर वक्त, अपने को वक्त नहीं देते, कितनी सारी चीजों को और वक्त देते हैं. एक मेल यहां मैं आपको चाहूंगी, क्योंकि इतने सारे मेल्स आ रहे हैं, इतने इंस्पायरिंग मेल्स हैं. एक ये लड़की है हमारी जो दर्शक है, अंकिता माहेश्वरी, छोटी सी हमारी ये एक दर्शक है, 17 ईयर ओल्ड है, बैंगलोर से इन्होंने लिखा है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है. और इनका इन्होंने लिखा है कि आई बीन वॉचिंग योर प्रोग्राम फॉर लास्ट 3 मंथ्स and I'm highly influenced by it. Your rational and logical approach is very impressive and I strongly appreciate your stupendous program. What she says actually, which is more inspiring for us, is that the problem I faced earlier was inferiority complex, so-called depression, sometimes negative thoughts and many more. I was simply hopeless. It's 2 months since I'm doing meditation. Believe me, I feel so good. That's amazing. 17 year old. अगर हम पीछे याद करें तो एक 16 साल की लड़की का हमने ये किया था कि पता ही नहीं चला क्यों सुसाइड उसने कमिट किया. एंड वी हैव अनदर यंग गर्ल इंस्पायरिंग, यू नो, लाइक सच एन इंस्पायरिंग ईमेल. एंड वॉट शी राइट इन द एंड इज लाइक वेरी गुड. आई वुड लाइक टू टेल ऑल द व्यूअर्स. शी सेज, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर माई लाइफ विच हैज बिकम दिस ब्यूटिफुल अगेन. See, life is beautiful. We all feel that life is beautiful. Thank you, Ankita, and we are really thankful to you. We wish you all the best. लेकिन सिस्टर शिवानी,
1: और भी एग्जाम्पल है सच में, जैसे
0: बहुत सारे ऐसे मेल्स आए हैं.
1: अहमदाबाद में मुझे एक बहन मिली थी, उससे भी जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थे, उनके पति कुछ जॉब नहीं करते थे, 2 बेटियों को संभालना था. वी वर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि भी हम बहुत गरीब है. और उसको दोनों चीजें मेंटेन करनी थी, तो शी यूज टू क्राई इवन. उसकी बेटी है, उसने कहीं बाहर कहा कि मम्मी तुम तो नींद में रो रही थी बहुत बार. शी वॉज रियली डिप्रेस्ड. लेकिन जब राजयोग सेंटर पे आई तो नाउ शी इज डांसिंग.
0: यही, दिस इज व्हाट इट इज
1: एंड हाउ इट हैपेंड. डू यू नो कि मैं अहमदाबाद गया था, वहां पर तो भागती भागती मेरे पास आई, उसने कहा आप डॉक्टर गिरीश पटेल? मैंने कहा हाँ. तो उसने कहा नहीं, मैंने आपका प्रोग्राम देखा था और वो प्रोग्राम से मैं सेंटर पर आई. यदि भी हम तो फाइनेंशियल इतने क्राइसिस है हमको, परंतु बहुत अच्छी बात ये प्रोग्राम में हुई कि आप लोगों ने यह कहा कि यह कोर्स विनामूल्य है. तो कहते उसी से मुझे इंटरेस्ट हो गया. और उसने पता है कहाँ से, उसने आस्क मी सर्विस से ब्रह्मा कुमारी इसका फोन नंबर भी फाइंड आउट किया. एंड शी स्टार्टेड गोइंग रेगुलर.
0: इफ यू वांट टू डू इट, लाइक आपको कहीं भी कोई, फिर एक बार जब रास्ता होता है तो मिल ही जाता है अगर आपको ढूंढना है. और ये बात कि लाइफ इज ब्यूटिफुल अगेन.
2: अगेन वर्ड इज वेरी इम्पोर्टेंट.
0: आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय इट कि लाइफ इज ऑलरेडी ब्यूटिफुल. एक फेज, एक जिंदगी ऐसी जीते जीते हम सोते हुए गुजार देते हैं. मतलब आज मैं भी ये कहने लग गई हूँ, क्योंकि अवेयरनेस और अवेकनिंग, जागरण जिसे हम कह रहे थे, पहले भी हमने बात की थी, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट.
1: यूथ इज द बेस्ट एज ऑल्सो, दिस इज द राइट एज.
0: वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑल्सो कि सही वक्त क्या है. हम इतने देर बाद जागे, उसे जब पहले ही रास्ता जो तय कर रहे हैं तब कर लें. अगेन सजगता पे आते हैं कि विचारों की सजगता, कि ये तो इतनी जल्दी इन्होंने समझ लिया, ये कह रहे हैं 2 महीने में ये यहां तक पहुंच गई. उनको विचारों के प्रति सजग हो पाना, जो एक्सरसाइजेज आप कह रहे हैं कि दिन में अगर हम 15-20 मिनट पे निकाल लें, कौन सा सबसे सही वक्त होगा? आपसे पूछते हैं सत्य शिवानी.
2: अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले, क्योंकि जय सबसे पहले उठते हैं, यू नो, क्योंकि बिना बिल्कुल किसी से बात किए कोई भी और एक्टिविटी में गए, क्योंकि जितना एकदम तब माइंड एकदम साइलेंट होता है ना, एंड वी वांट टू कंसंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर थॉट. हम चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने का अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं. इट्स एन एक्सरसाइज. तो जब, जैसे अगर हम एक्सरसाइज शाम को करें जब ऑलरेडी शरीर बहुत थका हुआ है, तो इट्स लिटिल टायरिंग. और अगर मॉर्निंग में करें जब शरीर

0: एकदम फ्रेश है. सिमिलरली माइंड की एक्सरसाइज भी, जब माइंड बिल्कुल फ्रेश है मॉर्निंग में, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ी सी एक्टिव, दिस इज फॉर इनिशियल, बाद में तो वंस आपको प्रैक्टिस हो जाए आप कभी भी कर सकते हैं. लेकिन क्या होता है कि जब बिना आपने किसी से बात नहीं की, अभी आपने न्यूज़पेपर नहीं देखा, आपने कुछ भी नहीं किया, टेलीविजन नहीं ऑन किया, तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी माइंड में नहीं है. जैसे ही मैंने बात करनी शुरू कर दी तो वो एक प्रोसेस साइकिल शुरू हो जाता है, या न्यूज़पेपर उठा लिया तो वी हैव गॉन इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर. तो फर्स्ट उठते ही थोड़ा सा फ्रेश होकर आप बैठ जाइए और अपना स्थान एक अलग सा बना लीजिए. स्थान का भी बहुत महत्व है कि हमारा एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां हम, अगर पॉसिबल हो, इफ इट इज पॉसिबल, हम रोज उसी स्थान पर बैठकर मेडिटेशन करें उसी टाइम पर. यू नो, एक डिसिप्लिन. राजयोग ऑल्सो टीचेस सेल्फ डिसिप्लिन. टूडे आर लाइफ इज नॉट वेरी डिसिप्लिन. हमारा खाने का टाइम सेम नहीं है, सोने का टाइम, लेकिन मेडिटेशन करने का टाइम हम ट्राई करते हैं कि सेम रहे मॉर्निंग में, फ्रेश मॉर्निंग में, और स्पेस एक हो अलग से बैठे, क्योंकि धीरे धीरे उस स्थान के वाइब्रेशन बनते जाएंगे. जैसे मंदिर होता है तो मंदिर की एक अलग वाइब्रेशन होती है. तो आप देखो, जब आप मंदिर जाते हो आपको प्योर थॉट्स क्रिएट करने में एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, वो नेचुरल है बिकॉज स्थान का. तो इसी तरह जब आप अपने घर में एक स्थान चूज करते हैं और रोज उधर ही करते हैं, धीरे धीरे वो वाइब्रेशन, पहले आप वाइब्रेशन बनाएंगे और फिर वही वाइब्रेशन आपको बहुत जल्दी उस स्टेज तक पहुंचने में
1: फैला रहे हो.
0: राइट. तो एक ऑरा सा, यू नो, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है उस जगह में. अगर हम ऐसे रूम में बैठे हैं जहां टेलीविजन चलता है तो फिर वो रूम का वाइब्रेशन इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि टीवी देखते समय ऑल काइंड ऑफ थॉट्स आर देयर, वायलेंस, नेगेटिव. तो प्रेफरेबली वो रूम नहीं, प्रेफरेबली वो रूम नहीं जहां हम जस्ट सोकर उठे हैं. क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग सोकर उठकर बेड पर बैठ जाते हैं, यू नो, मेडिटेशन करने, तो वो फिर नींद आ जाती है क्योंकि उस स्थान की नींद के वाइब्रेशन है. तो या तो जहां आपका ऑलरेडी कहीं पूजा का स्थान बना है आप उस स्थान पर बैठ सकते हैं, या नेचर में अगर बैठें तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे बालकनी में, टेरेस पे, या फिर जो भी स्थान, क्योंकि हर एक के घर के भी. तो एक अर्ली मॉर्निंग टाइम बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस टाइम पर दो फैक्टर होते हैं, एक तो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश है, एंड बाकी सब लोग अगर उस टाइम अभी भी डोमेंट अवस्था में है, यू नो, जितना जितने लोग जागते जाएंगे
1: उतनी हलचल होती,
0: उतनी हलचल, जैसे हम कहते हैं ना,
1: साइलेंस होगा.
0: हाँ, मतलब इट्स एज सिंपल एज कि मुझे अगर ड्राइव करके कहीं जाना है तो आई से लेट्स गो एट 6 इन द मॉर्निंग, 6 बजे सुबह निकलेंगे, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हम जल्दी पहुंच, द जर्नी विल बी इजियर फॉर मी. जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और लोग सड़क पर आते जाएंगे, मैं अटकता जाऊंगा रास्ते में. सेम थिंग, जैसे जैसे लोग जागते जाएंगे, थॉट्स, वाइब्रेशन वायुमंडल में आते जाएंगे, और क्योंकि मेजोरिटी थॉट्स आज बहुत नेगेटिव और वेस्ट में है, तो देन दैट इज द एनवायरमेंट इन द हाउस एंड ओवरऑल. तो उस वायुमंडल में फिर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करना, इट्स स्टिल पॉसिबल, जस्ट गेट्स लिटिल टफर. जर्नी फॉर भी पॉसिबल है. तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उस टाइम उठकर बैठते हैं जब मेजोरिटी लोग अभी भी सोए हुए हैं, सो वी फिनिश आवर जर्नी एट दैट टाइम. तो मॉर्निंग का एक टाइम बहुत अच्छा है, एक इवनिंग टाइम जब आप सब कुछ अपना वाइंड अप कर लेते हैं, जिसको हम संध्या का समय भी कहते हैं ना, जस्ट बिफोर सनसेट, हम उस समय भी बैठे तो वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगता है. एंड देन बिफोर गोइंग टू स्लीप, क्योंकि बिफोर गोइंग टू स्लीप हमें सारा दिन की जो थॉट्स है उसको बिल्कुल, यू नो, डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड एनी अकाउंट. नहीं तो क्या होगा, जिस थॉट्स में हम सोते हैं अगले दिन सवेरे फर्स्ट डोमिनेंट थॉट वही आ जाता है, आज उसने मुझे ऐसा कहा था, ये हुआ, ये सोचते सोचते सो गए, कल सुबह उठते पहले उसी का चेहरा सामने आएगा. और फिर एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सुबह हमने सबसे पहले कौन सी थॉट क्रिएट की, वो हमारा पूरा दिन की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है. और उसी के लिए आज तक, अभी तक दुनिया में लोग कहते हैं सुबह सुबह पता नहीं किसका चेहरा आज देखा था, यू नो, तो इट्स नॉट किसी का चेहरा, लेकिन ये मेरा जो मन है इसमें सुबह सुबह सबसे पहला
1: विचार
0: कौन सा आया था, वो मेरे दिन का फाउंडेशन है. तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, फर्स्ट थॉट कौन सी है, और कॉन्शियसली अगर थोड़े दिन के लिए अटेंशन रखे कि फर्स्ट थॉट परमात्मा से याद की हो, यू नो, फॉर मी इट वुड बी गुड मॉर्निंग टू हिम. By whatever name I call him for each one. लेकिन it's good morning to him, first thought, no other thought at all. तो जब दिन की शुरुआत परमात्मा की याद से होती है, it, you know,

0: फिर आपकी नेक्स्ट थॉट भी अच्छी होगी।
1: एक्चुअली आपने पहली चीज समर्पित कर दी ना, पहला
0: मतलब
1: पहला कर दिया।
0: इट्स लाइक अभ्यास करते करते ये हो जाएगा ना कि सबसे पहले मुझे याद कौन आता है।
1: फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग
0: ये एक बहुत बड़ी चेकिंग होती है कि सबसे पहले मुझे याद कौन आता है। और वो ही फिर सारा दिन मेरे साथ चलेगा कि जब भी मुझे प्रॉब्लम कोई आती है, जब भी कोई बात, सबसे पहले मुझे याद कौन आता है। अभी पहले क्या होता था, सबसे पहले संबंध, दोस्त सारे याद आते थे, उनसे मदद मांगते थे, फिर कोई हेल्प नहीं कर पाता था, फिर कहते हैं भगवान कोई हेल्प नहीं कर रहा, अब आप हेल्प करो। लेकिन जब गॉड के साथ, परमात्मा के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बने, फर्स्ट थॉट उसी को याद करते हैं और फिर किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: मेडिकल रीजन भी है, कहते हैं शरीर में जो हार्मोन्स हैं, हमारे दो प्रकार के हार्मोन हैं, एक तो अच्छे हार्मोन और दूसरे बुरे हार्मोन। जैसे कॉर्टिसोल एक बुरा हार्मोन है, तो ये कॉर्टिसोल का लेवल सबसे ज्यादा होता है, डबल होता है सवेरे।
1: अच्छा, मॉर्निंग में?
2: हाँ, और आफ्टरनून में आप लो तो उससे आधा होगा। तो उस समय ये जो बुरा हार्मोन है उसे भी कम करने की जरूरत है। तो सवेरे सवेरे उठ के थोड़ा आप ऐसे अवेयरनेस करो, मेडिटेशन करो, तो उसको आप कम कर सकेंगे। कहेंगे सुबह शुगर भी सबसे लो होती है, फास्टिंग शुगर उस समय सबसे लोएस्ट है, तो उस समय भी आप ऐसे मेडिटेशन करो तो देन यू विल बी इन ट्यून विथ योरसेल्फ। अपने उसके साथ डील करना सीखेंगे, तो दिन में भी कभी शुगर लो हो तो यू आर एबल टू डील विथ इट प्रॉपरली।
0: क्रिएटिविटी भी कहते हैं ना, उस टाइम पर बहुत अच्छी होती है।
1: और एब्जॉर्ब करने की पावर, आपने कहा था कि ब्लॉटिंग पेपर की।
0: और ज्यादातर हमने देखा है कि अगर कोई प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई वर्क से रिलेटेड डिसीजन है, कई बार सारा सारा दिन सोचते रहते हैं कि क्या इसके लिए करना चाहिए।
1: एक्चुअली स्लीप ओवर इट, इट मींस इट नेक्स्ट मॉर्निंग एक्चुअली।
0: व्हाई? बिकॉज स्लीप ओवर इट, बिकॉज मॉर्निंग जब आप उठेंगे वो एकदम क्लीन माइंड और इंटेलेक्ट के साथ, द सोल्यूशन इज जस्ट देयर
1: एंड क्लियर।
0: एब्सोल्युटली, इट कम्स लाइक दिस, प्रोवाइडेड आप उसको देख रहे हैं। सी अगेन, दैट्स इंट्यूशन क्या है। कई लोग कहते हैं ये बहुत क्रिएटिव है, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, यू नो इनको बहुत सारे ऐसे आइडियाज आते हैं, सबको आते हैं। आई थिंक एवरीबडी इज क्रिएटिव, एवरीबडी इज क्रिएटिव, एवरीबडी इज इंट्यूटिव। इंट्यूशन हरेक की वर्क करती है, लेकिन हम में से मेजोरिटी के इतने ऊपर इतनी सारी लेयर्स हैं, यू नो नॉइज की और वेस्ट थॉट्स की, कि वो इंट्यूशन वाली लेयर
2: ऊपर नहीं
0: है, आती ही नहीं है। तो ये मॉर्निंग टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत अनुभव है हम सबके कि मॉर्निंग में ऐसी कोई थॉट आ जाती है, विच इज लाइक हम सोचते हैं पहले नहीं आइडिया आया ये वाला,
1: और सारे दिन के लिए हमें तैयार भी।
0: एब्सोल्युटली, फाउंडेशन।
1: सो अगेन, पहली हमने शुरुआत, सी विल अगेन कम डाउन टू दैट ओनली, की शुरुआत हमें, क्योंकि अभी भी हम,
0: और अगर उस टाइम आपको अवेयरनेस वाला प्रोसेस प्रैक्टिस करेंगे, सी अगेन लुक एट इट व्हेन इट्स द स्लोएस्ट, है ना, माइंड जब स्लोएस्ट स्पीड पर है तब उसको देखने की कोशिश करेंगे तो प्रोसेस विल बी सिंपलर।
1: तो अब वही
2: मोर डीपर इवन, जैसे अवेयरनेस क्यों, तो इसलिए क्योंकि अवेयरनेस से हम डीप जाना चाहते हैं, हमारी चेतना की गहराइयों में जाना चाहते हैं, वह भी अवेयरनेस से ही होगा।
0: और जो सुप्रा कॉन्शियस की बात की थी जागने की, वो भी उसी समय ही, मतलब अर्ली मॉर्निंग टाइम पे भी पॉसिबल है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग की डेफिनेशन भी आज हम सब में मेजोरिटी के लिए चेंज हो गई है। तो व्हाट पर्टिकुलर टाइम?
2: जब सब सोए,
0: जब सब सोए।
1: तो जब अगर सब ही मेडिटेशन करना चाहते हैं
2: तो फिर
1: क्या होगा?
0: प्रेफरेबली गुड टाइम इज बिटवीन 4 and 5।
1: ओके, 4 and 5,
2: 1%
1: तो फिर उसके बाद ये, इसके बाद कोई सो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता?
0: नहीं, ऐसा हो
2: नहीं, अच्छा है ऐसा, तो बेस्ट तो ये है
0: कि नहीं सोए उसके बाद, लेकिन डिपेंड्स दिनचर्या पे,
2: दिनचर्या पर थोड़ा सा, लेकिन नहीं सोए तो बेस्ट है। फिर भले थोड़ा देरी से आफ्टरनून में शॉर्ट एक माइक्रो स्लीप भले ले लो,
1: नाप लेके,
2: परंतु उस समय नहीं हो तो बेस्ट
1: है।
2: यू आर क्रिएटिव, आपने एक बार इंजिन को स्टार्ट किया, फिर से बंद किया, फिर से स्टार्ट किया, वो अच्छा नहीं।
1: तो 4 से 5 बजे के बीच, या 5 to 5:30 थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे थे, क्योंकि यूजुअली
2: लोगों के लिए
1: 6 बजे तक तो लोग उठते मैंने सुना है, क्योंकि काफी सारी तैयारियां करनी होती हैं। तो 5:30 तक अगर, कई लोग मैंने देखा है जो व्यायाम के लिए जाते हैं, जो योगा के लिए जाते हैं, वो लोग 5:30-6 बजे एग्जैक्ट उठ के जाते हैं, वॉक करके आते हैं, फिर अपनी बाकी चीजें शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब शिवानी बहन, अभी तक तो हमने ये तो बात कर ली कि सजगता के लिए सबसे अच्छा टाइम सुबह है, अगर हम सुबह करें, या आपने कहा कि संध्या काल भी और खासकर सोते वक्त भी करें, एक पर्टिकुलर जगह तय कर लें कि ये एक्चुअली ये सब

0: आसान है, किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर जगह हम तय कर लें घर पे, वहां बैठ के शुरुआत करें परमात्मा से हेलो करके, नमस्कार करके या उन्हें याद करके। आगे क्या करें?
1: हाँ, जब बैठते हैं उस टाइम पर तो डिपेंड्स हर एक किस प्रोसेस से उसको करते हैं। राजयोग में जो हम करते हैं, क्योंकि थॉट्स को चैनलाइज करना है, सबसे पहले तो अपने आप को रियलाइज कि अवेयरनेस भी कौन है जो मैं हूं, जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, कौन है जो मैं अपने आप को देखने की कोशिश कर रही हूं, तो क्या आंसर अंदर से निकलता है। जो हमने बात की कि ईगो है मैं को नहीं जानना, तो सेल्फ, अब ऑल दिस वी आर डूइंग ताकि हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़े, डिप्रेशन फिनिश हो, हॉलोनेस फिनिश हो जाए, तो वो सब तब खत्म होगा जब वो मैं की अवेयरनेस होगी कि मैं कौन हूं। तो वो आइडेंटिटी को अपनी फिर से पहचानना कि हु एम आई एक्चुअली। तो शुरू में वी जस्ट गो थ्रू अ रिलैक्सेशन प्रोसेस, जैसे गिरीश भाई ने भी बताया कि शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दे, एकदम रिलैक्स
0: कर दे,
1: एक एक बॉडी के हर एक पार्ट को फील करते हुए उससे डिटैच होते जाए। यू नो, डिटैच इन द सेंस, जैसे सपोज एक ये हाथ मैंने पड़ा है यहाँ, बहुत देर ऐसे ही रखे अगर एक पोजीशन में, थोड़ी देर के बाद ऐसे लगता है कि ये है ही नहीं, ये है नहीं, बट इट्स स्टिल देयर। लेकिन जैसे ही उसकी तरफ फिर ध्यान जाएगा, देन आई कैन फील इट्स देयर। तो इसलिए शरीर के एक एक अंग को उस तरह से फील करके फिर डिटैच होते जाए, एंड देन कम बैक टू दैट हु एम आई एक्चुअली, यू नो, एंड स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ। क्वेश्चन भी पूछते जाए, आंसर भी आता जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें थॉट से ही होनी है। द क्वेश्चन इज ऑल्सो अ थॉट, द आंसर इज ऑल्सो अ थॉट।
0: इट इज पार्ट ऑफ अवेयरनेस,
1: इट इज पार्ट ऑफ अवेयरनेस,
0: ये सजगता का ही भाग।
2: नेक्स्ट स्टेप है सर, बहुत अच्छा स्टेप है जो शिवानंदन बता रहे, दैट इज अ नेक्स्ट स्टेप। सजगता को अगर हमें प्योर, लाइक नो प्योर अवेयरनेस इफ यू आर टॉकिंग, तो उसमें कहते भी रिलैक्स होने का भी नहीं सोचो, सिर्फ आप उसे ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बस उसी को साक्षी भाव से ऑब्जर्व करो। और साक्षी भाव से जैसे आप ऑब्जर्व करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक विचारों की गति कम होगी।
0: साक्षी भाव से हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, वही
2: जो कुछ भी
0: जो जो जो हो रहा है
1: माइंड में, जो हो रहा है
2: अभी, एक माइंड में, बॉडी में भी कर सकते हैं। शुरुआत बॉडी में भी करना है तो करो, बॉडी में भी करो कि भाई आईब्रोज में क्या हो रहा है, आंखों में क्या हो रहा है, अंदर में क्या हो रहा है, जीभ है वहां क्या हो रहा है, शोल्डर्स में क्या हो रहा है ऐसे। लेकिन एक डायरेक्शन डिसाइड करो पहले, वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे एक मैंने कैसेट देखी थी,
0: यही करें,
2: हाँ कुछ दिन करो कम से कम,
0: नहीं पर हर रोज एक ही एक्सरसाइज कीजिए। जैसे आपने कहा कि हर रोज एक ही जगह तय करें, तय एक ही जगह कर ली जाए कि वहीं करना है, टाइम वो कर लिया जाए, तो विचार भी क्या या जो भी कर रहे
2: कम से कम
0: जो प्रोसेस
2: करें। एकाध मास है जो पूरा मैं आपको थेरेपी बता रहा था, पांच स्टेज में,
0: बिल्कुल
2: उसका अगर ये हम स्टेप लेते हैं तो यही करो
0: पांच दिन हम ये तो, पर ये तो बहुत जल्दी अपने आप को समझ लेंगे हम,
2: नहीं ये जल्दी उसमें, लेकिन जो डीप बेनिफिट्स है वो जल्दी नहीं आएंगे अभी इसमें हम डीप बेनिफिट।
0: एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि हमें बैठना तो वहाँ 20 मिनट है ना, 20 से 25 मिनट है, तो हम ये जो अवेयरनेस वाली बात है अपने बारे में, हम आंख में क्या जा रहा है, ये तो मुझे बहुत जल्दी पता चल
2: जाएगा। जल्दी नहीं करना है ना, वो 20 मिनट में यहाँ से नीचे पहुंचना है, जल्दी नहीं करो, इवन 45 मिनट्स भी कहते हैं। कम से कम मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम आपको टाइम देना है तो मिनिमम 15 मिनट्स, क्योंकि इट कैन बी लॉन्गर ऑल्सो, तब है ना क्या अभी फायदा। ये तो कहीं कहते ये तो बोरिंग एक्टिविटी है, क्या करना है हमको, परंतु इसका फायदा यह है कि आपके जो डीप रूटेड थॉट्स है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, चाहे डिप्रेशन न भी हो और भी आप में जेलसी क्रिएट कर रहे हैं और नेगेटिविटी ला रहे हैं, तो वह फिर आपको पता चल जाएंगे। इसको कहेंगे कि हमारी गहराई में जो सबकॉन्शियस में है वह सरफेस पर आएंगे, उसी समय आएंगे कि आप यहाँ देख रहे क्या हो रहा है, तभी हो सकता है कि मेरा दोस्त है ना, वो बहुत अपने आप को अहंकारी समझता है, मुझे उसको कुछ करना पड़ेगा, तो वो विचार क्यों आया था अभी, दूसरा कोई नहीं आया, क्योंकि डीप में था।
1: कई डीप रूटेड चीजें इमर्ज हो जाती हैं,
2: रूट कॉज भी इमर्ज
0: हो जाती है, तो फिर कभी कभी हमें लगने लगेगा कि ओहो मैं तो कितना नेगेटिव हूँ,
1: दैट ऑल्सो
2: हैपन्स,
1: बट इट्स ओके। जैसे कहते हैं ना, होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू किया तो सारा वो निकल आएगा बाहर, दैट्स गुड, दैट्स अ साइन दैट इट्स ऑल कमिंग आउट,
2: पीपल स्टार्ट क्राइंग समटाइम्स,
0: कैथारसिस जो होता है,
2: वो हो सकता है हमें, तो अच्छा एक्चुअली वो बुरी साइन नहीं है कि आप अभी अपने आप को पहचानने लगे, जो ना कैच की बात है, अभी पहला था अवेयरनेस या वॉच।

0: फिर सेकंड है कैच,
1: और इसी में जो ये सारे विचार आते जाएंगे आपको फिर वापस उसी पे पहुंचना है,
0: आपको तो वही
1: कई बार कि भाई अब मैं गले तक पहुंचा था या मैं यहाँ कंधे तक पहुंचा था,
0: ठीक है हाँ। तो उसको मैंने देख लिया कि विचार आया नहीं, ठीक है
1: फिर उसने क्या किया उस विचार,
0: अगर आपको थेरेपी करनी है तो लिख भी लो भले। मैं कई बार ये कहता हूँ कि सचमुच अभी थेरेपी के रूप में हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात कर रहे थे, तो मैं कहता हूँ भले नोट भी कर लो तो शायद आप भूल जाएंगे 20 मिनट लेकिन जो क्या आया था,
1: अच्छा ये विचार आया है,
0: भले नोट कर लो कोई बात नहीं, और फिर से मुझे इसी में आगे बढ़ना है।
1: ओ अच्छा,
0: तो फिर उसको कैच करने में आपको बहुत बड़ी मदद मिल सकेगी।
1: ओके, और आपने कहा कि कम से कम 5 दिन लगातार,
0: ज्यादा एक मास करो
2: कम से कम,
1: अच्छा एक महीना सिर्फ यही एक्सरसाइज करते रहे,
0: हाँ तब भी ना रूट मिल गया तो आपकी 50% विजय हो गई।
1: ओके,
0: रूट नहीं मिला सारी जिंदगी कुछ भी करते रहो कोई फायदा नहीं,
1: और शुरू शुरू में लगेगा कि नहीं हो पा रहा हमसे, लेकिन हमें प्रैक्टिस करते जाने क्योंकि हमें ये पता चल जाता है डीप विद इन कि दिस इज फॉर द गुड, क्योंकि हमारे सामने वो लक्ष्य दिख रहा है कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचना है, अवेयरनेस से शुरुआत करके ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचना है। बहुत सुंदर, आज इनफैक्ट मेरे लिए भी एक बहुत अवेयरनेस की बात थी, मेरे लिए मुझे एक तरीका मिल गया, एक रास्ता मिल गया, बहुत से हमारे दर्शकों को ये रास्ता मिला होगा, हो सकता है मेडिटेशन के अलग अलग तरीके हों, सब कुछ एक पूरा हर तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं वो शामिल हैं, लेकिन ये खुद से बात करना, एक्चुअली खुद को पहचानना, अवेयर होना एक जरूरी एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ में, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग नाउ। सिस्टर शिवानी एंड डॉक्टर गिरीश पटेल, थैंक यू सो मच, और अगला कदम जो होगा वो कैच करने का होगा। ये आपने बताया तो है कि लिख लें, लेकिन कैच करना जरूरी हो जाएगा। एक जल्दी से रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है हमें। सुबह का समय अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संध्या के समय या फिर रात सोने से पहले एक जगह तय करेंगे, मंदिर या कोई भी ऐसी जगह जो लगता है हमें कि हम उसकी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कर सकते हैं और वो पॉजिटिव रहेंगे और हम हर रोज वहीं बैठ सकते हैं। कोशिश करके देखते हैं, आज से मैं और आप सब प्रयास करते हैं कि ये एक समय निश्चित करके हर रोज हम शेयर भी करेंगे, आपके ईमेल और फोन कॉल से हमें वो शेयरिंग जरूर मिलेगी, और उसके बाद कोशिश ये करनी है कोई भी तरीका अपना के कि 15 मिनट से अगर हम शुरू कर लें तो
0: ठीक है,
1: तो 15 मिनट से हम ये पूरे प्रोसेस को शुरू करेंगे, अपने ही बारे में जानेंगे कि यहां से लेके पांव तक क्या कुछ हो रहा है मेरे साथ, ये वॉच करेंगे, तो वॉच आप भी कीजिएगा अपने आप को भी और इस प्रोग्राम को भी, क्योंकि हर कड़ी में हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अगली बार हम बात करेंगे कि कैसे कैच करना है, कैसे जो वो विचार जो नेगेटिव हैं जो हमें ट्रांसफॉर्म करने हैं उन्हें कैच करना है। तो अगर आपके पास कोई सवाल है या आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि आपने ये जो सजगता का प्रोसेस है ये शुरू किया है कि नहीं, आप हमें फोन पर या मेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर आज इस वादे के साथ एक दूसरे से कि ये प्रोसेस हम शुरू कर देंगे और जल्द ही हमें इसके जो अंजाम है, रिजल्ट्स हैं, ये भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अब दीजिए इजाजत, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
3: नमस्कार, मी मोनाली सावागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल।

0: एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद. हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना. इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज. दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस. एनर्जी लाइफ है. ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा
2: दोस्तों हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही है, लेकिन जब भी हम स्कूल में जाते हैं, पाठशालाओं में जाते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लिटरेचर में हमेशा से कविताओं का एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। और हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी जुमले, मुहावरे, उक्तियाँ, कहावतें, दोहे और कुछ ऐसे प्रख्यात पंक्तियाँ कवियों के हमने बार बार इस्तेमाल किए हैं अपनी बात पे जोर देने के लिए, अपनी बात को और गहराई से सामने वाले को समझाने के लिए। और मैंने आपने हर बार किसी न किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि भाई जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि अर्थात सूर्य, सूर्य की किरण हो सकता है मनुष्य के हृदय तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन कवि की भाषा, कवि के बोल, कवि के संवाद व्यक्ति के हृदय तक पहुँचती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही कवि को लेकर के आया हूँ। यशस्वी भारत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप दोस्तों रेडियो मधुबन में। मैं आर्य शांतनु आपके बीच में आज फिर से आया हूँ एक खास मेहमान के साथ। दोस्तों आज हमारे बीच में है राजेंद्र गोपाल व्यास जी, जिन्हें सन 1989 में राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। राजेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद सबसे पहले कि आपने समय निकाला और हमारे लिए आज हमारे
3: धन्य हुआ आपके इस कार्यक्रम में आकर के, बहुत अच्छा लगा मुझे।
2: दरअसल राजेंद्र जी, जो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, चाहे वो हमारे श्रोता साथी हैं, चाहे वो हमारे वक्ता हैं जैसे कि आप हमारे अतिथि, हर कोई धन्य इसलिए है, ऐसा मैं मानता हूँ, शायद आप भी मानते होंगे, कि हम सबकी रग जो है वो भारत देश से जुड़ी हुई है और इसलिए शायद हम सभी धन्य है।
3: क्या बात।
2: लेकिन आज हम एक्स्ट्रा धन्य फील कर रहे हैं श्रोता साथियों, मुझे लगता है आप भी यही मानते होंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनका जो गेम है, जिनका जो खेल है, जिनका जो पावर है वो शब्दों में है। और कहीं ना कहीं मैं आज आपसे बहुत कुछ सीखने वाला हूँ।
3: बहुत शुक्रिया।
2: तो राजेंद्र जी, शुरुआत करेंगे हम आपके जीवन के उन पहलुओं से जहाँ पर किसी सामान्य बच्चे की तरह या युवा की तरह आप भी सोचते होंगे कि कुछ करना है जीवन में और कमाना है, घर परिवार में लोग होंगे जो कहते होंगे कि भाई कमाई के साधन ढूंढो। ऐसे समय में मन तन कविता की ओर अगर जाने लगे या कहे साहित्य की ओर जाने लगे, तो कहीं ना कहीं घर वालों में घबराहट होती है कि ये क्या कर रहे हैं, इससे कैसे उनका घर चलने वाला है। तो क्या आपको भी सारी चीजों का सामना करना पड़ा?
3: बिल्कुल, आपने रियलिस्टिक अप्रोच से बात की है और मेरे कोमल मन के उस फ्लैशबैक में आप मुझे ले चले गए जिस गांव में मेरा जन्म हुआ। देखिए, राजस्थान में एक भीलवाड़ा जिला है, उसके पास 18 किलोमीटर के पास मेरा एक गांव है हमीरगढ़। आपको इस नाम से सुन के आश्चर्य होगा कि हिंदी काव्य मंचों की वाचिक परंपरा के देश के अनंत कवि हमारे गांव में उपस्थिति दे चुके, मसलन नीरज जी, हरिओम पवार हैं, शैल चतुर्वेदी, माया गोविंद, रामरेख मनहर, कोई हिंदुस्तान का ऐसा सेलिब्रिटी कवि नहीं रहा हो जो मेरे गांव में नहीं आया। और उसकी क्रेडिट जाती है एक मेरे अग्रज कवि हुआ करते थे जिनका देहावसान हो गया, उनका नाम बंशीलाल बेकारी। वो उस समय बेकार थे, कोई जॉब नहीं था, पढ़ाई में भी वो कोई ज्यादा, उन्होंने मैट्रिकुलेशन भी बड़ी मुश्किल से किया, लेकिन कविता उनमें ऐसी उतरी कि मैं उनको बरसों तक सुनने के बाद कविता में आया। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक बड़े कवि को 25 साल सुनने के बाद मैंने पोइट्री की कलम उठाई। मेरा एक डायलॉग है कि पहले सोना खरा करे फिर गहने बनाए। तो एक तपस्या रही। तो मेरे गांव में मेरे पिताश्री बहुत अच्छे गायक और कथावाचक रहे, सत्यनारायण की कथा उनकी अपनी ग्रामीण अंचल की, जिसे मैं उनके साथ साइकिल पे जाता था और सुनता था। अब तो कथाएं बंद हो गई, जीवन में सत्य ही नहीं रहा तो नारायण की कथा कहाँ ढूंढेंगे हम लोग। ये एक ऐसी कथा है, नानी बाई का मायरा चल रहा, लेकिन आपको सुना ही नहीं देखा। लेकिन मैंने आपको बताऊं, 21 बरस बाद मैंने एक बार दो जगह इस कथा को फिर से किया। जब से मेरे जीवन में सत्य का प्राकट्य हुआ, जब से मुझे

0: मेरे गांव की चौपाल, चूल्हा, चौकी, ये शब्द बोला करते थे वो। और उसी के साथ मेरे फादर पंडित जमुना लाल जी व्यास जी के साथ तो मैंने म्यूजिक सीखा। मेरे एक अग्रज बड़े भाई रहे पंडित मनोहर व्यास, उनको सरस्वती की उपाधि मिली। उन्होंने कुछ हिंदी अकादमी के एक काव्य ग्रंथ में उनकी रचना छपी, तो वो मेरे दूसरे प्रेरणा स्रोत। और भाई
1: तो
0: जी,
1: ये जी, तो ये जो इंटरव्यू है भाई जी, ये आज का एपिसोड जो यशस्वी भारत का, ये ऐसे बातचीत से नहीं चल सकता
0: जी।
1: कुछ सुना दीजिए
0: अभी,
1: जो कि आपके बचपन से है,
0: बिल्कुल
1: आपके बिगनिंग के टाइम से।
0: बिल्कुल बात, मेरा सबसे पहले मैंने क्षणिका लिखी भाई जी, जब मैं कॉलेज में आया था तो मेरी माँ अल्पना मांडती थी है गाँव में, और उसका तो वो अल्पना मांडी, तो मैंने एक क्षणिका जीवन में सबसे पहले लिखी। और मैं निवेदन कर दूं,
1: पहले तो आप बता दीजिए कि क्षणिका होती क्या था, कि हमें
0: क्षणिका होती है
1: नॉलेज भी मिले।
0: देखिए, क्षणिका न तो मुक्तक होता है, न कोई कविता का कंटेंट, मतलब बड़ी कविता होती, न शायरी होती। क्षणिका के मतलब कुछ क्षण में हम एक ऐसी बढ़िया बात कह दें जो हमारे अंतस को तृप्त कर जाए। छोटी कविता को अपन क्षणिका कहते हैं, उसमें एक पैराग्राफ भी नहीं होता, एक बंध भी नहीं होता। सुनिएगा, देहरी पर मंडी अल्पना मेरे जीवन के चित्र खींच जाती है, और अफसोस है कि मैं उसे अब तक भी नहीं समझ पाता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, है एक मनस्थिति, शाश्वत परिस्थिति। इसे हंस हंस कर जीऊं या रो रो कर, इसका जो शीर्षक है वो प्रश्न यही है। और यही कविता मैंने कॉलेज के वक्त में हरिवंश राय बच्चन जी को लिखी डरते डरते, और आप आश्चर्य करेंगे कि इतने बड़े फुल परिशिष्ट पर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आपको गहन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आप में कविता का बीज है। वो आज मेरे लिए पद्मश्री और पद्म भूषण की उपाधि से भी, और मैंने उनकी वैल्यूज को जीवन में इतना धारण किया कि आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो ये एक शुरुआत मैंने इससे की है कि कविता का बीजारोपण तो मुझ में हुआ है। आप आगे जैसा मुझे जिस तरह से संकेतित करें, मैं प्रस्तुत हूँ अपने अभी।
1: तो आपका जो ये क्षणिका था, इस क्षणिका से हमें एक चीज तो ये समझ में आता है कि जीवन में हर क्षण की बहुत वैल्यू है।
0: गजब की बात।
1: एक क्षण में आप बहुत बड़ी बात कह जा सकते हैं, एक क्षण में सामने वाले को आप कोई जीवन का एक मोल समझा सकते हैं, एक क्षण में व्यक्ति क्या से क्या नहीं अनुभव कर सकता है। जैसे एक क्षणिका के द्वारा आपने ये कहने की कोशिश की कि जो अल्पना मांडी है आपके माँ ने, उसकी खूबसूरती या उसको समझ पाना आपकी मनस्थिति से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार सामने वाले के लाइफ को समझ पाना हमारी मनस्थिति से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हम सामने वाले को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो नहीं समझा पा रहा है। नहीं, हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम समझने की स्थिति में नहीं है। बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, मैं समझता हूँ।
0: शाश्वत परिस्थिति सर, अब दो विकल्प है, या तो मैं उसको हंस के जीऊं या रोकर। तो लिव इन प्रेजेंट, न तो मैं पास्ट को महत्व देता हूँ न फ्यूचर को। सर, इस समय मैं पूरा जीने का प्रयास हर क्षण करता हूँ, इसलिए मेरा एक डायलॉग है, देश में बहुत कवि बोलते हैं कि जीने के साथ एक क्षण में वो मिल जाता जो मूर्खों के साथ उम्र गुजारने पे नहीं मिल। ये मेरा कैप्सूल भगवान रेडियो में भी बजता है, और हिंदी काव्य मंचों पर मैं भी बोलता हूँ, और कुछ महान कवि भी, कुछ मेरा नाम ले नहीं ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लोग पहचानने लगे कि मेरे डायलॉग्स किस तरह के। आप
1: तो राजेंद्र जी, अब आपके जीवन में थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। ये तो वो टाइम हो गया जब आपको प्रेरणा मिली
0: जी,
1: लेकिन आपके जीवन से हमें ये भी जानने को मिलता है कि आपने संगीत और तबला वाद्य यंत्र का बहुत अच्छा अध्ययन भी किया। तो आपके पिता संगीतकार थे, संगीतज्ञ थे, क्या कभी उन्होंने आपको उस तरफ खींचने की कोशिश की, या कभी आपके बीच में और उनके बीच में ऐसा कुछ हुआ कि आपने बोला नहीं नहीं मुझे केवल साहित्य और काव्य से ही जुड़ना है? वो दौर कैसा था?
0: वो दौर बड़ा प्यारा था। मैं रियली फोक म्यूजिक में और भजनों में और इसमें था, मेरे पिता के साथ कथा में मैं भी भजन गाता था। जब मैं कॉलेज में आया तो एक अंतर राज्य स्तरीय सुगम संगीत लाइट म्यूजिक का कॉम्पिटिशन हुआ। मैं गाँव से आया और आप आश्चर्य करेंगे, मैंने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। मैंने संगीत में, उस सुगम संगीत में जैसे ही मैं फर्स्ट आया, हमारे यहाँ के जो जज थे वे एक संगीत कला केंद्र के प्राचार्य थे, उनका नाम था स्वर्गीय लक्ष्मण दास जी वैष्णव। उन्होंने तुरंत शाम को मुझे पकड़ के कहा कि आज से तुम पढ़ाई भी करोगे कॉलेज की, और संगीत में आप संगीत की शिक्षा भी विधिवत लोगे। ये उस समय का दौर है सब, जब मैंने तबला भी सीखा, वोकल भी।

0: सीखा और संगीत में बहुत अच्छी एक तरह से एक शिक्षण की शैली मैंने अटेम्प्ट करी। बरसों तक मैं म्यूजिक में रहा, उसके बाद मुझे कविता सुनने के साथ आया, तब मैं तानपुरा लेके भीमसेन जोशी और पंडित ओकारनाथ ठाकुर इन महान कवियों के साथ, अमीर खान साहब के साथ मैंने तानपुरा बजाया। सर वहां मेरा लाइफ था स्वरो व ब्रह्म न इति संशय। बाद में मेरा विचार हट गया कि शब्दों व ब्रह्म न इति संशय थी, उसके बाद में कविता में आया, इसलिए मेरे कंपोजिशन भी भगवान मुझे बनाता है, मेरा म्यूजिक भी गीतों का मेरा होता है, धुने भी और लिरिक्स भी मेरे होते हैं।
1: तो जो गीत आपने गाया था सुगम संगीत में, जिसकी वजह से आपको पुरस्कार मिला, जिसकी वजह से आपके जीवन का एक नया द्वार खुला, क्या वो उस गुणगान चाहेंगे?
0: मैं उसकी दो चार पंक्तियां, देखिए वो गीत ही नहीं मिलेगा आपको, मुझे किसी ने कहा कि अब उसको नेट पे डाल। देखिए, घूंघट घूंघट नैना नाचे पनघट पनघट छैया रे, घूंघट घूंघट नैना नाचे पनघट पनघट छैया रे, रोम रोम में प्रभु ये नाचे कैसी तेरी मैया रे। तो ये जो घूंघट घूंघट नैना नाचे का गीत बहुत समय हुआ, और मैं फिर क्लासिकल म्यूजिक में आ गया सर, विधिवत मैंने संगीत की शिक्षा ग्रहण करी, उसके बाद मैं शब्द में आ गया। और पोइट्री की बात तो अब आप शुरू करेंगे तो मैं बीच बीच
1: में, आपने जो अभी ये गाया इसमें भी अगर हम देखें धुन जो है वो रूह तक पहुंचती है।
0: ये धुन भी मेरी बनाई हुई है सर।
1: वाह,
0: धुन भी मेरी,
1: क्या बात है।
0: उस समय धुन बनाने लग गया था मैं, ये है सर मेरे ख्याल से 71 का काम है। 71,
1: आप सोचिए जो धुन है वो रूह में गूंजता है, लेकिन जो शब्द है
0: बहुत है,
1: वो उस गूंज से भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं, क्योंकि धुन हो सकता है व्यक्ति भूल भी जाए लेकिन शब्द उसे याद रह जाता है।
0: बिल्कुल रहता है जहन में
1: शब्द। ये शब्द जो है कितने ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है साथियों, अगर आप सुन रहे हैं कि घूंघट घूंघट नैना नाचे, मतलब हर एक का आंख जो है, हर एक के नैन जो वो तरस रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रभु जो है वो
0: छुपा हुआ रहता है,
1: छुपा हुआ है, क्योंकि जैसे आपने पहले क्षणिका में कहा कि मनस्थिति पे निर्भर करता है, तो शायद मेरी मनस्थिति ठीक नहीं है कि मैं उन्हें समझ पाऊं या देख पाऊं। तो जैसे आपने बताया कि आपने काव्य पाठ करना शुरू किया, आपको शब्दों ने खींचना शुरू किया
0: जी,
1: सुर का साथ आपने नहीं छोड़ा लेकिन शब्दों को आपने ज्यादा अपना क्लोज फ्रेंड बनाया, अपना दोस्त बनाया, तो उस समय आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या
0: मुझे,
1: उस समय
0: मुझे
1: की कुछ बातें?
0: अच्छा, मुझे अगर पूछा जाए तो मुझे कठिनाई महसूस नहीं होती सर, आज भी नहीं होती। मुझे लगता कि ये पत्थर मुझे ठोकर के लिए नहीं, इस पर चढ़कर के अगली मंजिल पर जाने की वैल्यू देता है, मुझे मैटर भी कुछ न कुछ सिखा देता। मेरी चेतना को मैंने पदार्थ के साथ दोस्त माना, प्रॉब्लम्स को मैंने अपने अनुकूल नहीं, मैं उसके अनुकूल बन के आगे बढ़ा। एक मन की स्थिति बताता हूँ आपको। जब मेरा मन ऐसा बेचैनी में हो जाता था तो मैं अकेला एकांत में, मेरे गांव में तालाब है, वहां मैं पेन और कॉपी लेके चला जाता था। वहां मैंने बहुत पहले सबसे पहला गीत लिखा, मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है। मेरे तालाब में कमल खिले रहते थे सर, तो कमल मुझे लगता था कि मैं मछलियां भी देख रहा हूँ, कमल भी खिले हुए हैं, और मैं उसमें बड़ी तैराकी में अपने गांव में मेरा रिकॉर्ड हुआ करता था। ऊंचाई से कूदने पर राजस्थान में उसको घंटा लगाना, चमकी लगाना, गोते लगाना, तो वहां मैं पहले नहा लेता फिर गीत लिखता, तो वो देखेगा मन।

है। जब चरित्र का चमके चंद्रमा तब ही ज्वार उठ जाता है। मन केवल गीत लिखने से कुछ नहीं होगा, जब तक प्योरिटी आपके पीछे नहीं है, आपका जो संप्रेषण है, आपका जो ट्रांसमिशन है वो ठीक नहीं होगा। पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, देन ट्रांसमिशन में आते हैं। तो मेरे

0: ख्याल से आप मेरे उस फीलिंग को समझ रहे होंगे कि मैं स्पॉन्टेनियस और फ्लो में बैठा हूँ। मैं कोई सोच के नहीं आया, मैं कोई डिबेट रट के नहीं आया हूँ। आपके सहज प्रश्न आ रहे हैं और मेरा अनाथ चक्र जगा हुआ है। मैं रसोवे सह का एक तरह से मानस पुत्र हूँ। परमात्मा ने दुख बनाया ही नहीं, वो रसोवे सह है। कोई पिता अपने बेटे को दुख देगा? दुख मनुष्य का इजाद है सर, हमने बनाया, प्रॉब्लम्स हमने पैदा करी
1: जी।
0: हम आनंदित पैदा हुए और सुख ढूंढने के चक्कर में हमने आनंद को खो दिया है, क्योंकि सुख का जो रिफ्लेक्शन है वो दुख है, आनंद का कोई।
1: बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत सुंदर बताया कि जहाँ सुख का अभाव है उसे ही दुख कहा जाता है, जहाँ रोशनी का अभाव है उसे ही अंधकार माना जाता है। लेकिन अगेन राजेंद्र जी, मुझे आपको फिर से उसी जगह पे लेके जाने का मन कर रहा है, जब आप वो छलांग लगाते थे, जब आप वो डुबकी लगाते थे, तो जब फिजिकली हम, आपने क्या कहा, चुपकी,
0: हाँ चमकी, उसको जैसे पनडुब्बी चलते ना ऐसे पानी में अंदर जाके,
1: आपने तीन शब्द बोले आपने, कौन कौन से?
0: एक गंठा, एक गंठा जो बुर्ज से नीचे लगाया जाता, उसका पानी बहुत हाइट तक जाता, और जिसका पानी सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा वो फर्स्ट आएगा।
1: ओके, तो गंठा, चमकी और डुबकी।
0: चमकी जो है वो डुबकी होती वही नीचे, सीधा नीचे जाना, वो चमकी में ऐसा लंबा जाना पड़ता 20 फीट 30 फीट, तो कौन कितना दूरी तक निकल सकता पानी में अंदर नाक पकड़ के, वो उस तट पे फंस जाता। बड़े तो, प्यारे अनुभव है सर।
1: श्रोता साथियों, अगर आप सुन रहे हैं तो आप जरूर रेडियो मधुबन पे कॉल करके बताइएगा कि आपके अनुभव क्या है, क्या आपने कभी गंठा लगाया है या कभी चमकी लगाई है, कभी डुबकी लगाई है,
0: और अगर कमल लेने गए या कभी कमल लेने गए उसमें वो जूझला होता है, ऐसे कटीले हरे वनस्पति होती सर, उनको चीरते हुए कि सांस ही लोग कमल लेके आते हैं, उससे हमारे शिवालय पर पूजा होती।
1: ये जो है, ये मेरा सवाल था कि जब आप वो गंठा लगाना चाहते हैं या आप चमकी लगाना चाहते हैं, तो फिजिकली आप चैलेंज है ना, शरीर को एक चैलेंज महसूस हो रहा है, एक चुनौती मिल रही है कि क्या तुम कर सकते हो, तो अंदर में एक रूह में एक गुदगुदी सी होती है जो संभाल पाना उस समय में जरूरी है। लेकिन एक बार आप चमकी लगा लेते हैं या घंटा लगा लेते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं,
0: बहुत रिलैक्स, इससे बड़ा सुख नहीं।
1: तो क्या ऐसा ही घंटा या चमकी लगाने वाला गुदगुदी आपको कभी महसूस होता है जब आप लिखने बैठते हैं?
0: बिल्कुल महसूस होता है। मैंने गीतों में इन चीजों को, मेरी अनुभूतियों को मैंने अपने शब्दों में ढाला है, और लोग मुझे भाई जी पूछते हैं कि व्यासी आप इतना बढ़िया कैसे लिख लेते, एक बड़ा प्रश्न है। लोग मुझे, ऑडियंस पूछती है मंच से उतरने के बाद, आप इतना बढ़िया कैसे लिखते हैं, तो उनके जवाब में भी मैंने एक गीत लिखा जिसकी दो लाइन इस मौके पर मैं कहूंगा

0: नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं हो सर, मैं तो बांस की पोंगरी हो गया। वही उतरता है मुझ में जो कुछ कह जाता है, और मैं खुद फिदा हूं कि मुझसे ऐसा क्या कौन बोल जाता है। जब मैं योग में और गहन मेरी नुमा शाम में अमृत वेले में उतरता हूं, तो मैं भगवान से पूछता हूं, क्या प्रभु आपने मेरे शरीर को चुना है कि ऐसी संस्कृत निष्ठ एक भारतीय संस्कृति को फिर से स्वर्णिम भारत लाने में वैल्यू बेस्ड पोइट्री का माध्यम आपने शायद मुझे ही चुना है, तो मैं अपने आप पे फक्र अनुभव करता हूँ।
1: तो दोस्तों, जो भी आप सुन रहे हैं, राजेंद्र गोपाल व्यास जी ने जो कहा नुमा शाम या अमृत वेला, अर्थात वो बहुत भोर में उठ करके जब परमात्मा को याद करते हैं उसे अमृत वेला कहते हैं, और जब नुमा शाम में वो ईश्वर को याद कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, तो उसे वो नुमा शाम कहते हैं। बट राजेंद्र जी, जो आपने बात कही अपने दो लाइनों के माध्यम से कि आप में वो क्या औकात या हैसियत है कि आप कुछ लिखें, ये तो परमात्मा का सौगात है जो आपने लिखा है, लेकिन सौगात भी तो सबको नहीं दिया जाता, सौगात भी तो पात्र को देख करके दिया जाता है। तो आप में ऐसी कौन सी पात्रता नजर आती है आपको जो परमात्मा ने आपको चुना?
0: मुझे लगा कि मेरा बचपन, मेरी परवरिश संस्कारों के आधार पे हुई सर। बड़ों से कैसे बात की जाए, छोटों के, आप आश्चर्य करेंगे, 10th क्लास तक तो मैं ये नहीं समझा कि इस लड़की में और मुझ में कोई भेद है। हमारी गांव की प्योरिटी बता रहा हूँ सर। हमारे माता पिता एक दूसरी बच्ची और बच्चे के घर पे हम रात रात भर स्टडी करते थे परीक्षाओं के दिनों में। कहीं सर किसी तरह के अनकॉन्शियस

0: सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में कहीं विकार नाम की चीज सर होती ही नहीं थी। तो ये जो मेरी परवरिश का जो एनवायरमेंट मुझे मिला और मैं हमीरगढ़ स्कूल में 10वीं तक पढ़ा, तो वहां मुझे ऐसे शिक्षक मिले सर जिन्होंने एकेडमिक फिजिकल, मैं गेम्स में भी फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा, बहुत अच्छा तैराक रहा, बहुत अच्छा हारमोनियम में 6वीं क्लास में प्ले करना सीख गया था सर। उसके बाद मैंने तबला फ्लूट बहुत सारी चीजें सीखी। तो ये मेरे इसके पीछे मेरा पारिवारिक वातावरण, बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे टीचर्स जो मेरे आइकॉन है, आज कुछ टीचर्स तो अभी भी है सर, वो अभी भी साइकिल पे चलते हैं। एक काशीलाल जी शर्मा है जिन्होंने विदेशों की यात्राएं करी सर, आप शायद आपने सर्च किया होगा, उन्होंने कम से कम 20 कंट्रीज में यात्रा की, वो आज भी साइकिल पे चलते हैं, न डायबिटीज है न एक टेबलेट नहीं लेते सर, जिन्होंने मुझे 10वीं में पढ़ाया।
1: तो कहीं ना कहीं ये बात पक्की हो जाती है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों ने जीवन शैली अपनाई, वो आज की डेट में भी उतनी ही खरी है। अगर हम उसे धारण करते हैं, हम उस जीवन शैली को अपनाते हैं, तो हम निरोगी भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और पर्यावरण के लिए भी बहुत सुखदायी है। लेकिन जहां बात आती संस्कारों की, आपने कहा कि ये आपके संस्कार थे जिसने आपको वो सही पात्र बनाया कि आप ये शब्दों के तोहफे को यूज कर सके। आप एक शिक्षक भी रहे हैं और CCRT की तरफ से आपको राष्ट्रीय शिक्षक का भी सम्मान मिला है। तो जब आप शिक्षण में गए और जब आपने देखा कि भाई आप जब पढ़ाने गए और जब आप खुद पढ़ रहे थे, उस टाइम में काफी फर्क था,
0: बहुत अच्छा,
1: तो उस फर्क को आपने कैसे फिनिश किया?
0: मैं बता दूं, क्योंकि मैं एक कलात्मक अभिरुचि का बच्चा रहा सर, तो मैं कभी एकेडमिक साइड में फर्स्ट डिविजन नहीं आया, हमेशा मैं सेकंड पास हुआ। मुझे एक ये बराबर पीड़ा होती थी कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आता हूं। तब मैंने संकल्प किया कि भले ही मैं पढ़ने में फर्स्ट नहीं आया, पर मैं पढ़ाने में फर्स्ट आऊंगा। इसलिए मैंने 80 में राज्य स्तरीय शिक्षण प्रतियोगिता में ज्योग्राफी में मैंने गोल्ड मेडल लिया सर। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बहुत बड़ा अवार्ड होता है, तो वो मैंने अपनी कमी को वहां पूरा किया कि मैं पढ़ाने में फर्स्ट आया। अगर पढ़ने में फर्स्ट नहीं आया तो मेरे कितने विद्यार्थी सर, आज कोई IPS है, कोई कलेक्टर है, मुझे ये कहने नहीं, कोई सामान्य साइकिल की दुकान पे भी बैठा है ना सर, तो वो अपने कर्म को उसी तरह कर रहा है जो गीता कहती है कि कर्म को ईमानदारी से करना ही योग है। कुशलता से आप किसी काम को कर लेते हैं, आप योगी हैं। तो मेरा ये वैक्यूम और पीड़ा भी दूर हुई। और ये शिक्षण प्रतियोगिता में मैं आपको और बता दूं कि मैं जब क्लास में पढ़ता था तो बच्चों को यह कहता था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आप और हम मिले, हो सकता है मैं आपको नहीं पहचानूं, पर मेरे बच्चों तुम आकर के मुझे टच करना, मैं निश्चित रूप से धन्य होऊंगा कि आज मेरे पढ़े हुए बच्चे, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे न जाने कहां कहां देश और विदेश में अपना नाम कर, आज वर्ल्ड में हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में जॉब कर रहे हैं। अगर वे मधुबन रेडियो के माध्यम से मुझे सुनेंगे ना सर, उनका फ्लैशबैक लौट आएगा, शायद मैं उनका बचपन लौटा दूं और मैं भी अब ये महसूस करूंगा कि मैं उन बच्चों के साथ एक बार फिर से अपनी युवावस्था में आ गया, ऐसी अनुभूति।
1: जी जी जी, एकदम सही कहा आपने कि कई लोग रेडियो मधुबन सुन रहे हैं, जो हमारे आबू निवासी हैं वो तो रेडियो मधुबन रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन विश्व भर में लोग जो हैं रेडियो मधुबन को इंटरनेट के माध्यम से भी सुनते हैं और सुन सकते हैं। तो साथियों, आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि भाई कहीं पर भी रहो, आप इंटरनेट के द्वारा रेडियो मधुबन से जरूर जुड़ो, क्योंकि रेडियो मधुबन सुनते रहेंगे तो आप मुस्कुराते रहेंगे। ये हमारा दावा नहीं, ये हमारा वादा है, और वादा जो है दावे से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि दावे में कहीं ना कहीं अभिमान दिख सकता है, लेकिन वादे में अपनापन लगता है, वादे में वो आत्मीयता है कि आप वादा हर किसी से नहीं करते, आप वादा उनसे ही करते हैं जिनके लिए आप केयर करते हैं। तो आप सभी से हमारा ये वादा है कि सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। बातचीत कर रहे हैं साथियों हम राष्ट्रकवि श्री राजेंद्र गोपाल व्यास जी से। राजेंद्र जी, जब आप शिक्षण में थे, आपने देखा होगा कि समाज कैसा बदला है। जब आपने शिक्षा ग्रहण की उस समय और जब आपने शिक्षा देना शुरू किया उस समय, समाज में आपने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। और आज का जो समाज है, आज की जो शिक्षण प्रणाली है, वो तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है।
0: सही है सर।

0: ऐसे समय में कौन सी वो बातें हैं जो बदली नहीं है?
1: बहुत अच्छी बात आपको कहूं, मुझे जो ये नेशनल अवार्ड मिला भाई जी, ये मानव संसाधन मंत्रालय के संस्कृति विभाग का प्रोजेक्ट था। ये बहुत पहले, मतलब मेरे ख्याल से 71 में ये प्रोजेक्ट आया था। उसका नाम था विद्यालयों में भारतीय संस्कृति प्रसार प्रायोजना। ये इंडिया के 44 शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ, उसमें राजस्थान से हम दो जने थे सर, एक बीकानेर से थे और एक मैं था। यहां मैंने 12 वर्ष तक एक प्रोजेक्ट लिया, 30 महीने की ट्रेनिंग उदयपुर में हुई, फिर दिल्ली में मुझे वो एक रिफ्रेशर्स कोर्स के लिए चयन हुआ, और इंडिया में 5 किट मिले थे हमें, उसमें राजस्थान के बच्चे को किट मिला सर, लाखों रुपए की स्कल्पचर का, उस समय टेप रिकॉर्डर पहली बार देखा, स्लाइड्स, प्रोजेक्टर, इतना बड़ा एसेट्स लेकर के मैं दिल्ली से आया सर, मैं गांव का आदमी कभी। और आपको मैं इस अवार्ड की खूबी और बता दूं कि भारत सरकार ने मुझे फर्स्ट क्लास के टिकट का वो मुझे लेटर मिला, लेकिन मैं थर्ड क्लास डिब्बे में ही गया भाई जी। आप आश्चर्य, आप पूछ रहे हैं कि आपकी परवरिश की वैल्यू बेस्ड क्या। मैंने जाके जब अपना टिकट वहां क्लेरिकल स्टाफ को दिया तो उन्होंने कहा भाई जी आपको तो फर्स्ट क्लास का मिला। मैंने कहा मुझे 2 दिन के लिए लौटने और आने का, उसके बाद तो मैं थर्ड क्लास में ही यात्रा करूंगा, तो भला मैं अपना संस्कार क्यों बदलूं। तो उन्होंने एक ह्यूमर किया कि आप अपना टिकट किसी का भी फर्स्ट क्लास का ले आओ, मैं आपको उसका फेयर दे दूंगा। मैंने कहा अगर ये मुझे करना होता तो शायद आज मैं इस अवार्ड के लिए यहां उपस्थित नहीं होता। और मैंने बड़ी बारीकी से उन्हें कहा आप हमारे संस्कार नहीं बिगाड़े, आप ऐसी राय हमें नहीं सिखाए कि हम इसको बदल देने से मुझे 2 पैसा ज्यादा मिल जाएगा। मैंने सर आज भी केनरा बैंक में और रेलवे में मुझे फर्स्ट क्लास के कंसेशन का वो अवार्ड का मुझे लाभ मिलता, आज तक मैंने नहीं लिया। मुझे सबसे पहले टेलीफोन ऑफर हुआ, मैंने वो भी नहीं लिया, न ऑन और ब्लैक में मैंने उसको बेचा सर। ये मेरी शुरू से ही धारणा रही। और जो बजट मुझे मिला, एक लाइन बताऊं, बजट मिला सर मुझे 7,000 रूपये नए शिविर लगाने का कि गांव में जाके शिविर लगाओ। 7,000 रूपये में से मैंने 5,000 में 4 दिन का शिविर 40 टीचर्स के साथ किया, कुछ डोनेशन लिया। और मैं पहला व्यक्ति गर्व से कह रहा हूं, मैं मोदी जी अगर सुने इस राष्ट्र में, कि उसमें से 2,000 रूपये भारत सरकार को, ये पहला शख्स है वर्ल्ड में जिसने वापस लौटाया सर, कि मैंने कहीं इस सफेद शर्ट पर डॉट नहीं लगने दिया। ये मेरे माता और पिता और मेरे भाई और भाभी और मेरी मौसी की देन है, मेरे गुरुओं की देन है। और निवेदन कर दूं, भीलवाड़ा में एक देवरिया बालाजी नाम का स्थान है सर, वहां एक हमारी माँ है जिसके साथ मैं 40 साल से रह रहा हूँ, माँ अनसुईया नाम है, जो अन्न और जल नहीं लेती, केवल पवन आहारी है। और इतनी एनर्जेटिक है वो कि 20 आदमियों का भोजन प्रसाद बना दे, अपने गुरु का फलार भी वही बनाती है। उसके साथ मेरी परवरिश हुई है। और एक थी मेरी घर में वीडो मौसी, जो मेरी पहली गुरु है सर, मुझे अम्मा सरस्वती लगती है। 13 साल की उम्र में वो विधवा हो गई, उसने अपना घर गांव छोड़ के मेरी मदर के पास आ गई, और हम दोनों भाइयों और एक बहन की परवरिश उस माँ ने करी, जिसका प्रोडक्ट आपके सामने। उसका नाम था दुर्गा भाई। मेरी माँ का नाम कमला भाई, दोनों सगी बहने। और आप आश्चर्य करेंगे, 13 साल की उम्र में वो 70 साल में मरी। और जिस दिन उसकी डेथ हुई, मुझे मेडल लेने जाना था सर, मैंने मेडल को ठुकराया। मेरे पिता ने कहा नहीं, इसका कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। मैंने, मेरी मौसी ने कहा नहीं तू जा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा सर। मैं उसी दिन रुका, उसी दिन डेथ हुई, लेकिन डेथ से पहले उसने कहा ये मेडल तेरे धरा हुआ, तू लेते आएगा। और दूसरे साल ये अवार्ड में लेके आया। ये है मेरे बच्चों का, मेरे शिक्षण का प्रभाव। तो आज उन बच्चों को तो मैं सर, मैंने कभी सर्कमस्टांसेस खराब है ये मैंने नहीं पढ़ा। जॉन डीवी एक डायलॉग कहते हैं, स्कूल इज एन ए स्पेशल एनवायरमेंट वेयर सर्टेन क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज आर प्रोवाइडेड टू द सिक्योरिंग चाइल्ड। मैं सिक्योरिंग चाइल्ड रहा सर, मैंने क्लासरूम क्लाइमेट बनाई। मैं ज्योग्राफी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं बाहर की क्लाइमेट नहीं बना सकता, लेकिन मैं क्लास में क्लाइमेट बना करके मौसम और जलवायु बदलने की ताकत रखता हूं, क्योंकि मैं मास्टर हूं। मुझे गुरुओं ने तैयार किया, इसलिए बच्चे मुझ पर फिदा हैं सर, और मैं बच्चों पर फिदा हूं।
0: जो चीज मैं कहना चाह रहा था कि आपने संस्कारों की बात कही, और इसमें आपने अपने अनसुईया माता जी को और दुर्गा जी को और कमला जी को भी याद किया, तो जो व्यक्ति इतने अच्छे संस्कारों से घिरा हुआ है या कहीं संस्कारी लोगों से घिरा हुआ

0: उसका कहीं ना कहीं फिक्स होता है सफलता, वो सफल होगा ही क्योंकि आशीर्वाद है इन लोगों का। लेकिन ये जो आपने बात कही कि मैं मास्टर हूँ, हम शिक्षक को हिंदी में या ठेठ हिंदी में मास्टर जी ऐसे भी कहते थे, तो मास्टर शब्द का मतलब ही होता है जो जो परिपक्व है, जिसकी मास्टरी है किसी चीज में। तो जैसे एक व्यक्ति होता है जिसके अंदर वो मास्टरी होती है, वो खूबी होती है कि वो परिस्थितियों पे बात को नहीं टालता, वो अपने क्या करना चाहिए, व्हाट इज दैट दैट आई नीड टू डू, उस पे फोकस करता है, मुझे क्या करना है इस पे फोकस करता है, ना कि भाई बाहर की परिस्थिति ठीक नहीं है इसलिए मैं कुछ ना करूं। तो ये जो आपने संस्कार पक्का किया और पकड़ के रखा और जो अपने स्टूडेंट्स में दिया, आई थिंक दैट इज वेरी कमेंडेबल,
1: बहुत अच्छा।
0: आज की जो जनरेशन जो शिक्षा लेती है, आज जो आप देखते हैं शिक्षा प्रणाली, जहां पर कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा कि भाषा पे लोग शायद इतना गौर नहीं करते। जिस तरीके से एक समय था जब भाषा मुख से गलत निकल जाए तो लोग सॉरी बोलते थे, जो जनजीवन था जिसपे मीडिया का प्रभाव था, वहां आप देखते थे बहुत परिष्कृत, बहुत एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चाहे आप सिनेमा देखिए, चाहे आप टेलीविजन देखिए, या आप रेडियो के दूसरे भी जो चैनल्स हैं सुनिए, या सोशल मीडिया, हर जगह पे आप देखेंगे भाषा का कहीं ना कहीं स्वरूप थोड़ा सा बदला है। क्या आप उस स्वरूप को विकृत मानते हैं, या वो स्वरूप को आप क्या, आपकी नजर में वो कैसा समय है, क्या है अभी वो?
1: देखिए, हमारी हिंदी भाषा को अगर हल्का सा किसी से हल्का सा नुकसान हुआ तो इंग्लिश से हुआ। हम लोग, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि जब मैं इन्विजिलेशन करता था ना सर, तो लास्ट में जो 5 मिनट्स रहते थे उसको अगर मैं हिंदी में बोलूं 5 मिनट और शेष रहे तो बच्चे अलर्ट नहीं होते, वो लिखते ही जाते। लेकिन उसी को मैं इंग्लिश में बोलता था, प्लीज लिसन, प्लीज 5 मिनट्स मोर, चेक योर आंसर्स एंड स्टिच योर कॉपीज, तो वो समझते कि ये कोई बहुत बड़े है और इमीडिएट वो अपना कॉपी को स्टिच करते। अगर मैं कहूं अब कृपया आप अपनी कॉपियां, तो वो लिखना चालू। इंग्लिश ने जरूर हिंदी भाषा पर, इसलिए एक बढ़िया बात मैं कहता हूं कि भाषा मनुष्य के परिष्कार का स्वरूप है, है? मैं कोई चीज, और शादी रेडियो मधुबन तो सामुदायिक सर्विसेज का है, यहाँ तो बड़ी बड़ी कठिन भाषा यहाँ चलती नहीं सर, क्योंकि दूर अंचल के लोग भी हमें सुनते हैं रेडियो मधुबन के, और ब्यूरोक्रेट्स और कॉरपोरेट की दुनिया के लोग भी सुनते हैं। तो आपके प्रश्न का आंसर मैं ये दूंगा कि मुझे भाषा को लेकर कभी तनाव नहीं हुआ, इसलिए बहुत बार मेरा एक डायलॉग है कि इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते, पर इन बीजों को बचा सकते हैं जिसे नए उद्यान लगाए जाए। ये मेरे शब्द ही तो बीज हैं, और ये नई पीढ़ी के बच्चों को मैं प्यार करता हूं कि हम लोग तो रिटायर हो जाएंगे, तो आई एम रनिंग इन 73। 2 साल पहले के इंटरव्यू पूछा व्यासी आपकी एज क्या है, तो 71 को हिंदी में इगोतर कहते हैं और बेहतर को बेहतर कहते। तो मैंने कहा जब से मैं मेरे ईगो से तरा, जब से मैं ईगो से तेरा, मेरी जिंदगी बेहतर
0: हो गया
1: और नाउ आई एम रनिंग इन 73। तो जो भी व्यक्ति अपने ईगो से तर जाएगा, मैं सोचता हूँ स्वामी वो बेहतर हो जाए।
0: राजेंद्र जी, आपने जो ये बात कही कि आपके पास बीज है और बीजों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, भले आप उद्यान का संरक्षण नहीं कर सकते लेकिन बीजों को तो बचा सकते, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं जरूर करूँ, भले मैं सुनता हूँ रेडियो, या मैं सुनता हूँ या देखता हूँ टेलीविजन, या मैं सोशल मीडिया पे हूँ। साथियों, ये समझने की बात है कि मैं किस चीज को लाइक कर रहा हूँ, मैं किस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, क्या वो मेरे भाषा पे एक असर छोड़ता है, और अगर असर छोड़ता है तो कैसा असर छोड़ता है, क्या वो पॉजिटिव असर है, क्या वो नेगेटिव असर है, क्या उस चीज को सुनते हुए मेरी भाषा उत्कृष्ट हो रही है या मेरी भाषा का प्राण दुर्बल होता जा रहा है। ये चयन करना मेरे और आपके हाथ में है, क्योंकि आज सबके पास फोन है, फोन के जरिए आप बहुत कुछ देखते हैं, चाहे यूट्यूब है चाहे सोशल मीडिया है, क्या आप देख रहे हैं सुन रहे हैं वो आपके वोकैबुलरी को, आपके शब्दकोश को तैयार करता है। तो इसलिए जरा गौर कीजिएगा
1: जी,
0: बस यूं ही मत देखते रहिएगा।
1: अब आप इस सारे प्रश्न का कंटेंट का आप मेरा आंसर देखिए, इसमें मेरी भाषा और वातावरण का बैलेंस देखिएगा, आज क्या है और मेरी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है।

0: से ये कविवर।
1: देखिए ऐसे एटमॉस्फेयर में भी हम कवि लोग क्या कर रहे हैं।
0: फिर भी नहीं निराश ये कविवर, चलते फिरते तीर्थ है।
1: मेरी वैल्यूज देखिएगा, ये चलते हुए तीर्थ हैं। कवि होना साधारण बात नहीं है। नीरज जी ने भी कहा है कि मनुष्य होना ही गौरव की बात है, तो कवि होना, और मैं तो उससे अभी आगे कहूंगा, अब तो हम कवि नहीं ऋषि हो गए हैं।

0: हम करते, मेरा तो हर श्रोता मुझे शिव लगता है सर, मेरी कविता की इस गंगोत्री में मैं तो उनका अभिषेक करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शिवालय में नहीं गया हूँ, जब मैं भक्ति मार्ग में था तो मैं मंदिरों में पूजा करता था। आरा और प्योरिटी, ये जो जननी है, सुख और शांति जो बेटे और बेटी है, मैं कोशिश करता हूँ सर कि चैरिटी बिकम सोम। अगर मैं सबसे पहले मेरे में इस ज्ञान दूसरों के लिए होता भी नहीं भाई जी, ज्ञान स्वयं के लिए होता है। तो इसमें आंसर दिया मैंने कि मेरी भाषा भी इसमें शब्द देखे, इसमें मेरा स्वर देखेगा। हम निराश नहीं हैं क्योंकि हम सतयुग के लिए नए स्वर्णिम भारत को बनाने में आज अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। भारत पहले भी विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, रहेगा
1: जी। आपने कम शब्दों में लेकिन बहुत बड़ी बड़ी आशाएं, अपेक्षाएं और उत्तरों को अपने समेट लिया, जो कि शायद साधारण व्यक्ति को समझाने में घंटा लग जाए। एक चीज मुझे यहाँ पर आपको पूछना था, शायद ये सही मौका है। जब हम टीवी देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं, स्पेशली मैं हमारे सभी साथियों का ध्यान न्यूज चैनलों पर ले जाना चाहूंगा, वहां मैंने देखा है भाषा का बहुत बड़ा एक पतन होते हुए देखा है, चाहे वो होस्ट हो, एंकर हो, या वो संवाददाता हो, या फिर वो पैनल पे बुलाए हुए अतिथि हो, वो किस प्रकार से एक दूसरे पे शब्दों का आरोप या एक दूसरे के प्रति बहुत ही कम वजनी शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं। कई बार ऐसे अस्वाभाविक रीति वो बात कर जाते हैं कि लगता है कि क्या ये हमारे सही नेता हैं, या क्या ये हमारे देश के वो प्रतिनिधि है जिनको हमने चुना है। कई बार ऐसा डाउट आता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो आप ऐसे में क्या आप फॉलो करते हैं डिबेट शोज को, क्या आप इनको देखते हैं, या देखते हुए कैसे खुद को बचाते हैं? क्या टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे साथियों को जो सुन रहे हैं?
0: पहली बात तो मैं इस तरह की डिबेट, और आप आश्चर्य करेंगे कि मैं लाफ्टर में मेरे बहुत इन्विटेशन आए पर मैं सर नहीं गया, क्योंकि हंसी, देखिए पहले क्या होता था, आदमी सर इतना आनंदित होता था कि उसको रुलाने के लिए हमें कविताएं बनानी पड़ती थी, और आज आदमी इतना दुखी है कि उसको हंसाने के लिए, मतलब उसको हंसाने के लिए, और यहां तक कि मैं तो कवियों से भी शिष्ट निवेदन करूंगा कि देश के नामी कवि अपनी अर्धांगिनी पर, युगल पर ऐसी ऐसी कविताएं ला रहे हैं सर जो शक्ति के लिए शोभनीय नहीं। मैं तो निवेदन करूंगा कि क्या आपके मनोरंजन के लिए मेरे देश की अन्नपूर्णाएं, जिसको हमने वंदे मातरम कहा है, जो सात पीढ़ी आपकी और सात पीढ़ी उस परिवार का अन्नपूर्णा पालन पोषण करती है, उस पर हम फोहड़ हास्य लेकर के आपको हंसा करके भाषा और देश और संस्कार को कहां ले जाएंगे। मैंने बहुत शिष्टता से ये इशारे में बात कर दी, क्योंकि मैं हास्य मेरे जीवन, मेरी एक लाइन है, आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, हंसी की कविता हो पर कविता की हंसी ना। ये पंक्तियां सर देश में बहुत वजनदार जा रही है। ये जीवन शैली, हमारी प्रोफेशन, हमारा दाम्पत्य जीवन, ये भी तो एक कविता है। हंसी की कविता हो पर कविता की हंसी ना हो, मतलब मेरी नाव पानी में रहे यहां तक तो ठीक है, पर मेरी नाव में पानी नहीं आना चाहिए। आज तक आपने कोई फूल ऐसा

0: है क्या जिसमें से कांटा निकला हो? कांटों में फूल निकल सकता लेकिन आज तक किसी कांटे में। और फिर हम जैसे कवि तो एक संस्कार युक्त है, सर मक्खन में बाल भी होगा तो जल्दी नजर आता है। ये मुंगेर आश्रम के स्वामी निरंजनानंद जी ने मुंगेर रिक्या मुंगेर का नाम वर्ल्ड का पहला योगा सेंटर है या आश्रम है, जिनके वियना में डॉक्टर हुआ करते थे शिवानंद जी, जिनका ऋषिकेश में आज वो सत्यानंद जी। फिर निरंजनानंद जी ने मुझे भीलवाड़े में सुन के एक बात पूछी कि व्यास तुम इतने प्यारे गीतकार हो, तुम्हारा कोई ग्रंथ छपा है क्या? मैंने कहा सर इसमें व्याकरण है, मैं अभी छिपा हुआ हूँ, मैं अभी छिपा हुआ हूँ, आप चाहे तो मुझे छपा करके उद्गार। तब ये मेरा ग्रंथ जो मेरी कविता है ये 15 अगस्त 2003 में ये ग्रंथ क्राउन प्रेस कलकत्ता से छपा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ 400 रुपए के आप बुके बांटते हो जो 3 मिनट बाद मर जाएंगे, इससे अच्छा एक बुक बांटो मेरे देश के श्रोताओं, जिंदगी भर उस परिवार में सुगंध बनी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बुके नहीं बांटे जाने चाहिए, पर बुक बांटी जानी चाहिए।
1: तो आप तो शब्दों के जादूगर, आपने शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी बहुत कम शब्दों में, और साथियों आपने भी समझ लिया होगा क्योंकि आप हमारे बहुत प्यारे श्रोता हैं जिन्होंने यशस्वी भारत को और रेडियो मधुबन के और भी अनेक बहुत सुंदर मूल्यनिष्ठ कार्यक्रमों को सुनते हुए अपनी रुचि को बहुत ही बेहतरीन बनाया है। आपने चूज किया है, ये आपका निर्णय रहा है कि मैं ऐसे मूल्य युक्त कार्यक्रमों से जुड़ूंगा या जुड़ूंगी। और रही बात हमारे सामने जो पेश किया जा रहा है, चाहे कई बार हम कहें कि सत्य है इसलिए कठोर है, या कई बार हम ऐसी बातें भी सुनते हैं कि भाई सच है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है सुनने में, बट ये सच नहीं है।
0: नहीं,
1: सच का जो नेचर है वो सशक्त करने वाला होता है। तो इसलिए सत्य के बारे में राजेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सत्य को हमेशा ऐसे कड़वे रूप में पेश करना पड़ेगा या इतने क्या है सत्य?
0: सर इसको मैं, हमारे यहाँ क्या होता है भाई जी, किसी सिद्धांत को समझाने के लिए इलस्ट्रेशन देना पड़ता है। अगर आप सिद्धांत समझा रहे हैं तो आपको दृष्टांत देना पड़ेगा। इसलिए मैं बताता हूँ सत्य को कैसे देना चाहिए। इसका मेरा एक डायलॉग है कि अमृत धारा अगर बतासे में रख के दी जाएगी तो सत्य भी चला जाएगा और वो नाराज भी नहीं होगा। मतलब आप अमृत धारा को सीधा नहीं पी सकते, अगर मिठास में बताशे में दे दे तो जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए मेरे एक छोटे से, मैं कविता के रूप में प्रस्तुत नहीं हो रहा हूँ, यहाँ एक बातचीत है, लेकिन मेरी एक पंक्तियां सुनिएगा कि बताशे को टॉफी समझते थे वहां से उठे। मैंने 10वीं क्लास में टॉफी खाई सर गांव में, गुड़ खाते थे, गुड़ के बाद बताशा आया तो मुझे लगा कि हमारा प्रमोशन हुआ। टॉफियां तो हुआ ही नहीं करते थे सर, पर जिंदगी में मिठास बहुत था। बतासे को टॉफी समझते थे वहां से उठे हैं, आज संपन्नता में भी लोग रूठे हैं। एक कपड़े की दड़ी से खेलते थे हम, दड़ी कहते हैं सर कपड़े की गेंद बनाई जाती, मेवाड़ का शब्द है। एक कपड़े की दड़ी से खेलते थे हम और नदी से बहते थे गांव में, छोटे मोटे झगड़े बड़े प्यार से सहते थे, अब कुंडियां बन गए हैं, मुंडिया मोबाइल पे झुकी है, लगता है जिंदगी कहीं रुकी, लगता है जिंदगी कहीं रुकी है। ये पूरी
1: साथियों क्या आपकी मुंडिया भी झुकी हुई है मोबाइल से? ये हमारे राजेंद्र जी का बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मैं खुद को कई बार पाता हूँ कि मैं सच में मोबाइल में काफी व्यस्त हूँ। हालांकि कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे हम कहें कि भाई मेरा कारोबार इससे जुड़ा हुआ है या इससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है, अभी क्या करे इसमें करना पड़ेगा, लेकिन क्या करे वाली बात नहीं है, बात ये है कितना करे। एक लिमिट होना बहुत जरूरी है, एक निर्देशन, एक लगाम होनी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो राजेंद्र जी ने बात कही उसको बहुत गौर से सोचिएगा साथियों कि क्या जीवन की संपन्नता, क्या हमारे मन का सुख, हमारे गैजेट्स या हमारे जो एंटरटेनमेंट के साधन है उनसे परिभाषित होगा, क्या मेरे एंटरटेनमेंट का परिभाषा मैं निश्चित करूंगा कि ये मेरा एंटरटेनमेंट है, मुझे इसमें खुशी मिलती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल आज हम यशस्वी भारत के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। सोचिएगा जरूर कौन से कंटेंट को आपको लेना है, कितना लेना है, कब तक लेना है, क्योंकि जो भी चीज मैं सुन रहा हूँ देख रहा हूँ वो मेरा चरित्र का निर्माण करने लगती है, मुझे पता भी नहीं चलता कब वो मेरा बन जाता है और कब मैं उस कलर में रंग जाता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है राजेंद्र जी, जैसे आज मैं आपके इस चर्चा से कई बातें लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन कई बातें ऐसे भी मेरे साथ जा रही हैं जिनका मुझे ध्यान नहीं है, जो मेरे अवचेतन मन ने पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं निकल आएगा। तो ऐसे कई बार होता है जब हम टेलीविजन देखते हैं या रेडियो इंटरव्यू सुनते हैं या कोई भी हम ऐसा कार्यक्रम देख रहे हैं जहाँ झगड़ा है, जहाँ पर विवाद है, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति नफरत है या राजनीतिक हीनता कहेंगे, जिसकी वजह से हमें भी नहीं पता चलता कब हम हमारे मन में, हमारे अवचेतन मन में ऐसी बातें लेकर के चले जाते हैं जो कि ना केवल हमारे विचारधारा को दूषित करती है लेकिन हमारे जीवन को भी प्रदूषित कर देती है। तो इसीलिए साथियों, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। जाते जाते राजेंद्र जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि आप खुद को भारत के उस चौपाल, चूल्हे और चौकट से जोड़ते हैं जो कि भीलवाड़ा से आता है, हमीरगढ़ से आता है। राजस्थान सदा से ही वो धरनी मानी गई है जहाँ पर लोगों में वीर रस की प्रबलता रही है, लोग देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम राजस्थान की मिट्टी से उसको अक्सर सहज रीति जोड़ लेते हैं। पहले तो आपसे कुछ सुनना चाहेंगे हम इस विषय में, और दूसरा कि भारत आपके हिसाब से यशस्वी क्यों है, क्या है कारण भारत को हम यशस्वी भारत कहें?
0: दोनों प्रश्नों को मैं थोड़ा सा प्रोज में कह के पोइट्री पे आ जाऊंगा, क्योंकि जो पोइट्री से कहा जा सकता है वो तो, हालांकि गद्य भी एक पोइट्री, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ सर, पोइट्री लिखना सरल है, प्रोज लिखना बहुत मुश्किल है। मैं निवेदन करो, मेरी किताब है मैं मुझे मिल गया, उसमें एक हाड़ी रानी करके कविता राजस्थान की, और सब जानते उस गाथा को कि चुंडावत शादी करके आता और दूसरे दिन उसको युद्ध में जाना पड़ता है, तो चला गया तो वापस आया कि कोई निशानी दो। और यहाँ देखिएगा इस कल्चर का, इस सरजमी की मिट्टी का, ऐसा लुम्बर है उदयपुर के पास में, हाड़ी ने अपना मस्तक काट के दे दिया कि अगर मेरा इसमें स्मरण रहा तो ये युद्ध हार जाएगा, और वो अपने गले में उस मस्तक को बांध के युद्ध जीत के आता है। ये वो देश है सर, इसकी दो लाइन में सुनाता हूँ। इतिहास बोलते पन्नों पे।

का हरदी मंदिर कक्ष आज वो कानन था, हाड़ी जिस पर आज सुशोभित वो पलंग वृंदावन। ये वैल्यू है साहब इस देश और राजस्थान की। वृंदावनों में होटलों में क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं कहना, लेकिन राजस्थान की सरजमी पर हाड़ी रानी अपने उस मधु यामिनी के दिन उस पलंग पर वृंदावन की तरह प्योर बन के रह गई, और इतिहास में आज भी वो हमारी प्रेरणा स्रोत है। इस तरह के गीत भी मैंने लिखे हैं। गीत बहुत लंबा है पर चूंकि एक बानगी के तौर पर ही, और एक यहाँ मेरे को संस्मरण आ रहा, हमीरगढ़ में मेरी परवरिश, मेरे भाई साहब टीचर थे, मुझे इतना अच्छा रखा भाई जी। मेरी बहन, उसका नाम प्रेम देवी, वो वहीं रहती थी जब तक जॉब नहीं हुआ। तो जब मेरे भाई साहब मुझे, मैं कॉलेज में जाता तो मुझे कहते कितना पैसा चाहिए पॉकेट अलाउंस, तो मैं कहता 20 रुपए। तब मेरी भाभी जिसका नाम नर्मदा देवी है सर, वो कहती थी मेरे देवर को 40 रुपए दो। मेरी बहन कहती 10 रुपए मेरी तरफ से। जिन्होंने ऐसी शख्सियत को पाला कि कट लगाती है आज तो कोई भाभी अपने देवर को पॉकेट अलाउंस तो क्या सर, अगर वो वहां पल रहा तो फूल का भी वो पूरा नहीं खाता, भूखा रहता है हमारा देवर। तो मैं ऐसी नर्मदा देवी भाभी और बहन प्रेमी

0: का देवी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे पैदा किया।
1: साथियों, जो कहानी आपने सुनी, जो कुछ संस्मरण आपने सुने राजेंद्र जी के मुख से, वो आपको भी अपने उन प्रियजनों की याद दिलाते होंगे जो कि हमेशा आपकी भलाई के लिए, आपके सुख के लिए बेताबी से, बेचैनी से कार्यरत रहते थे। ये कोई माँ थी, कोई बहन थी, कोई भाभी थी, कोई मौसी थी, कोई नानी थी, कोई दादी थी, कोई मामी थी, लेकिन इन माताओं ने, जैसे कि इन्होंने पहले भी कहा कि ये वंदे मातरम की धरनी है और इसलिए भारत माता जो है या भारत भूमि जो है वो यशस्वी है, क्योंकि यहाँ माताओं का वह सम्मान, माताओं के प्रति वो प्रेम, वो निष्ठा, वो अगाध सम्मान जो है वो भारत को यशस्वी बनाता है। राजेंद्र गोपाल व्यास जी, आपसे बात करते करते समय का पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप बातों के बीच में धीरे धीरे वो बताशे लाते हैं अपने काव्य के, अपने क्षणिकाओं के और अपने संस्मरण के, लेकिन घड़ी जो है वो क्षणिका रखी हुई है और उसने कहा कि नहीं, अभी इसको फिनिश करना है। मे भी हम फिर से आपसे दोबारा मिलेंगे,
0: मुझे और दीजिएगा आधा मिनट मुझे इस बनाने में। एक अंतिम बात करूं, मेरे एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु है स्वर्गीय बंसी लाल जी, सिंहपुर वाले कहते हैं बंसी लाल जी साहब, जिनके यहाँ मैंने निर्गुण वाणी को 14 साल पढ़ा। मेरी परवरिश देवरिया बालाजी की माँ के पास भक्ति के रूप में रही, ज्ञान के रूप में बंसी लाल जी समदानी के यहाँ। मैं अमृत वेला उनकी वाणी का कभी नहीं छोड़ता था। जिस दिन मेरी माँ की डेथ शाम को ही, मैं सुबह उनके क्लास में उपस्थित था साहब। बड़े भाई साहब के घर मेरी माँ की देह पड़ी हुई थी और मैं वाणी के सत्संग में था। उस दिन मेरे गुरु ने कहा, आज से आपकी शिक्षा पूर्ण हुई, आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये मुझ में कोई उतर के बोल जाता है। और एक अंतिम दो लाइन कहके कहूंगा, एक कदम तुम चलो तो 10 कदम मैं आऊंगा, एक कदम तुम चलो तो 10 कदम मैं आऊंगा, एक किरण तुम मुझे तो सूरज लौटाऊंगा, एक कदम तुम चलो। सर, विज्ञान के पास एक्सरे है, एक रे, एक किरण पर उसने चमत्कार लाइट ने कर रखा, तो मेरे पास तो साइलेंस का सूरज है सर, मैं तो आदित्य हूँ, इतना प्रकाशित हो रहा हूँ। ये आपके दिल, आपके मोहब्बत के क्षण, आपने मुझे सुना,
1: बहुत बढ़िया। अभी जो आपने एक किरण, ये जो एक किरण की आपने बात कही, अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको एक एक शब्द में उनका जवाब देना है, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: अपने को मिटा देना दूसरे के लिए, दूसरे के भलाई के लिए स्वयं को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देना सेवा।
1: शक्ति क्या है?
0: शक्ति होती है सर, शक्ति एक वरदान है, अगर आप उसकी तैयारी करेंगे तो आपको ब्लेस। शक्ति एफर्ट्स नहीं है सर, एफर्ट्स नहीं, आप पात्रता बढ़ाइए आपको शक्ति मिल जाएगी। शक्ति तो गिफ्ट,
1: शक्ति वरदान,
0: शक्ति गिफ्ट है सर।
1: ठीक, तो तीसरा सवाल, भाषा क्या है?
0: भाषा है मूक भावों को, हृदय की लैंग्वेज को मन के पथियारे से गुजारते हुए जिह्वा के माध्यम से बाहर लाते, यानी शून्य के सागर से शब्द का सेतु बनेगा तो जीव आनंद की यात्रा करेगा, बस उसकी।
1: तो आपने मेरे चौथे सवाल का जवाब दे दिया
0: जी,
1: आपने मेरे चौथे सवाल का जवाब दे दिया, भाषा सागर है, मैं पूछने वाला था शब्द क्या है, तो आपने कह दिया सेतु है,
0: पुल है जिसके जरिए मैं यात्रा करके दूसरे तक।
1: कविता क्या है?
0: कविता करना मरकर जीने की कला है, या यूं कहिए जख्म खाके नमक की खान से गुजर। सर, बिना दर्द के तो कविता होगी नहीं, और यह कविता में सिजेरियन नहीं होता सर, नॉर्मल डिलीवरी होती है। इतने दर्द को हमें सहन करना पड़ता है कि, और यही एक ऐसी विधा सर जो भगवान से गिफ्ट मिलती है। आप म्यूजिक सीख सकते हैं, थिएटर सीख सकते हैं, स्कल्पचर सीख सकते हैं, ड्राइंग सीख सकते हैं, दुनिया की हर कला, स्थापत्य सीख। कविता आज तक सुना क्या आपने कि किसी ने सिखाई हो? गिफ्ट गॉड गिफ्ट,
1: अच्छा
0: ये उतरती सर, और ये जन्मों के संस्कार होते हैं तब हम कविता के क्षेत्र में आते हैं। इसलिए तुलसी, सूर, मीरा, इन्होंने कबीर, इन्होंने कहीं कोई एजुकेशन, लेकिन आज इनकी एक पंक्ति पर PhD होती है, इन्होंने कहीं नहीं सीखा सर, ये विरासत में पीड़ित है और ये शाश्वत है सर। ये कभी आप देखिएगा, एक निवेदन है, साज टूटता है, वादक टूटता है, म्यूजिक कभी नहीं टूटता, पोइट्री कभी इस देश में, इसीलिए गीत गोविंद में आज भी गाया जा रहा है।
1: तो इसका मतलब कविता जो है वो एक कला है

0: एक नैसर्गिक कला है जिसको आप कहीं से सीख नहीं सकते,
1: लेकिन अडॉप्ट कर सकते हैं कि अगर आपका अंतःकरण स्वच्छ है तो कविता सर्व अंदर आ जाती है और मन और जिह्वा के जरिए और बुद्धि के जरिए परिमार्जित होकर आ जाए। हम पहले कागज पे उतारते हैं, कहीं कोई करेक्शन होता है, बाकी सर कविता तो भगवती आह्लादनी शक्ति आ जाती।
0: लास्ट क्वेश्चन, भारत क्या है?
1: भारत है एक आइकॉन है सर, इस धरती पर जैसे एक माला के मणियों में एक से आठ में एक सबसे ऊपर एक गुरु होता है मन का, भारत
0: तो भारत जो है वो देशों के माला में गुरु है,
1: सर्वोच्च है सर, सर्वोच्च है, आर्यावर्ते भरत खंडे, और क्या है ये वो जमीन है जहाँ परमात्मा का अवतरण होता है, तो भारत तो।
0: और जाते जाते हम जानना चाहेंगे राजेंद्र गोपाल व्यास कौन है?
1: सर ये आपने म्यूट लगा दिया मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, पर मैं एक प्रचन्न बौद्ध जरूर हूँ सर, पनडुब्बी की तरह चल रहा हूँ, जिस दिन निकलूंगा जहाजों से आगे निकलूंगा, क्योंकि इस देश का 5000 वर्ष बाद आया हुआ ये रोल मॉडल है, मुझे मेरा पिछला भी पता है, मुझे वर्तमान पता है, और मेरी सीट कहाँ निर्धारित होगी ये, लेकिन ये पेपर अभी आउट करने का नहीं है, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र गोपाल व्यास जी। यशस्वी भारत कार्यक्रम में साथियों आप सुन रहे थे अभी तक राष्ट्र कवि श्री राजेंद्र गोपाल व्यास जी, जिन्होंने अपने जीवन के पिछले संस्मरणों को अपने कुछ कृतियों के द्वारा, अपने कुछ क्षणिकाओं, कुछ लफ्जों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा हमें सजाते हुए सुनाया, इतने अलंकारित रूप से हमें सजाया आज के इस एपिसोड को कि उनका हम जितना भी धन्यवाद करें कम है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि सत्य को बताशे की तरह स्वीट करके, मीठा करके पेश करना या सत्यता में सभ्यता का होना बहुत आवश्यक है,
1: इस चीज को जरूर आने चाहिए।
0: साथियों इस मैसेज को जरूर याद रखिएगा कि आप भले सच बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सभ्यता उसमें से नहीं जानी चाहिए, मिठास उसमें से नहीं कम होना चाहिए। ये आज के हमारे एपिसोड का एक गुड़ मंत्र है जो आप अपने साथ लेके जाएं, और दोबारा वापस आइएगा यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में एक और नए खास मेहमान के साथ। मैं आरजे शांतनु आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।
1: आपका भी।
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: Assertiveness without generating anger. तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाले स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणे रेडियो आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।

0: Canadian Vibes 107.8 FM, World Renowned Spiritual Trust का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच।
1: लास्ट एपिसोड में आप पर्पस की बात कर रहे थे, और पर्पस ऑफ लाइफ तो दुनिया ढूंढती रहती है। व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई एम आई हियर, क्या है दुनिया, क्यों बनाई भगवान ने ये। और हम जब एक चीज रॉन्ग जगह ढूंढेंगे तो कितना मतलब गलत कर रहे थे। आज मुझे ये देख के और सुन के एकदम मैं मतलब आंखें खुल गई कि मैं ढूंढ के आ रहा हूँ, और पर्पस को इट्स जस्ट लाइक दैट सिली जोक कि मेरी नीडल खो गई।
2: हाँ।
1: तो आप कहाँ ढूंढ रहे हो? यहाँ। तो वहाँ लाइट नहीं है इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ।
2: हाँ।
1: तो आई थॉट इट्स सो सिली, बट एक्चुअली पर्पस ऑफ लाइफ इज विद इन मी एंड द गिफ्ट ऑल्सो। और गिफ्ट में आज तक वही समझता था, देखो इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इसको प्रेसिडेंट बना दिया, इसको फलाने नंबर वन एक्टर बना दिया, इसको नंबर वन स्पोर्ट्समैन बना दिया। मतलब आई यूज टू काउंट दोज एज गिफ्ट्स, बट जब आपने ये बोला तब से एकदम माय एटीट्यूड, माय थिंकिंग एंड समथिंग लाइटर आई एम फीलिंग।
2: क्योंकि व्हाई आर वी फीलिंग लाइटर? बिकॉज नाउ वी अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज नॉट अबाउट लुकिंग, फाइंडिंग एंड टेकिंग। क्योंकि नहीं तो एक खोज ही है ना सारा दिन, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अच्छा, चाहिए चाहिए भी ठीक था, लेकिन फिर मिलने के बाद उसकी चिंता भी है कॉन्स्टेंटली, फिर फियर भी है कि खो ना जाए चीज।
1: ये तो नहीं खोती ना।
2: हाँ, ये तो बढ़ती है ना। ये तो बढ़ती है जितना देंगे, लेकिन अगर देंगे नहीं तो घटती है।
1: अच्छा,
2: देंगे नहीं तो घटती है। सम्मान चाहिए, सम्मान देंगे नहीं तो घटता है, लेकिन सम्मान देते जाएंगे, द एनर्जी विल फ्लो थ्रू मी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बेनिफिट। एंड जितना हम इसको करते जाएंगे, हमने ये देखा कि ये पर्पस हमारा वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की शक्ति को कॉन्सेंट्रेट करके कागज को जला सकता था, मतलब इतना प्रभाव था उसके
1: अंदर। आप कह रहे थे ना फोकस फोकस फोकस,
2: सो दैट फोकस will this purpose of life will become the magnifying glass। अब आत्मा की शक्ति को इस पर्पस के फोकस के थ्रू सारा दिन कार्य में लेकर आए तो वो शक्ति अब पावर का काम करना शुरू कर देगी। लेकिन सिर्फ ये याद रखते हुए that my purpose of life is guided by values, all my values, ये ना हो कि किसी और ही डायरेक्शन में चले जाए फिर, ये ध्यान रखेंगे।
1: तो कैसे हो सकता है जब पर्पस ऑफ लाइफ अगर सोल की क्वालिटीज ही हैं, तो वैल्यूज कैसे हट जाएंगे?
2: इसीलिए ना हमेशा साथ में पकड़ के रखना पड़ता है ये कंपास, क्योंकि हमारे इतने जन्मों का संस्कार है ना दूसरी डायरेक्शन में जाने का, तो इट डजंट टेक टाइम फॉर अस टू स्लिप ऑफ इन द होल डे। इफ यू बी वेरी केयरफुल that I should not slip away from my purpose।
1: जैसे जीवन में एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम चलते चलते गिर जाते हैं,

0: speak.
1: You're so right, sister. जैसे आप कह रहे कि एक ही चीज में, जैसे उस दिन वो चाय मुझे देर हो रही थी, गोल्फ खेलने जाना था, गाड़ी में सामान रख दिया था, तो मैं चाय मांगा तो मतलब मैं कहाँ रखूं, तो मतलब मेरे सर पे रख दे क्योंकि मुझे देर हो रही. उसके बाद ये चीज खत्म नहीं हुई. गाड़ी में ड्राइवर थोड़ी देर के बाद पूछते कहाँ जाना है, तो मतलब आपको वहां फिर मैंने कुछ बोल दिया. मैंने तो गोल्फ का सामान रख, जाना कहाँ है और क्या, एयरपोर्ट जाना है. तो मतलब ये बात अंत नहीं होता है ना, एक शुरू हुआ तो एक बीच एक थॉट.
0: लेकिन आप अभी यहाँ बैठकर आपको लग रहा है कि वो ऐसे बोला, लेकिन उस टाइम जब बोला था
1: तो मतलब इतनी अकल नहीं है इसको.
0: तब उस टाइम सही लगा था ना,
1: उस टाइम पे वो आदमी मुझे बेवकूफ लगा था ड्राइवर.
0: मैं क्या लगा
1: कि मैं गोल्फ का बैग लाया, सामान लाया, फिर कहाँ जाना है भूल कर.
0: वो जवाब जब हम देंगे तो इसका मतलब हमारी मन की स्थिति इरिटेबल है ना.
1: थी ना चाय से शुरू हो गई, एक तो लेट आई, एक तो फिर वो शक्कर भूल गया.
0: इसीलिए जो आपने कुछ दिन पहले वो थॉट सुनाई ना, वन थॉट विल अट्रैक्ट द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन
1: एंड द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन.
0: कितना इम्पोर्टेंट है एक थॉट. इसीलिए जैसे ही अपने आप को देखें ऐसे होते हुए कट करना पड़ेगा. एंड इट वर्क्स,
1: हो जाएगा.
0: इट वर्क्स, बिल्कुल वर्क करता है. ऐसा नहीं है कि एकदम से सारे संस्कार बदल जाएंगे. वो आएगी थॉट्स, लेकिन उसको अगर वृक्ष बनने दे दिया, फिर वो वृक्ष से जंगल बन गया.
1: अच्छा, अब यहाँ जो आप कह रहे थे कि अपने आप से जब हम बात करते हैं तो वो टाइम पे अपने आप को जस्टिफिकेशन नहीं देना, तो अब जब मैं वहां बात करूं कि तो हाँ यार वो तो नौकर चाय नहीं लाया, शक्कर नहीं लाया, ये नहीं, तो बोलूंगा या ना चिड़ूंगा, और रखने की कहां जगह, इतनी तो अकल होनी चाहिए, ट्रेंड नौकर घर पे होने चाहिए, चाय तो टेबल पे ही रखते हैं. ये सब मैं अगर करूं तो फिर मैं अपने आप को सुधारने में,
0: ये करने की वजह से गाड़ी में बैठते फिर से सेम चीज कर दी. यही अगर उसी टाइम ये कर दिया होता कि ठीक है उसका क्वेश्चन बहुत सही नहीं था, लेकिन मुझे जवाब इस तरह से नहीं देना चाहिए
1: था, भी सही नहीं था.
0: मैं बोल सकता था हाँ टेबल पे रख, और अगर मैंने
1: उसने नहीं कहा रखो तो यहाँ एक वर्ड ही बोल सकता था.
0: मैंने कहा था दो लाइन बोल दी उसकी जगह, कितनी पावर,
1: एक ही वर्ड बोल सकता यहाँ
0: बस. सी इट्स नॉट, वी कैन नॉट गो इन टू गिल्ट सेइंग कि मैंने क्यों नहीं बोला उस टाइम, मुझे ऐसे करना चाहिए था. आफ्टर इट हैज हैपेंड, इंसिडेंट यहां से नहीं जाता है. जब यहां खत्म हो जाता है सिचुएशन, यहां खत्म हो जाती है, यहां नहीं खत्म होती है. इट विल स्टे ऑन द माइंड फॉर सम टाइम. वहां उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दो कि उसने ऐसा बोला, मुझे जवाब देना चाहिए था, यहां रख दो. अगर वो हम कर देते उस टाइम, फिर जब हम कार में बैठते और तब अगर ड्राइवर बोलता ना कहां जाना है, तब आपका जवाब होता गोल्फ खेले जाना है. तब आप ये नहीं बोलते एयरपोर्ट थोड़ी जाना है. Just that little thing which had to be done.
1: एक बात और पूछना चाहूंगा यहाँ. यहाँ मैंने तो बोल दिया, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे चले, वो छोटे से लड़के के स्टाफ के, उसके मन में क्या चला होगा जब मैं बोले सर पे रख दे.
0: अगर आप उसकी जगह होते तो आप कैसा सोचते सामने वाले के बारे में.
1: नहीं यहाँ तो मैं गिल्ट में जाता कि मुझे अकल नहीं है.
0: हाँ,
1: यहाँ ऐसे जाता, यहाँ बोलते हैं साहब पागल है, इनसे पूछो नहीं.
0: लेकिन जब वो आपके बारे में ऐसा सोचेगा कि सर ऐसे हैं, तो उसने आपको कौन सी वाइब्रेशन भेजी.
1: उसने तो बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन.
0: ये नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से कार में बैठ के फिर से गलती हो गई.
1: तो उसने भी नेगेटिव
0: भेजी,
1: ड्राइवर ने भी दी.
0: फिर जब नेक्स्ट जगह पर पहुंचेंगे कोई और स्टिमुलस आएगा, फिर गलत रिएक्शन हो जाएगा. This is only the meaning of one thought to the next, to the next, to the next, to the next. And yahi sahi ek chain mein bhi agar galat galat galat bhi chal rahi hai, us chain ko beech mein cut ke ek sahi bhi dal di thought. Ek sahi bhi. Suppose staff ke saath chai par galti ho gayi, never mind. Car mein baith ke fir galti ho gayi, never mind. Lekin third galti hone se pehle apne aap ko change kar liya, chain baki thik ho jaye.
1: Main ek thought aaya mujhe abhi कि हम बात कर रहे थे इतनी बड़ी सोल की और सोल की क्वालिटीज की, और इनकी इनका असर देखो और इनका सीड कितनी छोटी छोटी बातों पे है. अब छोटी छोटी बातों में अगला बंदा भी खुश, मैं भी खुश, एटमोसफेयर भी खुश. तो लोग कहते नहीं इस घर के अंदर वाइब्रेशन बड़ी गंदी सी आती किसी घर जाओ तो.
0: अब जब आपने ये किया होगा ना कि स्टाफ ने कहा, फिर आपने कहा मेरे सर पे रखते, तो पहले आप डिस्टर्ब हुए,

0: स्टाफ जिसको बोला वो डिस्टर्ब हुआ,
1: वो जाके नीचे स्टाफ को भी किया होगा,
0: वेरी गुड, वो जाके नीचे स्टाफ को बोला होगा, फिर उन्होंने भी दो चार थॉट्स क्रिएट की होंगी। आपके साथ जो बैठकर चाय पी रहे होंगे, सपोज वाइफ बैठे है, बच्चे, वो भी उन्हें कैसे बात करते, वो भी डिस्टर्ब हुए होंगे। तो सृष्टि, माई वर्ल्ड गॉट अफेक्टेड, मेरी पूरी सृष्टि अफेक्ट हो गई मेरी एक थॉट से। कितनी इम्पोर्टेंट है, अपनी जीवन को ब्यूटीफुल बनाना कितना इजी है।
1: तो ये जो आप कह रही थी अभी, मैंने सारों को, इतनी सृष्टि को इतना डिस्टर्ब किया, वो भी मेरा बैड कर्म है, कार्मिक अकाउंट में आ जाएगा?
0: आ ही जाएगा ना
1: सर, सच सच बोल रहे,
0: आ ही जाएगा ना, मतलब आप
1: क्या नहीं, मतलब इतनी छोटी सी बात से सीखने को मिलता है। और हम, मैं बड़ी बड़ी किताबों में ढूंढ रहा था ये ज्ञान की, माई पर्पस ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल के क्लासेस में जा रहा हूँ। बात इतनी सी है कि एक अच्छी सी बात तो कर लो,
0: अच्छा सा सोच लो, अच्छा सा सोच लेंगे अच्छी सी बात तो अपने आप हो जाएगी।
1: नहीं, बट इन सबसे अच्छा मुझे आपकी से बात करते हुए ये लग रहा है कि आज पर्पस ऑफ लाइफ, मुझे कई लोग पूछते हैं, आई डोंट नो माई पर्पस ऑफ लाइफ, आई डोंट नो, मतलब ये है कि जो हमारी पर्पस ऑफ लाइफ ये है अब कि हम अपनी ओरिजिनल फॉर्म को ढूंढें कि हम क्या थे,
0: हमें
1: क्या हो गया?
0: जीवन के गोल्स बनाने हैं। जीवन में लोग गोल्स बनाते हैं कि मुझे ये बनना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। वो जीवन के गोल्स होंगे, वो टाइम टू टाइम चेंज होते जाएंगे। आज ये गोल है, पांच साल बाद अलग गोल होगा, उसके अगले साल अलग गोल होगा। गोल्स बदलेंगे, पर्पस सेम रहेगा। दिस वी हैव टू रिमेम्बर। गोल्स आर लाइक, यू नो, लाइक अ रोजरी, एक माला, मोतियों की माला है। तो जो मोती है ना अलग अलग, वो है जीवन के गोल्स। एक बच्चे के लिए गोल होता है मुझे नर्सरी में एडमिशन मिल जाए, फिर उसका अगला गोल होगा मैं पास हो जाऊं उसमें, फिर ऐसे करते करते वो टेंथ तक आएगा, ऐसे करते। ये हमारे मोती हैं, ये सारे मोती हैं, लेकिन इस सारे मोती को पिरोते हुए, पकड़ते हुए जो धागा होगा, वो पर्पस ऑफ लाइफ है।
1: ये धागा कैसे पर्पस ऑफ लाइफ हो गया?
0: छोटा सा बच्चा लेते हैं, गोल है नर्सरी में एडमिशन, सिर्फ इतना गोल, हम वो प्री स्कूल जो कहते हैं उसमें एडमिशन। आज उसकी एडमिशन के लिए भी बच्चे को भी स्ट्रेस, पेरेंट्स को भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी भी, वरी भी, फियर भी, इनसिक्योरिटी भी, और दूसरे को मिल गई तो जेलेसी भी। राइट, गोल अचीव करने में, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना था? जैसे आपने कहा, ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल को रेडिएट करना। मुझे एडमिशन चाहिए, लेकिन उसका मैंने डर नहीं क्रिएट करना, उसकी टेंशन नहीं क्रिएट करनी, और दूसरों को खुश देखकर उनसे ईर्ष्या नहीं करनी, उनको सहयोग देना, फिर नर्सरी में एडमिशन लेनी है, ऐसे करते करते टेंथ को भी पास करना है। उसकी 10 इयर्स ऑफ स्टडी में वो हर साल एक गोल बनाता है, आज मुझे फर्स्ट आना है, इस बार मुझे स्पोर्ट्स में जीतना है, इस बार मुझे ये प्ले करना है। ये एक बच्चे के छोटे छोटे गोल्स होते हैं जीवन में, लेकिन उस गोल्स को अचीव करने में अगर वो हर साल स्ट्रेस भी क्रिएट कर लेता है, उदास भी हो जाता है, कहीं उसको वो नहीं अचीव होता गोल तो वो डिप्रेस्ड भी हो जाता है, अगर दूसरे कर रहे हैं अच्छा उनसे वो ईर्ष्या करके उनके अगेंस्ट कुछ गलत भी फैला देता है, तो वो गोल तो अचीव कर लेगा, लेकिन उसका जो धागा है वो पर्पस ऑफ लाइफ, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल था कि हमें ये सब कुछ करना है, हमें सब कुछ।
1: पर्पस ऑफ लाइफ और गोल को कंफ्यूजन में आ गया है।
0: कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी
1: इसलिए हो गया कि जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसको छोड़ के गोल को पर्पस समझ लिया।
0: ब्यूटिफुल, एंड गोल को पर्पस समझने के कारण उसको अचीव करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे,
1: पर्पस को भी बोलने तैयार है।
0: तो पर्पस ही ये समझा ना कि मुझे ये बनना है।
1: हाँ।
0: तो अगर सपोज मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, मैंने ये सिंपल लेते हैं फिर से, मुझे यहाँ से यहाँ तक चल के जाना है, ये मेरा गोल ऑफ लाइफ है,
1: नॉट द पर्पस ऑफ,
0: ये मेरा गोल ऑफ लाइफ है कि मुझे अब यहाँ जाना है, वहां पहुंच गई ना उसके बाद वहां जाना, ये मेरे गोल्स हैं जिसको हम कहते हैं गोल, शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? सीधा, हेल्दी, औरों को साथ में सहयोग देते हुए प्यार से मुझे वहां तक पहुंचना है। वो था धागा, वो पर्पस ऑफ लाइफ, उस गोल तक पहुंचने का।
1: बट उस गोल तक ना भी पहुंचे, बट पर्पस ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, की वैल्यूज, प्यार।

0: से रहना है कि पहुंचे ना पहुंचे इज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी सोचना.
1: लेकिन अगर मैंने उस धागे को नहीं याद रखा कि ये पर्पज ऑफ लाइफ है, एंड मैंने कहा ये पहुंचना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यहाँ पहुंचना,
0: चाहे कुछ भी करूं,
1: चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरे रास्ते में अगर आप आ गए
0: काट दो,
1: और ये करने से कि दूसरे को गिरा दो, दूसरे को हरा दो, दूसरे के अगेंस्ट झूठ भी बोल दो, दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर दो,
0: उस पर झूठे इल्जाम लगा के उसको जेल में भी डाल दो,
1: हाँ वो बड़े लेवल तक वो भी हो सकता है, लेकिन ये करने करने से मैं अपने पर्पज ऑफ लाइफ के ऑपोजिट कर रही हूँ.
0: टोटली
1: ऑपोजिट करने से क्या हो गया कि पर्पज ऑफ लाइफ था कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन देना, अगर मैंने उसका ऑपोजिट करना शुरू कर दिया, उस पेड़ ने अगर उसका ऑपोजिट करना शुरू कर दिया,
0: तो पहले सिम्टम्स तो दिखते ही हैं, पीले पत्ते होने लगते हैं.
1: वो ही हमारे सिम्टम्स आज दिख रहे हैं. हम आज अपने पर्पज ऑफ लाइफ का ऑपोजिट कर रहे हैं. इवन अ सिंपल थिंग लाइक कोऑपरेशन, ये पर्पज ऑफ लाइफ था. जब से कम्पीट करना शुरू कर दिया, आप मेरे साथ रेस में हैं, तो मेरा पर्पज ऑफ लाइफ आपको हराना बन गया. तो मैंने पर्पज ऑफ लाइफ के ऑपोजिट जब करना शुरू कर दिया, तो आत्मा अंदर ही फिर क्या हो गई, जब आपसे ईर्ष्या करनी शुरू कर दी, जब मुझे नाराजगी दुखी हुई कि आप खुश क्यों हैं, तो मैं अंदर से क्या होते जाऊंगी फिर. सो वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर गोल्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन गोल को अचीव करते करते पर्पज ऑफ लाइफ के कंपस को नहीं गिराना है रास्ते में. गोल की तरफ चलना है, लेकिन कंपस के डायरेक्शन को देखते हुए. आज हमने अपने कंपस को ही फेंक दिया कि डजेंट वर्क, वैल्यूज डोंट वर्क, ऑनेस्टी वर्क नहीं करती, कोऑपरेशन वर्क नहीं करती, मुझे तो सिर्फ वहां अचीव करना है चाहे कुछ भी हो जाए. कंपस को ही फेंक दिया, फिर पहुंच भी जाते हैं और उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ, हम क्यों हैं इस जीवन में, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है. दिस वी नीड टू होल्ड ना, सब गोल्स अचीव करने हैं. और जितना सीक्रेट ये है कि जितना पर्पज ऑफ लाइफ को पकड़कर गोल की तरफ चलेंगे, तो गोल को अचीव करने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली गोइंग टू बी हायर.
0: आपने ऐसा बताया ना, कंपस को पकड़ के ऐसे देखना, तो मुझे आया कि दिए का ऐसा एक फीलिंग आई. तो दिया को, दिए जो रास्ता दिखा रहा है, कंपस जो रास्ता दिखा रहा है, दिया जो रोशनी दे रहा है, उसी को हम फेंक देंगे तो अंधेरे में.
1: हमें क्या लग रहा है कि हमारा ये कंपस हमें हमारे गोल से पहुंचने के लिए रोकेगा. दिस इज व्हाट वी फील. यू नो, अगर मुझे लगे कि मुझे वहां पहुंचना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और आप बीच में आए, ठीक है, और अगर मैं 2 मिनट रुकी आपकी हेल्प करने के लिए, तो मुझे लगता है आप मेरे गोल में पहुंचने के बीच में ऑब्स्टिकल आ गए हैं. आई डिड नॉट नो कि आपको हेल्प करने में ही आई एम अचीविंग माई पर्पज ऑफ लाइफ. एंड इसीलिए हम अंदर ऐसे घुटते जा रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, दुखी हैं, उदास हैं, चिड़चिड़े हैं, बिकॉज वी ट्रीटेड दीज थिंग्स एज ऑब्स्टिकल्स, वेयर एज दे हैड कम इन आर वे सो दैट वी कुड इंक्रीज आर हैप्पीनेस.
0: मतलब ये है कि पेड़ हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है. अपने पर्पज ऑफ लाइफ तो जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना और इंसानों को और प्रकृति में ऑक्सीजन देना.
1: प्रकृति में हर चीज ही दूसरों को देने के लिए है, हर एक चीज. एंड वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, लुक एट दिस यूनिवर्स. हम इंटरकनेक्टेड हैं सिर्फ एक दूसरे को देने के लिए. और जब हम सारे उस तरह से वर्क करेंगे, दिस वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटिफुल प्लेस.
0: ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच सिस्टर.
1: ओम शांति.
0: ओम शांति. थैंक यू.
2: The sun's energy is always there, but when focused through a magnifying glass, becomes power to burn paper. Similarly, soul energy when focused through our purpose of being will become power which will reflect in our behavior and interactions. The magnifying glass is our purpose. We feel that people's habits are wrong and we ask them to change. In spite of our best advice, people might not agree to change because they are comfortable with their habits and find nothing wrong with them. Our perspectives of right and wrong can be different. If we are judgmental and critical about people, even in our thoughts, it depletes our power. The thoughts reach them and they start thinking negatively for us, which further depletes our power. This becomes a vicious cycle of negative conversation between the two minds. Goals in life are the milestones on our journey. They are what we want to achieve in our doing. Purpose of our life is how we are being, the qualities we are experiencing and radiating while we are working towards our goals.
1: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: भी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियां बांटो। प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का विषय है कर्मों की गति। चलिए मैं आपसे अपना चिंतन शेयर करता हूं कर्मों की गति के ऊपर। मनुष्य के जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्मों की गति अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी होती है। यह सत्य है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। कर्मों का प्रभाव जीवन में तात्कालिक भी हो सकता है और दीर्घकालिक। यह आवश्यक नहीं कि हमें अपने कर्मों का फल तुरंत मिले, लेकिन समय आने पर यह अवश्य मिलता है। आइए अब हम समझते हैं कर्मों का महत्व क्या होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है और यह हमारे जीवन को दिशा प्रदान करता है। यदि हम सत्कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलता है और यदि पाप कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उनका भाग्य ही सब कुछ तय करता है, लेकिन वास्तव में भाग्य भी कर्मों का ही परिणाम होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका भाग्य अच्छा होगा और यदि बुरे कर्म किए हैं तो उसका भाग्य भी प्रतिकूल होगा। भाग्य केवल पूर्व कर्मों का प्रतिबिंब होता है, लेकिन वर्तमान के कर्म ही भविष्य का भाग्य निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। आइए अब हम समझते हैं कर्मों की गति का क्या रहस्य होता है। कर्मों की गति को समझना बहुत कठिन है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करने के बाद भी सुखी है, जबकि कोई इंसान दुखों का सामना कर रहा है जिसने कि हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन यह कर्मों की जटिल गति का ही प्रभाव होता है। अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब सही समय आता है तो उसका परिणाम अवश्य मिलता है। इसी प्रकार बुरे कर्मों का दंड भी देर सवेर अवश्य मिलता है। अच्छे और बुरे कर्मों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। आइए अब समझते हैं कि अच्छे कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, परोपकार करना, माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, जीवों के प्रति दया भाव रखना आदि, ऐसे कर्म करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, समाज में सम्मान मिलता है और अगले जन्म में भी सुखद जीवन प्राप्त होता है। बुरे कर्म जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, ईर्ष्या और द्वेष रखना, लालच करना आदि, ऐसे कर्म करने से व्यक्ति को मानसिक अशांति मिलती है, समाज में तिरस्कार मिलता है और अगले जन्म में भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस चिंतन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कर्मों की गति को समझना आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वे ही हमें सफलता, सुख और शांति प्रदान करते हैं। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उनके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए हमें सत्कर्म की राह पर चलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये था मेरा आज का चिंतन। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें।
0: रेडियो श्रोतागण, अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे संजय। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी विशेष रेडियो श्रृंखला में, जिसका नाम है श्री कृष्ण की 16 कलाई। आज हम आरंभ कर रहे हैं इस आध्यात्मिक यात्रा का पहला अध्याय, रूप माधुरी अर्थात सौंदर्य की कला। दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, जय श्री कृष्णा।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप जानते हो श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उनके व्यक्तिमत्व में सभी 16 कलाओं का समावेश है। पहली कला रूप माधुरी केवल शारीरिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उनके आंतरिक तेज, करुणा और प्रेम का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण का रूप इतना आकर्षक था कि हर कोई उनके दर्शन मात्र से मोहित हो जाता है। उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों जैसी, उनकी मुस्कान अमृत जैसी और उनका व्यक्तिमत्व चंद्रमा की शीतलता जैसा था। ये सौंदर्य केवल देखने वालों को आनंद नहीं देता था, बल्कि उनके हृदय को शांति और प्रेम से भर देता था। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं तो नगरवासी उनके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गोपियां तो पहले ही उनके सौंदर्य की दीवानी थी। उनके रूप का आकर्षण इतना था कि लोग कहते हैं कृष्ण का सौंदर्य केवल आंखों का नहीं आत्मा को छू लेता है। यह रूप माधुरी केवल भारी नहीं थी, उनके हृदय की करुणा, उनकी वाणी की मधुरता और उनके आचरण की सरलता भी उनके सौंदर्य का हिस्सा था। यही कारण है कि श्री कृष्ण का रूप आज भी भक्ति का केंद्र है। तो आइए इस प्रसंग के माध्यम से हम श्री कृष्ण के दिव्य रूप का प्रस्पान करें और उनकी रूप माधुरी कला का अनुभव करें। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्णा दोस्तों, रूप माधुरी हमें ये सिखाती है कि सच्चा सौंदर्य केवल चेहरे या शरीर में नहीं होता, वह हमारे व्यवहार, करुणा और प्रेम में झलकता है। कृष्ण का सौंदर्य हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को भी आंतरिक गुणों से सजाएं। यदि हम अपने हृदय में प्रेम, करुणा और सत्य को स्थान दें, तो हमारा व्यक्तित्व भी रूप माधुर से भर जाएगा। यही कला हमें बताती है कि सौंदर्य का वास्तविक अर्थ है दूसरों को शांति और प्रेम देना। तो आइए इस अध्याय के माध्यम से हम श्री कृष्ण की रूप माधुरी कला का अनुभव करें और अपने जीवन में भी इस गुणों को अपनाइए। तो दोस्तों, सुनते हैं श्री कृष्ण का एक प्यारा सा गीत।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कृष्ण वंदे जगत गुरु, अर्थात मैं उस कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो संपूर्ण जगत का गुरु है। उनका रूप ही शिक्षा है, उनका सौंदर्य ही साधना है। कृष्ण का व्यक्तित्व हमें यह संदेश देता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति, करुणा और प्रेम है। उनकी मुस्कान अमृत जैसी है, उनकी वाणी मधुरता से भरी है और उनका आचरण सरलता का प्रतीक है। यही कारण है कि श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है, क्योंकि हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन में भी कृष्ण के गुणों को अपनाएं। यदि हम अपने हृदय में प्रेम, करुणा और सत्य को स्थान दे तो हम भी अपने व्यक्तित्व को दिव्यता से भर सकते हैं। तो आइए इस अध्याय के माध्यम से हम श्री कृष्ण के जगत गुरु स्वरूप का अनुभव करें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, यहाँ की पहली कला रूप माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि सौंदर्य का वास्तविक अर्थ है प्रेम और करुणा से भरा हुआ जीवन। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री कृष्ण की दूसरी कला लीला माधुरी, यानी उनकी अद्भुत लीलाओं का आकर्षण। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आंखों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद।

0: आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध। तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.

0: ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, और आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है एवरी सैटरडे हम लोग इस प्रोग्राम में देते हैं, जीवन विकास इस प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग अपने यूथ को टारगेट करते हैं कि वो अपने करियर को कैसे चूज करें, या फिर उनकी हॉबीज है या उनकी जो अलग तरह के आर्ट है उनके अंदर, तो उन सभी को कहते शेप करें। तो एक्सपर्ट से जब हम लोग बात करते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी जीवन की कुछ अनुभव जो है हम सभी को मोटिवेशन देता है। वैसे मैं कहूं कि आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटी सेक्टर में कुछ काम करना है, तो इसके लिए इंटरनेट पे आपको भरपूर माहिती मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और इसके साथ में आपको स्कूल में भी करियर के फेयर लगते हैं तो वहां से भी कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाता है। लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस जब हम लोग शुरू करते हैं या किसी एक्सपर्ट से सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिल जाता है, एक प्रॉपर जो है वे मिल जाता है कि इनके जीवन में ये सीखा है तो इन्होंने क्या किया। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान बीके अर्चना जी हैं। तो बीके अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप?
1: शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे।
0: जी जी जी, बीके अर्चना जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और मैं चाहूंगा कि वर्तमान में आप कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं? जी
1: जी, नाम है बीके अर्चना। एक्चुअली हमारा बर्थ हुआ है हरियाणा में
0: जी, जी,
1: और उसके बाद 2 इयर्स हम लोग दिल्ली में रुके, और उसके बाद 20 इयर्स आई वॉज इन दुबई। अभी हम 3 इयर्स से नोएडा में स्टे कर रहे हैं, और यहाँ पर अपने से पॉसिबल होता है हम लोग सेवा में रहते हैं, हॉबीज हैं या जो भी शौक हमारा रहा है।
0: अच्छा, आपकी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए, बचपन की बातें, स्कूल लाइफ के बारे में।
1: जी, स्कूल लाइफ बहुत अच्छा वहीं हरियाणा में रहा है। तो बचपन से ही बिकॉज वी वर किड्स तो एंजॉय करते थे, लेकिन वहीं पर हमने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मैरिज हो गई तो उसमें बिजी हो गए बच्चों में, लेकिन जी, जी। कुछ समय के बाद जब अपने बच्चे बड़े हो गए उसके बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि हाँ, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के साथ कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, फिर अलग अलग एज ग्रुप के साथ जो सिचुएशंस आती हैं उनको कैसे हैंडल करना है, अपने अपने घर में तो बच्चों से सीखने को मिला, लेकिन हाँ, वो एक्सपीरियंस हमारा आगे फिर काम आता है, कुछ भी अगर हम नया करना चाहते हैं तो उसमें बहुत हेल्प मिला हमें, बहुत हेल्प मिला, और हमेशा हम बच्चों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। और कुछ 5 इयर्स बिफोर हम लोग कुछ स्पिरिचुअलिटी में आ गए, तो वो दैट इज एडिशनल बेनिफिट रहा उसका हमको ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अर्चना जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे स्कूल या कॉलेज में जब आप थे तो आप किस तरह के करियर के बारे में, अगर आप कुछ बनना चाहते थे तो क्या सोचते थे, किस फील्ड में आप जाना चाहते थे?
1: एज सच उस समय भी एक ये रहता था कि कुछ टीचिंग लाइन में कुछ करना है, तो लेकिन कुछ डायरेक्शन क्लियर नहीं थे, लेकिन पता नहीं था कि इतने सालों के बाद अभी हमको ये सब मिलेगा चांस करने का। तो इट वॉज फन, बहुत मतलब एंजॉय कर रहे हैं अभी तो हम इस समय को, और जो भी हम लोग बच्चों के साथ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ टाइम हमें एक प्रैक्टिस भी रहा वहां पर जब हम बाहर थे दुबई में, तो कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे तो बच्चों को मैनेज करने का ड्यूटी मिलता था।
0: बिल्कुल,
1: तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ में हुआ तो उसको हम करियर भी बना सकते हैं, तो वो उसमें ऐसा लगा हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दुबई में कितना समय आप रहे?
1: 20-21 इयर्स।
0: जी जी जी, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम या वहाँ पर किस तरह के जो है चीजें आपने देखी, थोड़ा सा बताइए वहाँ का।

0: बट इजी वे में, मतलब इतना प्रेशर नहीं है वहां पर स्टूडेंट्स को लेकर भी।
1: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि वर्तमान समय में वहां पर किस तरह का सिनेरियो है ये आपने बताया, और एजुकेशन वगैरह जो भी है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो काम चल रहा है वहां पर भी। और आपने बताया कि भाई वहां पर महिलाओं के लिए विशेष सम्मान भी है और सब चीजें जो है विधिवत चीजें चलती हैं और रिस्पेक्टफुली वो काम करते हैं, ये आपने बताया।
0: जी, इवन इवन जो अथॉरिटीज भी है ना वो भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, फैमिलीज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है।
1: सही बात है,
0: तो इट्स अ गुड थिंग।
1: जी जी जी, एक मैं बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि एक जैसे कि हम लोग दुबई की जब बात करते हैं तो एक टूरिज्म की तरह उसको देखा जाता है, टूरिज्म के लिए काफी मशहूर है दुबई, तो मैं चाहूंगा कि क्या एक टूरिज्म के हिसाब से किस तरह से कितने दिन में हम पूरा दुबई को देख सकते हैं, आप वहां की कुछ अच्छी चीजें जो टूरिज्म के हिसाब से हमें देखना है तो थोड़ा सा बताइए वहां पे।
0: जी एक्चुअली हम लोग 21 इयर्स रहे और 21 इयर्स में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर चेंज हो गया, जो हमें जंगल लगता था कि ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो डेजर्ट है, इट्स लाइक अ हेवन, मतलब बोल सकते हैं उसको आज के टाइम में। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और वहां पर गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है फैमिलीज के लिए, कुछ भी एक्टिविटीज हैं, आपको हॉलीडे डिपेंड्स कि आपके पास कितना समय है, आप उतना समय वहां पर स्पेंड कर सकते हैं। 5 डेज में भी जाते हैं यहाँ से ट्रिप्स, और लेकिन थॉरली अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहें तो 15 डेज में भी मतलब आप कवर कर सकते हैं उसको। बहुत सारी किड्स के लिए एक्टिविटीज भी हैं और एल्डर्स के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हैं, रिसोर्ट्स हैं, अच्छा है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस।
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर अर्चना जी आपसे जुड़ेंगे और दुबई में जो खास चीजें हैं बहुत ही फेमस जो चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, जो खास करके टूरिज्म के हिसाब से उन चीजों को डिजाइन किया गया है वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। और अभी लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और अर्चना जी से हमारी बातें हो रही हैं। बीके अर्चना जी हमारे साथ हैं और खास एजुकेशन का जो है इनका विशेष आकर्षण रहा है, और अगर इनको मौका मिलता तो एजुकेशन में ही ये बच्चों को पढ़ाने का काम करते। लेकिन शुरू में ये चीजें उनको नहीं मौका मिला, लेकिन वापस दिल्ली आने के बाद इनको ये मौका मिला और ब्रह्म कुमारी के संस्थान से जुड़कर ये एज ए सेवा प्रोफेशनली नहीं बल्कि अपने हॉबी और अपनी सेवा समझकर वो अभी बच्चों को पढ़ा रही है। और छोटे बच्चों के साथ इनका जो है बड़ा अच्छा रैपो बनता है, बच्चों के साथ इन्हें बड़ा अच्छा भी लगता है। तो इस हिसाब से कहते हैं कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो अगर हम बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर खुशी होती है। और खास करके अर्चना जी को इस कार्य में बड़ा रुचि होता है तो वो इस कार्य को कर रहे हैं। अगर आज के समय में हम लोग देखा जाए तो एजुकेशन में और खास बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष ट्रेनिंग भी दिया जाता है। आप देखते हैं कि बड़े शहरों में बच्चे जो है सीनियर जूनियर केजी चलते हैं, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट में उनको एंट्री मिलती है। तो बच्चे जब 6-7 महीने या चलना फिरना शुरू कर देते हैं तो उसी समय से जो है उनको जो है खास स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। और बच्चों को जो है वहां पर खेलना, खाना पीना, कैसे रहना है, छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं। और फिर उनको जो है राइम पोएम्स वगैरह से उनको जो है ट्रेन किया जाता है, और बाद में फिर 2 साल के बाद उनकी फर्स्ट स्टैंडर्ड शुरू हो जाती है। तो निश्चित तौर पे बच्चों को खास इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बच्चे रेगुलर स्कूल या स्कूल के सिस्टम से फेमिलियर हो इसके लिए जो है केजी और ये एलकेजी वगैरह शुरू हुआ है। और इसमें भी लोग जो है अच्छा करियर बना सकते हैं जिन लोगों को बच्चों के साथ प्यार है। तो एजुकेशन के लिए आप अगर सोच रहे हो तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और ये छोटे कोर्सेस होते हैं, आप जो है इस कोर्सेस को करके फिर आप बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मोंटेसरी कोर्स होता है या फिर एजुकेशन का कोई भी आप एक जो कोर्स है कर सकते हैं। और इसके बाद में मैं देखा हूं कि कई बार जो है संस्थान जो रहते हैं एजुकेशनिक एनजीओ होते हैं जो खास बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं। और ये लोग ऐसे

0: हम करते हैं जहाँ पर जो है कुछ बच्चे जो है जैसे गांव में है या गरीब है, वो क्या करते हैं, बच्चे तो एडमिशन लेके पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका फिर क्या हो जाता है, फैमिली का कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ उनके फैमिली में कुछ ऐसी चीजें आ गई, तो वो बच्चों को जो है आगे की पढ़ाई पढ़ाते नहीं है, और फिर कई बार बच्चे खुद भी कुछ कारणवश छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट बच्चों का भी एजुकेशन के लिए एनजीओस काम करते हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, और वो लोग सिर्फ बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए एडमिशन करवाने के लिए काम करते हैं। तो इन एनजीओस को भी आप जैसे एजुकेशनिस्ट टीचर्स जो बच्चों से प्यार करते हैं उनके लिए बहुत सारे ये मौके आते हैं जहां पर वो एनजीओ से जुड़कर अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं, एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही अच्छा काम है। और ये खास जो लोग फैमिली में रहते हुए अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए मैं बीके अर्चना जी को फिर से जोड़ना चाहूंगा, और हम लोग बात कर रहे थे उनका जो है दुबई में 21 साल वो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे दुबई का पूरा जो है सब चीजें जो है उनका जो है क्या कहते हैं जंगल से मंगल कैसे हुआ, वो सारा जो इतिहास है उनके पास उन्होंने देखा हुआ। तो आइए मैं चाहूंगा कि अभी जो खास टूरिस्ट प्लेस जो फेमस है दुबई में, खास टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए जो चीजें बनाई है उनके बारे में थोड़ा बताइए।
1: जी, वहाँ पर एक्चुअली जैसे कि सब लोग जानते हैं कि दुबई सी के अंदर पूरा का पूरा सिटी बना हुआ है। अभी वहाँ पर रिसेंटली कुछ समय पहले एक पाल्मा बीच एरिया बना है जो पाम की शेप में है, बिल्कुल सी के अंदर। वो घूमने के लिए बहुत अच्छा है। मिराकल गार्डन है, मतलब वहाँ पर वैरायटी ऑफ फ्लावर्स जितना भी हम सोच सकते हैं सब वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स हैं।
0: अच्छा।
1: और उनको इतने अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है कि मतलब वी कैन स्पेंड होल डे देयर। बटरफ्लाई गार्डन है, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत बहुत सारा एक्टिविटीज है वहाँ पर। फिर एक दुबई फ्रेम है, आजकल उसमें मूवीज में बहुत आता है दुबई फ्रेम करके। और वहाँ दुबई के सब प्लेसेस जो क्रीक बोला जाता है, सी साइड पे थोड़ा एरिया डेवलप कर दिया जाता है, उसको वो लोग डेकोरेट करते हैं। और इट्स अ फन टाइम, मतलब वीकेंड्स में आप चले जाओ बिकॉज अब रोड में और कोई तो एक्टिविटीज होती नहीं है, तो सब फैमिलीज कलेक्टिवली वहां पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स कर लेते हैं। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये बुर्ज खलीफा, सब मतलब घूमने के लिए ही वो तो है ही टूरिस्ट प्लेस, तो कितने भी दिन आपके पास हो, डिपेंड्स ऑन मनी एंड टाइम कि कितना हम स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेसेस है दुबई में, अगर आप एक बार चले जाते हो तो जितना आप खर्चा कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, उतना आपको जो है फन है वहाँ पर, उन चीजों को आप देख सकते हैं।
1: एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगी
0: जी, जी,
1: कि वहाँ की हॉस्पिटैलिटी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
0: अच्छा अच्छा
1: yes, क्योंकि हम लोग बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं, लेकिन फाइव स्टार्स में भी वो फैसिलिटी यूएस में भी नहीं होती है, यूके में भी नहीं होती है जितनी दुबई की हॉस्पिटल इज द बेस्ट।
0: जी जी जी, चलिए मैं चाहूंगा कि वहाँ के जो जैसे हॉस्पिटल की बात, हॉस्पिटलिटी की आप बात कर रहे थे, तो ये सभी जगह माना जहाँ भी आप टूरिज्म में टूरिज्म प्लेस में जाएंगे तो ये चीजें देखने को मिलती है वहाँ पर। अर्चना जी, मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, आप कितने प्लेसेस को देखा, सारी चीजों को देखे या कुछ रह गया आपका?
1: Yes, till 3 years before everything I have seen.
0: अरे वाह,
1: मतलब 3 साल पहले जब हम लोग यहाँ आए तब तक जो भी बना था, उसके बाद my daughter was there, तो वो बताते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये चीज भी नहीं आई है वहाँ पर।
0: जी जी जी, आपको उनमें से जो स्पेशल लगते हैं कि ये तो देखना ही चाहिए, ऐसा कुछ है?
1: सब चीजें ही बहुत अच्छी हैं, बोल ही नहीं सकते क्योंकि जो भी मिस किया वो गया। बाकी मॉल्स हैं ना, तो मतलब दुबई मॉल है, और ये मिराकल गार्डन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ पर इवन इंडियन जो टेंपल्स बने हैं वो भी देखने के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे अमृतसर का यहाँ पर गोल्डन टेंपल बोला जाता है, वहाँ पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है।
0: अच्छा,
1: वो इंडियंस जाते हैं तो वो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और

0: एक टेम्पल लक्ष्मी नारायण टेम्पल वहां पर बना है, उसके वीडियोस देखो तो बहुत बहुत सुंदर बना हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बात करते हैं फिर से एजुकेशन वाली बात। तो एजुकेशन में अगर आपको काम करने का मौका मिल जाता तो आप किन चीजों पे ज्यादा फोकस करते, कैसे काम करते, थोड़ा सा बताएं। जी
0: जी, मुझे एक्चुअली छोटे बच्चों के साथ बहुत बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करने को मिलता है और उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करने से हमारा अपना पेशेंस और हमारी अपनी कैपेबिलिटीज भी हमें पता लगती हैं धीरे धीरे कि हाँ हमारे अंदर ये क्वालिटी है। तो मुझे अगर चांस मिलेगा तो मैं छोटे बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना चाहूंगी। और जो चीज हम लोग उनको बताते भी हैं, रिसेंटली हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम छोटे बच्चों को कुछ बताते हैं ना तो वो लोग बहुत इंटरेस्टिंगली सुनते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग फोन में हैं, क्योंकि आज के टाइम में देखो तो डिजिटल डिटॉक्स के इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं वो आदत ना उनमें खुद ही डाल देते हैं। लाइक बच्चे ने खाना नहीं खाया है तो 6 मंथ के बच्चे के हाथ में हम फोन दे देते हैं और वो खाना खा लेता है, और बाद में एक एज के बाद हम लोगों को ये चीजें प्रॉब्लम करने लगती हैं कि देखो फोन पे ही बैठा है। फिर हम टीचर से कंप्लेन करते हैं कि आप इनका फोन छुड़वा दो। तो ये एक रूटीन में होती हैं ये चीजें लाइफ में। तो अगर हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ एक्टिविटीज करेंगे, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, लर्निंग इज एवरीवेयर ना, तो मुझे लगता है कि वो चीज को चेंज किया जा सकता है। तो आई ऑलवेज प्रेफर स्मॉल किड्स।
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आप अगर एजुकेशन में होते तो छोटे बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं। और अभी आपको क्या मौका मिला है, अभी आप उन चीजों को, आपका जो ये पैशन रहा है एजुकेशन के साथ बच्चों को सिखाना या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो वर्तमान में आप जो है कैसे इन चीजों को कर रहे हैं? जी
0: कुछ समय पहले से मैं स्टार्ट करूंगी कि कुछ 10-15 इयर्स बिफोर कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जो हम लोग अपनी फैमिली की पार्टीज में बच्चों के साथ और कोई जैसे डांस प्रोग्राम हो रहा है तो वहां करते थे।
1: जी, जी, जी,
0: तो वो चीज हमारे को यहाँ पर बहुत हेल्प की। यहाँ पर आए तो हमें कुछ ऐसी सर्विस करने का चांस मिला कि हम बच्चों को कुछ एंटरटेन करें, उनको स्लो लर्निंग प्ले वे मेथड में सिखाएं। तो वो चांस मिला तो कुछ 2 ईयर से हम लोग बच्चों के साथ वो प्रैक्टिस करते हैं। छोटी छोटी चीजें बोलते हैं करने को, लेकिन जब हम उनको दिखता है ना कि हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो लोग उस चीज को और ज्यादा इंटरेस्टिंगली करते हैं। शायद पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट हम बच्चों को उस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बीइंग अ टीचर, मतलब जो हमारा टीचर का रोल होता है उसमें अगर हम किड्स को कोई बात समझाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमारे लिए ये हमारे लिए वो लोग इम्पोर्टेंट हैं, तो उसमें बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारे 2-3 बच्चों के तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, तो वो लोग शेयर करते हैं कि हाँ, मतलब इतने हमें खुशी होती है कि अपने पेरेंट्स के को भी मतलब छोड़ के वो हम लोगों के साथ भी इतना इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चे हर चीज इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत, मतलब बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और फोन से वो लोग खुद ही डिटैच होते जा रहे हैं। मतलब उनको हमें फोर्स नहीं करना पड़ता है कि आप फोन नहीं यूज करो, क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट की चीजें करने को मिलती हैं, तो वो लोग अपने आप ही डिटैच हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारा ही होता है कि हम लोग उनको टाइम नहीं देते हैं, चाहे लाइफ टाइम के हिसाब से बिजी लाइफ है, जो भी है, जॉब, कोई भी रीजन हो सकता है, बट हम लोगों को ही थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा।
1: जी अर्चना जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बच्चों के साथ आपको जो है बड़ा रुचि, अच्छा लगता है और आप उन चीजों को करके बेहद खुशी महसूस करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस कार्य को करके आपको खुशी मिलती है उसी में आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपका लाइफ जो है बहुत ही अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो हर व्यक्ति चाहता है कि अपने लाइफ में सब कुछ हो। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए आप उन चीजों को करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो निश्चित तौर पे आप ऐसे ही करियर के बारे में तलाश कीजिए और ये जो छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम जो है ये आप

0: टाइम भी कर सकते हैं, अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस आपका बन सकता है, आपका हॉबी भी। तो देखना है कि आपको कैसे, आप जिस जगह पे रह रहे हो वहां पर क्या फैसिलिटीज है, क्या चीजें हैं, तो आप एक बार सोच के देखिएगा। और नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से छोटे छोटे कोर्सेस अवेलेबल हैं, 6 महीने के हैं, साल भर के हैं या 2 साल के हैं, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन करके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे एनजीओस बने हुए हैं जो खास इस एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अर्चना जी, मैं चाहूंगा कि अब इस ब्रेक में आपका पसंदीदा एक गाना हम सुनाना चाहेंगे, तो आपका कौन सा गाना जो बहुत ही अच्छा लगता है आपको? वैसे बहुत सारे गाने होंगे, लेकिन इस वक्त आपको कौन सा गीत याद आ रहा है? 2 लाइन उसके गुनगुनाइए।
1: तार मन के तुम्हीं से जुड़े ही रहे। आई लाइक दिस सॉन्ग, दिस इज द लेटेस्ट सॉन्ग बाय हरीश मोयल।
0: जी जी जी। चलिए इस स्पिरिचुअल गीत को जी जी जी, ये बहुत ही प्यारा सा आध्यात्मिक गीत आपने याद कराया है हरीश मोयल जी का, तो आइए इस गीत को सुनते हैं। आप सुनाए हैं 101.07.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रे सा रे ग ग प ग ध प ग ग।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। बीके अर्चना जी से बात हो रही है और बहुत ही प्यारा सा सूदिंग अध्यात्मिक गीत आपने सुना हरीश मोहल की आवाज में। और मुझे लगता है कि अगर आपने पहली बार इस गीत को सुना है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप निश्चित तौर पे कनेक्ट भी हुए होंगे। तो आइए आपके मन को और खुशी प्रदान करते हैं। अगर आप करियर के बारे में मतलब पार्ट टाइम करियर के बारे में सोच रहे हो तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों को पढ़ाने का, एजुकेशन वाला। तो ये चीजें आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। और आप जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश संस्थाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज स्कूल है, एनजीओस हैं, उनसे जुड़कर भी आप जो है पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो आइए मैं फिर से आपको बीके अर्चना जी से जोड़ना चाहूंगा। बीके अर्चना जी, मैं अभी चाहूंगा कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला आपका कैसे जुड़ना हुआ और फिर आपको यहाँ ऐसी क्या चीजें मिली जो आप कनेक्ट अभी तक है?
3: मुझे 5 इयर्स हो गए हैं, 2018 में मैंने स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन किया।
2: जी जी, जी।
3: और फ्रॉम द फर्स्ट डे इट चेंज माई लाइफ। पहला दिन मतलब जैसे ही मैंने एंटर किया तो ऐसा लगा कि पीछे की लाइफ तो डिलीट हो गई है। तो इट वॉज अ मैजिक फॉर मी। और मतलब जो भी रियलाइज नहीं होता था कि ये सब चीजें हमारी लाइफ में कमी है, मतलब कुछ और होना चाहिए, ऐसा कभी फील नहीं होता था। और सिर्फ जस्ट एक मेडिटेशन सीखने के पर्पज से जो हमने एंटर किया था, और ये मालूम ही नहीं था कि इतना सब कुछ मिल जाएगा कि मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब हम देना शुरू कर दें, मतलब सबको बताएं कि क्या क्या वंडर्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी में। और किसी भी फील्ड में ले लें, स्टडीज करना है, घर के कुछ भी सिचुएशंस हैं, मतलब हमारी पूरी वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। हमें जो चीजें पहले प्रॉब्लम्स लगती हैं वो अब वो सिचुएशंस बन जाती हैं। जो चीज हमें शायद कभी लाइफ में लगती है कि बहुत बड़ी थी, इसको कैसे डील करें, उसमें लगता है कि ठीक है, एक पॉज देते हैं हम अपने को, एक मिनट साइलेंस, और कुछ सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते नहीं हैं और हम लाइफ में परेशान होते जाते हैं। तो उसको जब हम रुक कर सोचना शुरू करते हैं तो अपने आप वो चेंजेस आने लगते हैं। और ये पॉज लेना नॉर्मली लाइफ में इतना इजी नहीं होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हम लोगों का ये हैबिट बन जाता है। और हमें एकदम से रियलाइजेशन होने लगता है कि नहीं, ये गलत स्टेप है, इसको चेंज करना है और इसको राइट कैसे करना है। तो वो डायरेक्शंस अपने से मिलती जाती हैं, हमारे अंदर इनर पावर्स आती जाती हैं और मैजिक देखने को मिलता है, तो हमें अपनी लाइफ मूवी की तरह दिखने लगती है।
2: चलिए, बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और अभी बच्चों के लिए वर्तमान में आप किन बच्चों के साथ जुड़कर उनको एजुकेट कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, जिन बच्चों से आप ज्वाइन वो जुड़कर काम कर रहे हैं। जी
3: जी, हमारे यहाँ पे ब्रह्म कुमारी संस्था के अंडर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो डेली क्लासेस अटेंड करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, उनके ही किड्स हैं। और उनसे जुड़े और जिन जिनको पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, यहाँ जाकर कुछ लर्निंग है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो उनसे हमने स्टार्ट किया था। कुछ 5 और 6 स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो धीरे धीरे ऑन एंड ऑफ, क्योंकि एग्जाम्स हैं, वेकेशंस हैं, तो वो लोग ऑन एंड ऑफ आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन मतलब वो जुड़े हुए हैं, ऑलवेज कहीं देखते हैं, तो उनको एक लाइवली फीलिंग होती है सबसे मिलके, उनसे मिलके दूसरे लोगों को इतना अच्छा लगता है। तो उनके जब पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो आगे होके पूछते हैं कि आप ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, हम वहां पर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो सुन के बहुत

0: अच्छा लगता है।
1: रिसेंटली
0: हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ समर कैंप, तो उसमें भी बच्चों के लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि पेरेंट्स आर विलिंग टू सेंड देम, और उनको ये विश्वास है अंदर से कि जो अंदर हमारे संस्कार हैं, जो हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं, वो हम बच्चों की कैसे बाहर निकालें, उनकी लाइफ को कैसे, मतलब उनको श्योर है पेरेंट्स को भी कि यहाँ से ही बच्चे आगे अपने लिए अच्छी गाइडेंस पा सकते हैं।
1: जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और अब तक आप कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं?
0: एक्चुअली ऑन एंड ऑफ आते हैं, कभी 5 कभी 10। हमारा एक बहुत छोटा सा यहाँ पर सेंटर है, हम लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन हाँ मतलब जो हमने अभी प्रोग्राम किया उसमें काफी बच्चे थे, मतलब सेंटर के जो
1: समर वेकेशन वगैरह आप करते हैं क्या?
0: जैसे समर कैंप हुआ वहाँ पर ना, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किया सब लोग ने मिलकर, टीम वर्क। जी
1: चलिए अर्चना जी, काफी अच्छी बातें आपने बताया, और मैं चाहूंगा कि जाते जाते बच्चों के साथ आपका जो इंटरेक्शन होता है, तो एक दो एग्जांपल्स दीजिए क्या आपको लगा और किस तरह से बच्चों को आपने उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा, वो थोड़ा सा एक दो एग्जांपल दो चार बच्चों का आप सुनाइए।
0: हमारे पास शुरू शुरू में एक बच्चा आया, तो जैसे ही वो एंटर किया तो कभी भी वो बैठता नहीं था, मतलब उसको एक सेकंड में, जैसे होता है ना बॉयज का थोड़ा,
1: हाँ बिल्कुल, कुछ
0: चुलबुले रहते हैं बहुत, यस, तो वो एक सेकंड के लिए भी बैठते नहीं थे, लेकिन अभी उनको अच्छा लगता है, वो कभी मिस भी कर देते हैं तो उनको लगता है कि नहीं हमें मिस नहीं करना है। एक बहुत अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो बच्चा कुछ क्लासेस ज्वाइन किया हुआ था, तो उसको उसने खुद अपना एक्सपीरियंस फोन करके बताया कि दीदी मैंने ऐसे ऐसे फॉलो किया जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, मेरा नेशनल लेवल में सिलेक्शन हो गया। तो वी वर सो हैप्पी ना, क्योंकि जब वो बोलता था ना कि दीदी हम लोग भूल जाते हैं, तो हम उनको कॉल कर करके बीच में फोन करके कि ठीक है आप भूल जाते हो, लेकिन जिस टाइम आपकी क्लासेस होंगी उससे जस्ट 10 मिनट्स बिफोर वील मैसेज यू और वील कॉल यू। तो ऐसे ऐसे जैसे मतलब उनको भी लगा कि हाँ हम लोग उनकी ग्रोथ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका इंक्लाइनमेंट इधर होने लगा, तो बहुत अच्छा। और कुछ चीजें जैसे हम लोग यहाँ क्लासेस में फॉलो करने को बोलते हैं कि आप ऐसा करो तो आपको ऐसा बेनिफिट होगा, तो दो तीन बच्चे और भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब आगे जाके उनको खुद आगे होके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो लोग बिल्कुल बोलते नहीं थे,
1: जी जी,
0: मुझसे कुछ बात नहीं निकलती थी, लेकिन आज आगे होके वो खुद बोलते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना है या हमें पार्टिसिपेट करना है, तो देख के अच्छा लगता है और हमें भी थोड़ा अंदर से मोटिवेशन होता है कि हाँ हमें भी कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि अगर वो करना चाहेंगे तभी ही हम लोग का एफर्ट्स दिखाई देंगे ना, नहीं तो कुछ बेनिफिट लगता नहीं है फिर, इसलिए जैसे जैसे वो डिमांड करते हैं वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता जाता है। तो ये टीम वर्क होता है, वो लोग मतलब दोनों का मिलके ही होता है जो भी काम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए विजय अर्चना जी, बहुत ही अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुनकर, और बड़ा खुशी हुआ कि हमें जो पसंद है उन चीजों को जब हम करते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते कि वे पैकेज कितना बन रहा है, कितना टाइम जा रहा है, या क्या चीजें, कितना पेशेंट हमें रखना पड़ रहा है, लेकिन आपका हॉबी है तो वो चीजें सारी जो है जीरो हो जाती हैं, आप उसे करके खुशी फील करते हैं, उस कार्य को कर उस जगह उपस्थित होकर आपको खुशी मिलती है, तो खुशी जैसी खुराक और कहीं नहीं मिल सकता, खुशी जैसी खुराक बोले जाता है कि भाई बहुत बड़ी जो चीज है वो है खुशी की खुराक, उसका आप अनुभव करते हैं, इसीलिए आपको जो है किसी भी तरह का तनाव या टेंशन नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात आपने शेयर किया कि बच्चों के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए आप टाइम निकालते हैं और बच्चों के साथ काम भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करूंगा कि वीके अर्चना जी को सुनकर आपको बच्चों के साथ कितना उनका लगाव है ये आप समझ गए होंगे, और छोटे बच्चों के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन जो हमने बीच बीच में आपको बता दिया, फिर भी आप इंटरनेट के माध्यम से जो है बच्चों के साथ जुड़ने के कौन कौन से करियर है आप टाइप करेंगे तो बहुत सारी चीजें आएगी, और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो सिखाते भी हैं, तो आप उनसे सीख कर भी आप इसमें करियर बना सकते हैं। तो जरूर मैं चाहूंगा कि आपको अगर

0: के साथ अच्छा लगता है, और जो लोग घर पे हैं और जो लगता है कि उन्हें कुछ पार्ट टाइम करना है, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा जो है करियर का ऑप्शन बन सकता है और खुशी का भी टाइम हो सकता है। तो इसीलिए आप इस पर, अगर आप घर पे हैं और पार्ट टाइम जॉब की सोच रहे हैं, तो ये जो है बहुत ही अच्छा आपका करियर ऑप्शन हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा टाइम, खुशी वाला जो है टाइम हो सकता है आपका, तो आप इस पर जरूर काम कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जाते जाते बीके अर्चना जी को मैं कहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें सभी के लिए। जी,
1: मैसेज तो यही है कि जो मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है कि जब हम खुद स्ट्रांग हैं तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सिचुएशंस में चेंज होके बहुत स्लोली ऐसे निकल जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। तो अपनी अपनी जो स्थिति है, स्वस्थिति अगर अच्छी है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं जाती है, बहुत कम रुई जैसा निकल जाता है वो ना।
0: बिल्कुल,
1: ये मैसेज देना चाहूंगी। तो हमें खुद को ही स्ट्रांग करना है, और खुद को स्ट्रांग करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आना एक बहुत बड़ा पार्ट होता है लाइफ का।
0: बिल्कुल,
1: मतलब अगर हमें 100% अंदर से हैप्पीनेस को फील करना है तो एक बार एक्सपीरियंस करके जरूर देखें।
0: बीके अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि जिस चीज को करने से हमें खुशी मिलती है उन चीजों को जरूर करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए और फिर उसके बाद उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हमने प्राइमरी एकदम किंडर गार्डन या फिर क्या है LKG या फिर सीनियर जूनियर बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने की बात हमने की, और ड्रॉप आउट बच्चों के भी स्कूल या उनको फिर से जो है एक चार चार महीने का, छह छह महीने का NGO जो है अपने संस्था में उनको रखकर उनको ट्रेन करते हैं और फिर वापस उनकी जो है टेस्ट करके उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में स्कूल से जोड़ा जाता है। तो राजस्थान में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिन्हें हम जानते हैं, प्रधान एक संस्थान है, दूसरा दशक एक संस्थान है, और अजिम जी प्रेम जी का एक फाउंडेशन है। ये सारे लोग ड्रॉप आउट बच्चों के लिए काम करते हैं जिनका स्कूल छूटा हुआ है, तो वो ऐसे ही बच्चों को ढूंढते हैं और फिर उनका टारगेट रहता है कि हर चार महीने का एक एक ग्रुप बनाए, तो 50-100 बच्चों का वो लिस्टिंग करते हैं, जो बच्चे मिल जाते हैं उनके माता पिता से बकायदा लिखावट करके फिर वो बच्चों को अपने पास रखते हैं और फिर उन्हें कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको पूरा ही मना एजुकेशन देते हैं, ऑलराउंड एजुकेशन देते हैं कि समाज में कैसे काम होता है, आप क्यों पढ़ना है, आपको इस तरह की बातें समझा कर उन्हें फिर से उनका एग्जाम्स लेकर फिर उन्हें जो है उनकी जहां तक उनकी IQ है EQ है उस अनुसार जो है फिर उनको मेन स्ट्रीम में वापस जोड़ते हैं और 10th एंड 12th तक जो है वो फॉलो अप भी करते हैं ताकि बच्चों का लाइफ बन सके। तो ऐसे बहुत सारे NGOs हैं जहां पर आप जुड़ के अपने करियर को भी एक नया मुकाम दे सकते हैं और साथ ही साथ आप किसी को किसी का जीवन बदलने में, किसी का जीवन बनाने में आपको एक बहुत बड़ा जो है आपका सहयोग होता है। तो इस तरह का काम है ये। मैं चाहूंगा कि आपका अगर एजुकेशन में खास कुछ अलग करना है तो ऐसे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए काम जरूर कीजिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार अर्चना जी को ढेर सारी खुशी, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, कुछ नई बातें, कुछ नए ट्रेड के बारे में, कुछ नई यात्रा के बारे में आपसे जरूर बात करेंगे। और आशा करूंगा कि आज हमने एजुकेशन के साथ साथ दुबई की यात्रा भी अर्चना जी से किया है, तो अच्छा लगा होगा आपको, है ना। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं, सलाम नमस्ते, हवा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, बस कराते रहो।

0: को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल, हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिड़के बोलना है, कुछ भी हुआ चिड़के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं मीता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नई कटाहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई

0: create it when, wherever, and for however long I want. So then it's my choice. So now it's your choice. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, create it.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज़ 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को एक नए अंदाज से देखते आ रहे हैं हम, और हमने ये जाना कि वही रिश्ते जो कई बार बोझ लगने लगते थे, लगता था कि अरे ये रिश्ता कैसे निभेगा, अगर खुद को पहचान के फिर इस रिश्ते को देखा तो लगा कि यही रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी एक रिश्ता बाकी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और वो है रिश्ता मेरा खुद अपने आप से और परमात्मा से, जिसे मैं आज तक तलाश रहा था और आज खुद उसने अपनी पहचान दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हमने हर रिश्ते को नए अंदाज में देख लिया, उसे अच्छी तरह से जाना और फिर देखा कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है, और हर बार की तरह एक्सपीरियंस के बाद ही हम ये बात कहने लायक बनते हैं। अभी भी एक रिश्ता बाकी है और वो मेरा खुद से। अपनी पहचान तो मैंने कर ली, परमात्मा से पहचान भी हो गई, लेकिन वो रिश्ता मैंने अपने आप से कायम किया या परमात्मा से कायम किया, वो रिश्ता कैसा होना चाहिए?
1: किसी भी रिश्ते को बनाने में इनिशियल स्टेजेस में चाहिए होता है समय। हम कहते हैं रिश्ते की फाउंडेशन है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लेकिन ये भी जो डेवलप होती है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम बिकॉज आई वर्क ऑन द रिलेशनशिप। जितना मैं आपसे मिलते जाऊं, आपके संपर्क में आऊं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो वो ट्रस्ट डेवलप होता है या वो रिस्पेक्ट जिस लेवल पर चाहिए वो डेवलप होती है। लेकिन आज के वर्तमान भाग दौड़ के समय पर हम औरों के लिए तो सबके लिए समय निकाल देते हैं, दोस्तों के लिए, परिवार, कोलीग्स, एवरीबडी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी टाइम और एनर्जी इतनी फिनिश हो जाती कि हम कहते हैं अपने लिए समय निकालना। सो इफ वी आस्क एनीबडी कि आप रोज सवेरे अपने लिए 15 मिनट निकालिए, जिसमें आप सिर्फ अपने आप के साथ हैं और आप उस परमात्मा के साथ हैं, एंड दैट टू अर्ली मॉर्निंग, जब आपके बाकी सारे रिश्ते सोए हुए हैं। क्योंकि जैसे ही आपके सारे रिश्ते बाकी जाग जाएंगे, यू विल अगेन गेट इनटू दैट एनर्जी एक्सचेंज, व्हिच इज ओके, व्हिच इज फाइन, लेकिन उससे पहले 15 मिनट फॉर दैट वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप क्या हम निकालने के लिए रेडी है। तो जनरली पीपल विल इमिजिएट, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, टाइम नियम।
0: अच्छा, और यहाँ एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि हम यूजुअली ये समझते हैं कि मैं सबको वक्त दे रहा हूँ, अपने को वक्त नहीं दे रहा, तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ।
1: दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि हम समझते हैं अपने को वक्त देना,
0: आई एम सो सेल्फलेस, आई डोंट इवन बॉदर अबाउट माई सेल्फ, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर अदर्स, बट आई थिंक समवेयर वी फॉरगेट।
1: एब्सोल्युटली। एक हम साइकाइट्रिस्ट से मिले, जो बहुत सीनियर लेवल के साइकाइट्रिस्ट हैं, जो लोगों के स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीजों को ट्रीट करते हैं, लेकिन कहीं उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि वो खुद बहुत तनाव में है। तो उनसे बात करते हुए हमने कहा कि व्हाई डोंट यू टेक आउट 15 मिनट्स फॉर योरसेल्फ एवरी डे। सो ही सेड 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, नो सिस्टर, आई हैव नो टाइम, एंड ही वॉज वेरी proud of this, ke I do not have 15 minutes,
0: I give all my time to others,
1: to everybody, kyunki mujhe dusron ko heal karna hai, and he said like 14 ghante mere apne profession mein jaate hain, my work is my top priority, to 14 ghante mere din mein uske liye hote hain, baki commuting, travel time।

0: और जो थोड़े से 2-3 घंटे बच जाते हैं वो मेरे परिवार के लिए होते हैं। तो अब इस हद में अपने लिए समय निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो आप कुछ और बताइए, लेकिन मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता बिकॉज माई टाइम इज फॉर एवरीबडी। तो हमने कहा प्रायोरिटी इन लाइफ क्या है, वर्क, फैमिली एंड देन सेल्फ, एंड दिस हैज बिकम प्रायोरिटी फॉर मेजोरिटी पीपल, यू नो, सभी जो वर्किंग लोग हैं, काम, वर्क प्लेस, फिर परिवार और फिर हम खुद। और ये दोनों कैटेगरीज परिवार एंड वर्क प्लेस इतनी सारी टाइम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कि थर्ड स्टेप तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, हम बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। सो नाउ ईच वन नीड्स टू आस्क देमसेल्व्स कि वर्क, फैमिली, सेल्फ, इज दिस द राइट ऑर्डर, एंड एवरीवन फील्स दिस इज द राइट ऑर्डर बिकॉज दे से आई गेट पेड एट वर्क, यू नो, तो मेरा कर्म मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर मेरी फैमिली, यू नो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। वी वुड फील विद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वी कम टू दिस कंक्लूजन कि इट शुड बी टोटली द अदर वे अराउंड, क्योंकि काम पे भी हम क्यों जाते हैं, अपने परिवार के लिए, उन्हीं के लिए वो खुशियां, वो सब कम्फर्ट जो भी हमें लाने हैं उसके लिए हम काम पे जाते हैं, तो काम से ऊपर एक्चुअली
1: परिवार
0: है, डेफिनेटली, नहीं तो मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है। अब परिवार को भी मुझे जो देना है, खुशी, सुख, शांति, वो मैं तब दे पाऊंगी जब वो मेरे अंदर भरी होगी, तो फिर परिवार से भी ऊपर हो गया माई सेल्फ। नाउ व्हेन आई पुट द इक्वेशन द अदर वे अराउंड, वर्क, फैमिली, सेल्फ, तो सेल्फ के लिए समय नहीं निकाला, इंटरनल रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब है, कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट की हालत में सुबह सुबह परिवार के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो भी क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, टाइम नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर हम ऑफिस पहुंच जाते हैं और वो एनर्जी लेवल हम ऑफिस में कैरी करते हैं और वो हम सभी को ट्रांसमिट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग आउट टाइम फॉर माई सेल्फ उसका असर परिवार पे भी पड़ा और वर्क पे भी पढ़ा, तो ये कहना कि ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है इज नॉट फेयर, क्योंकि हम उसके साथ भी चीटिंग कर रहे हैं, वी आर ओनली गिविंग नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो हमारी गलती भी नहीं है, वो हमारे पास है। नाउ इफ आई चेंज द ऑर्डर एंड आई से सेल्फ, फैमिली एंड देन वर्क, यू नो, सेल्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट्स टॉप ऑन द,
1: क्योंकि आई थिंक बाकी दोनों चीजें सेल्फ पे डिपेंडेंट,
0: सेल्फ पे डिपेंडेंट है, लेकिन सेल्फ जब हील्ड होगी, अंदर से बिल्कुल भरपूर होगी, उस आत्मा के रिलेशनशिप्स कैसे होंगे परिवार में, वेरी हेल्दी, और एक हेल्दी फैमिली को छोड़कर जब आप काम पर जाएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, यू विल बी टोटली एम्पावर्ड टू गिव एवरीथिंग टू वर्क, तो यू विल बी डूइंग जस्टिस टू ऑल थ्री, रादर राइट नाउ वी आर चीटिंग ऑल थ्री बाई सेइंग आई डोंट हैव टाइम। तो अपने लिए समय निकालना, वी शुड रिमेम्बर दैट आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, because unless I am healed I cannot do anything,
1: I cannot achieve anything, that's very true.
0: Main kuch bhi
1: nahi, I have met people, ek social organization mein main thi, they said ki hum new year resolutions ki baat kar rahe the, so almost everybody was saying ki main logon ke liye help karunga, main itne logon ko introduce karunga iske bare mein, lekin finally I think kyunki hum khud ही हील्स नहीं है तो हम लोगों को क्या बता सकते हैं,
0: क्योंकि आज जो सबको चाहिए वो ये चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, ये सबको चाहिए, और ये सबको देने के लिए मेरे अंदर खुद कुट कुट के भरी होनी चाहिए, और उसके लिए मुझे चाहिए अपने आप से बहुत अच्छा संबंध, और इन सबका जो सागर है, जो स्रोत है, निराकार परमात्मा जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, तो उसके साथ जब संबंध जुड़ जाता है तो जो उसके पास है वो ऑटोमेटिकली सब मेरा हो जाता है, सो आई गेट फिल्ड इन साइड एंड देन आई एम एबल टू गिव टू एवरीबडी। अब जब हम अपने साथ संबंध जोड़ना शुरू करते हैं तब अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होता है,
1: खुद में विश्वास,
0: आज खुद में विश्वास नहीं है, आज हमारे खुद की रिस्पेक्ट हम नहीं करते हैं डेफिनेटली, और उसका प्रूफ यही है कि हमें औरों को रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और जब कोई और हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अगर सेल्फ एस्टीम बोई अंदर अगर खोखलापन है तो जैसे ही दूसरा कोई हमें छोटी सी ऐसी बात कहेगा तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूं और उस रिस्पेक्ट से अपने आप को देखते हैं कि आई एम नॉट व्हाट आई हैव अचीव्ड इन लाइफ बट आई एम व्हाट आई एम हियर इनसाइड, तो फिर कोई और मुझे हर्ट नहीं कर सकता, आई टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट, और ट्रस्ट मतलब मैं जो सोचूंगी
1: सही सोचूंगी
0: और वो ही बोलूंगी।

0: अगेन खुद से बात करना, यानी मैं अपने आप को, क्योंकि मैं देख तो पा रहा हूँ कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस में हम इतना है कि मैं अपनी बॉडी का एहसास तो है, परमात्मा वो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको हर बार मैं इमेजिन जरूर करूं जब मैं मेडिटेट कर रहा हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ये बातचीत है उसका जवाब मैं, मुझे लगता है कि क्या मुझे मिलेगा, और वो जो तलाशना है या वो जैसे कहा आपने कि वो कहीं वो विश्वास या वो रिश्ता, एक बार हमने पहले बात की थी कितनी देर लगेगी, तो आपने कहा था कि जहां पहचाना वहीं रिश्ता बन गया, लेकिन हाँ उसमें जो दृढ़ता है, सुदृढ़ता है, वो उसमें समय लग सकता है। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि किस आस्पेक्ट को लेके हम उस रिश्ते को और स्ट्रांग करें।
1: एक्चुअली जो समय लगता है वो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने में नहीं लगता, वो एक क्षण लगेगा। समय जो लगता है वो लगता है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाने में, क्योंकि अभी हम जब बैठते हैं याद करने या संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम अभी तक वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो शरीर के भान में जब होंगे तो शरीर से संबंधित सारी बातें याद आएंगी, मन उन्हीं की तरफ चलता रहेगा, तो हमें लगता है बट आई एम गिविंग टाइम, आई एम सिटिंग टू डू मेडिटेशन, तो क्यों नहीं मुझे अनुभव हो रहा। तो सेकेंड स्टेज पहले नहीं अचीव हो सकती है, पहले फर्स्ट स्टेज को करना पड़ेगा। तो इसलिए सोल कॉन्शियसनेस ये फर्स्ट स्टेप है, जब तक हम इसको नहीं ठीक से प्रैक्टिस करते हैं हमें थोड़ा सा समय लगेगा, अनुभव अभी भी होगा लेकिन हमें थोड़ा सा लगेगा कि आज तो लगा, यू नो मोस्टली पीपल फील आज तो बहुत अच्छी तरह से अनुभव हो रहा था, अब फिर अगले दिन फील करेंगे आज तो बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ, बिकॉज दैट डिपेंड्स मोर ऑन माई कॉन्शियसनेस कि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ या सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस अर्थात अपने आप को उस स्वरूप में अनुभव करके मैं आत्मा हूँ, वो आत्म स्वरूप में जब टिक गए, ताकि यहाँ की दुनिया की जो सारी बातें जो सारे संकल्प थे वो फुल स्टॉप, ये नहीं कि बैठे हैं मैं आत्मा हूँ वो आज क्या बोला उन्होंने ऐसे क्यों बोला, नहीं मैं आत्मा हूँ मैं शांत स्वरूप हूँ,
0: कि वहाँ ये हुआ वहाँ से वो हो गया, यू कम बैक, नहीं मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, फिर अगेन
1: यू आर गोइंग ऑन द सीसो, मैं आत्मा हूँ लेकिन ऑफिस में क्या हुआ, मैं आत्मा हूँ लेकिन मेरे बच्चों ने ऐसे क्यों कहा, सो यू नॉट रियली सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियस मतलब फिर उसको आत्मा के अलावा और कोई संकल्प नहीं आएगा, आत्मा के स्वरूप के अनुभव के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो मॉर्निंग में जब हम बैठते हैं इसका अनुभव करें, इसका प्रैक्टिस करें, लेकिन उसको सिर्फ मॉर्निंग तक नहीं रिस्ट्रिक्ट करें, उसको सारा दिन हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारा दिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो उसी के इम्प्रेशंस बनते जाएंगे। सी दिस इज लाइक अ शूटिंग विच इज टेकिंग प्लेस द होल डे, कि सारा दिन हरेक को मिले, हरेक संकल्प क्रिएट किया, संकल्प किया कर्म में आया, कर्म का इम्पैक्ट रिकॉर्ड होता गया। अब जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो सारी सीडी जो रिकॉर्ड हुई होती है वो प्ले करती है ना? अब अगर सीडी में सारे बॉडीली रिलेशंस, बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें वो ही रिकॉर्ड किए और फिर बैठ गए, सीडी प्ले हो गई, उसमें सारी वही बातें रिवाइंड हो रही है और हम बीच में बोल रहे हैं नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ, यू नो देन दैट कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर एंड देन आई विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट। तो इसलिए सारा दिन में एक कॉन्शियस अटेंशन रखना ये बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे फिर वो जब मॉर्निंग में हम बैठेंगे वो अनुभव बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोल कॉन्शियसनेस के थॉट्स सारा दिन में क्रिएट किए थे तो उसके इम्प्रेशंस वो सीडी में रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्योंकि जनरली जब भी हम साइलेंस में बैठते हैं ना ये सीडी रिवाइंड हो जाती है अपने आप और प्ले होनी शुरू हो जाती है, ब्लैंक नहीं रहता है। तो इसलिए सारा दिन में इस सीडी पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो सारा दिन कर्म करते, इसलिए हम कहते हैं हर एक घंटे में एक बार, हर एक घंटे में एक मिनट जो करें दैट्स फॉर दिस, कि बार बार रुके, अगेन रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं एक शक्ति हूँ, दिस इज माई क्वालिटी, पीस, प्योरिटी, नॉट एंगर, नॉट अग्रेशन, सो व्हाई एम आई यूजिंग इट, यू नो, बिकॉज हर क्षण जब हम इनको यूज कर देते हैं, गुस्से को, संशय को, झूठ, हर क्षण, तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, तो हमने कितनी लीकेज सारी कर दी, फिर कहे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो सिर्फ सोचने की बात नहीं लेकिन कर्म की क्वालिटी क्या है सारा दिन। क्योंकि अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मेरा सारा दिन रोल कैसा होना चाहिए,
0: शांति का,
1: तब हम कहेंगे कि रियली आप सोल कॉन्शियसनेस में सारा दिन कर्म

0: कर रहे थे, ये नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति, और फिर गुस्सा, फिर किसी के साथ कोई खिटपिट, नहीं। सोल कॉन्शियसनेस मतलब सोल की जो क्वालिटीज है उसको सारा दिन की एक्टिविटी में वो दिखाई देनी चाहिए। आई शुड एक्सपीरियंस दोज क्वालिटीज, देन आई एम इन दैट कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होगी वही तो कर्म में आएगा। डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की तरह बिहेव करूंगा, मदर हूँ मदर की तरह, आत्मा हूँ आत्मा की तरह। तो उसका कॉन्शियस अटेंशन रखेंगे तो मॉर्निंग में जब बैठेंगे वेरी सिंपल, और फिर परमात्मा से वो संबंध, क्योंकि परमात्मा के साथ जो संबंध है दैट इज सो ब्यूटिफुल, बिकॉज दैट्स द ओनली रिलेशनशिप जहां हमें अनकंडीशनल लव मिलता है, वो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड पूरा पूरा ट्रस्ट। ऐसा ट्रस्ट जो कभी टूटता नहीं है, जो दुनिया में बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि परमात्मा हर्ट नहीं होते, क्योंकि उन्हें हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो परमात्मा सिर्फ देते हैं देते हैं देते हैं, ही डजंट हैव एनीथिंग दैट ही नीड्स फ्रॉम अस। तो जब हमारा ऐसा कोई संबंध जुड़ता है जो हमें सिर्फ देता ही रहे देते रहे, और यही हम ढूंढ रहे थे कि किसके साथ मैं ये संबंध जोड़ू, माँ बाप के साथ जोड़ू, पत्नी के साथ, पति बच्चों के साथ, कौन ऐसा जुड़े जो मेरे को देता रहे, कोई दे नहीं पाया, तो फिर वो अंदर पेन आने लगा। जब वो मिल रहा है संबंध, फिर हम उसके लिए कह देते हैं टाइम नहीं है, दैट्स चीटिंग विद माई सेल्फ, यू नो द सोर्स इज देयर रेडी टू गिव एंड आई एम सेइंग आई डोंट हैव टाइम,
1: एंड अगेन रिलेशनशिप विद माई ओन सेल्फ, द इन रियलिटी हु एम आई, उसके साथ जो रिश्ता है। सिस्टर शिवानी, ये पूरा जो हमारा सफर रहा है रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने का, सचमुच बहुत सुंदर रहा है, और उसमें आज जो हमने एक बार फिर उस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है, मेडिटेशन एक्चुअली एक बहुत अहम हिस्सा है, वही फाउंडेशन है। सो हम थोड़ा सा उसमें फिर जाने की चाहें
0: कुछ क्षणों के लिए, हम वापस वही अभ्यास करेंगे कि मन संकल्प करेगा, इंटेलेक्ट बुद्धि उसका दृश्य निर्माण करेगी, विजुअलाइज करेगी, क्योंकि हम सीडी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट विल बी थॉट्स प्लस पिक्चर विजुअलाइजेशन, और जैसे ही वो विजुअलाइजेशन होंगे तब वो अनुभव ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। तीनों पर अटेंशन रख के देखे, एंड इफ सम अदर थॉट कम्स तो स्टॉप इट देन एंड देयर, उसको बैठने ना दे और उसकी तरफ ही ना झुक जाए कि हाँ अब तो मेरा लिंक टूट गया, नहीं, स्टॉप, कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स, क्योंकि हमारा मन हमारी बात मानता है, तो लेट्स गिव इट द इंस्ट्रक्शन देन। कुछ क्षणों के लिए अपने बाकी सभी संबंधों से किनारा करते हुए उस सबसे मीठे संबंध की तरफ ध्यान करें, अपने आप को देखें, सबको देखते हुए इतने व्यस्त हो चुके थे कि अपने आप को देखना ही भूल गए। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने आप को देखें, भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है, ये मैं हूं, मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूं, शांति मेरी अपनी नेचर है, शांति मेरा ही संस्कार है, शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रही है, मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से कुछ समय के लिए किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप

0: that point of light traveling upwards. ऊपर जा रहा है इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ, उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है, जस्ट पीस एवरीवेयर अराउंड मी, शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं, इतना प्यार देते जो मैं खुद से प्यार करने लग जाती हूँ, जो अपने आप को पहचानना शुरू कर देती हूँ, अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं, कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है, जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए, भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है, सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः इस दुनिया की तरफ आ रही हूँ, इस कर्म क्षेत्र पर अपने कॉस्ट्यूम में धीरे धीरे पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाती हूँ, लेकिन स्मृति के साथ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ और मैं किसकी हूँ, ओम शांति,
1: ओम शांति। सुशी शिवानी, ये जो अनुभव आज हमने किया और खुद से कैसा रिश्ता बने और परमात्मा या शिव बाबा से रिश्ता कैसे बनाए, ये पूरा एक ऐसी जर्नी है, कैसा अनुभव है, सचमुच अनुभव ही किया जाना चाहिए। पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम शांति। रिश्ते हम बाकी आत्माओं के साथ जब भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज होता है, लेकिन जब हम खुद से बना रहे हैं तो एक नया एस्पेक्ट सामने आता है, और जब हम उस परमपिता परमात्मा से बनाते हैं, उस शिव बाबा से बनाते हैं, तो हम सब कुछ उससे ले रहे हैं। एक एक्सचेंज न होकर यहाँ ऐसा लगता है कि हमें मिल रहा है, तो क्यों ना इस रिश्ते को सबसे अधिक मजबूत करें। रिश्तों को नई पहचान देने का ये प्रयास। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999 3 4 4 6 9 8 7 3 6 6 5 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इस पूरी श्रृंखला में हमने रिश्तों को नई पहचान दी है और एक खूबसूरत मोड़ देकर आगे चलना सीखा है। आगे और भी बहुत सी बातें होंगी, फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। ओम शांति।
2: ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजयोग मेडिटेशन प्रत्येक सेवा केंद्र पर निःशुल्क सिखाया जाता है। यह कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे

है। भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 09993445 09993446 और 09873666555। आप ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है om shanti studio@gmail.com।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोर सरसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

है।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यान पिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपलं पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: नमस्कार अँड अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज. विचार हमारे मन में ही उपजते हैं. कौन से वो विचार होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, और कुछ विचार ऐसे हैं जो हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जाते हैं. जरूरत इस बात की है कि जो विचार हमें गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं या फिर नेगेटिव हैं, उन्हें एक मोड़ पर या जब एहसास हो तभी एक अलग राह पर लेकर मोड़ देना चाहिए और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का सहारा लेना चाहिए. ऐसे में मेडिटेशन काम आती है, क्योंकि यही विचार, यही जो थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हमारे पास हैं, ये हमारी डेस्टिनी तय करते हैं. तो आज एक बार फिर इसी बात पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से अपने विचारों को मोड़ने का ये सफर हम तय कर सकते हैं. और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल. डॉक्टर साहब, आपका स्वागत.
2: नमस्कार.
1: नमस्कार. और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका भी स्वागत.
3: ओम शांति.
1: ओम शांति. डॉक्टर पटेल, अगर हम पीछे देखें तो आपने कहा था कि जो विचार कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं, उन्हें मोड़ना जरूरी है.
2: तो अनावश्यक भी है, सिर्फ नेगेटिव न भी हो, अनावश्यक है उसे भी मोड़ना.
1: हाँ, जो जरूरी ही नहीं है. और हम ये भी कहते हैं कि एक मिनट में अगर हमने लगाम नहीं लगाई तो विचार जो है वो एक मिनट में 25 से 30 विचार जो आ जाते हैं, तो मतलब अगर हम देखें तो दिन में जागते हुए. अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से ये बात आती है, सोते वक्त भी विचार आते हैं?
2: स्वप्न में आते ही है ना.
1: हाँ, तो सोते हुए भी विचार, उनको भी क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं?
2: वो भी कर सकते हैं. इससे बहुत ही अच्छी बात है कि क्या करना चाहिए. किसी के भी स्वप्न आते हैं, चलो स्वप्न आते कोई बात नहीं, परंतु इतने सजग हो जाओ. हम जागृति की भी बात कर रहे थे कि भी इतनी अवेयरनेस आ जाए, और आप सो रहे लेकिन अगर जागृति के साथ सो रहे तो ये भी आपको पता चल जाए कि ये स्वप्न आ रहा है, तो भी आपका कल्याण हो गया.
1: बहुत अच्छा.
2: ये पता ही नहीं होता कि मुझे स्वप्न आ रहा है.
1: बहुत, मतलब अपने ऊपर काम करना कितना इंटरेस्टिंग है. हम अपने दर्शकों से ये कहेंगे कि हम मैथमेटिक्स के जो सवाल हैं वो करते हैं, कितनी मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं,
3: क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करते हैं,
1: और कितना इंटरेस्टिंग होता है, कितना मजा आता है. तो ये खुद को सॉल्व कर रहे हैं. जो मैं एक पहेली हूँ उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. और जो विचारों को चेंज करने की बात है वो भी एक टेक्निक है. आपने पिछली बार कहा था कि 5 स्टेप्स पे काम करके, जैसे स्टेप्स, जिसको मैथमेटिक्स का बहुत इंटरेस्ट है, हर स्टेप जो है वो सही होना चाहिए, तभी आंसर सही निकलेगा. तो 5 स्टेप्स इफ आई रिमेम्बर करेक्टली वो ये थे, विचारों को अगर हमें मोड़ना है. पहला, सजग हो जाना, अवेयर होना कि विचार है या कौन सा विचार चल रहा है. सेकेंड होता है उन्हें कैच करना कि क्या वो नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो थर्ड पॉइंट आता है अंडरलाइन करना, उनका वो एहसास उसे बता देना, वो शब्द भी हो सकता है आपने कहा था. और फोर्थ होता है स्टॉप करना, उस विचार को रोकना. एंड देन फिफ्थ इज ट्रांसफॉर्मेशन.
2: वेरी गुड.
1: चलिए, ये तो मुझे याद रहा, लेकिन अवेयरनेस, जो सजगता की बात है कि हमने कोशिश ये की थी कि सजग कैसे होना है. एक एक्सरसाइज ये भी थी कि सिर्फ वॉच करना है, वो अभी भी उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सजग नहीं हो पा रहे हैं हम. तो कुछ और ज्यादा डिटेल में बताएंगे डॉक्टर पटेल और सिस्टर शिवानी.
2: सिंपल चीज तो ये करो कि भी समय निकालो. मैंने कहा था कम से कम 15 मिनट का समय जरूर निकालो.
1: बिल्कुल, जैसे आपने कहा क्रॉसवर्ड के लिए हम 2 घंटे निकाल लेंगे.
3: सुडोकू खेलते हैं आजकल. हाँ. कितनी देर लगाते हैं उस पर, है ना. और क्रॉसवर्ड या कुछ भी ऐसा लेकर हम बैठ जाएं तो हम कितनी देर बैठे रहेंगे जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो लाइक दैट, वाई डू वी गिव अप ऑन आर सेल्व सो फास्ट. हम क्या करते हैं, ज्यादातर 5 मिनट बैठे, नहीं हो रहा, उठ जाओ, यू नो, अपने ऊपर बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. सो इट विल टेक लिटिल टाइम.
1: डॉक्टर साहब, वेल, सिस्टर शिवानी, ये जो आपने कहा कि हम अपने ऊपर वक्त, अपने को वक्त नहीं देते, कितनी सारी चीजों को और वक्त देते हैं. एक मेल यहाँ मैं आपको चाहूंगी, क्योंकि इतनी सारे मेल्स आ रहे हैं, इतने इंस्पायरिंग मेल्स हैं. एक ये लड़की है हमारी जो दर्शक है, अंकिता माहेश्वरी, छोटी सी हमारी ये एक दर्शक है, 17 ईयर ओल्ड है, बैंगलोर से इन्होंने लिखा है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है. और इनका इन्होंने लिखा है कि बीन वॉचिंग योर प्रोग्राम फॉर लास्ट 3 मंथ्स and I'm highly influenced by it. Your rational and logical approach is very impressive and I strongly appreciate your stupendous program. What she says actually, which is more inspiring for us, is that the problem I faced earlier was inferiority complex, so-called depression, sometimes negative thoughts and many more. I was simply hopeless. It's 2 months since I'm doing meditation. Believe me, I feel so good. That's amazing. 17-year-old. Agar hum peeche yaad kare to ek 16 saal ki ladki ka humne ye kiya tha ki pata hi nahi chala kyun suicide usne commit kiya. And we have another young girl inspiring, you know, like such an inspiring email, and what she writes in the end is like very good. I would like to tell all the viewers. She says, I would like to thank you all for my life which has become this beautiful again. See, life is beautiful. We all feel that life is beautiful. Thank you, Ankita, and we are really thankful to you. We wish you all the best. Lekin,
2: aur bhi example hai sir.
1: Bahut sare aise names aaye hain.
2: Ahmedabad mein mujhe ek behan mili thi. Usse bhi jeevan mein financial problem bhi the. Unke pati ko job nahi karte the. Do betiyon ko sambhalna tha. We were from a very good family. To isliye ye bhi nahi keh sakte ki bhi hum bahut gareeb hai. Aur usko dono cheeze maintain karni thi. To she

0: टू क्राई इवन। उसकी बेटी है, उसने कहीं बार कहा कि मम्मी तुम तो नींद में रो रही थी बहुत बार, शी वॉज रियली डिप्रेस्ड। लेकिन जब राजयोग सेंटर पे आई तो नाउ शी इज डांसिंग।
1: यही दिस इज व्हाट इट इज
0: एंड हाउ इट हैपेंड डू यू नो, कि मैं अहमदाबाद गया था वहां पर तो भागती भागती मेरे पास आई, उसने कहा आप डॉक्टर गिरीश पटेल? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा नहीं, मैंने आपका प्रोग्राम देखा था और प्रोग्राम से मैं सेंटर पर आई। कहते भी हम तो फाइनेंशियल इतने क्राइसिस है हमको, परंतु बहुत अच्छी बात ये प्रोग्राम में हुई कि आप लोगों ने यह कहा कि यह कोर्स विनामूल्य है। तो कहते उसी से मुझे इंटरेस्ट हो गया। और उसने पता है कहाँ से, उसने आस्क मी सर्विस से ब्रह्मा कुमारी इसका फोन नंबर भी फाइंड आउट किया एंड शी स्टार्टेड गोइंग रेगुलर।
1: इफ यू वांट टू डू इट, लाइक आपको कहीं भी कोई, फिर एक बार जब रास्ता होता है तो मिल ही जाता है अगर आपको ढूंढना है। और ये बात की लाइफ इज ब्यूटिफुल अगेन
2: अगेन, वर्ड इज वेरी इम्पोर्टेंट।
1: आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय इट कि लाइफ इज ऑलरेडी ब्यूटिफुल। एक फेज, एक जिंदगी ऐसी जीते जीते हम सोते हुए गुजार देते हैं। मतलब आज मैं भी ये कहने लग गई हूँ क्योंकि अवेयरनेस और अवेकनिंग, जागरण जिसे हम कह रहे थे, पहले भी हमने बात की थी, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट।
0: यूथ इज द बेस्ट एज ऑल्सो, राइट एज।
1: वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑल्सो कि सही वक्त क्या है, हम इतने देर बाद जागे उसे जब पहले ही रास्ता जो तय कर रहे हैं तब कर लें। अगेन सजगता पे आते हैं कि विचारों की सजगता, कि ये तो इतनी जल्दी इन्होंने समझ लिया, ये कह रहे हैं 2 महीने में ये यहां तक पहुंच गई। उनको विचारों के प्रति सजग हो पाना, जो एक्सरसाइजेज आप कह रहे हैं कि दिन में अगर हम 15-20 मिनट भी निकाल लें, कौन सा सबसे सही वक्त होगा? आपसे पूछते हैं सबसे सुना,
2: अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले, क्योंकि जय सबसे पहले उठते हैं, यू नो, क्योंकि बिना बिल्कुल किसी से बात किए कोई भी और एक्टिविटी में गए, क्योंकि जितना एकदम तब माइंड एकदम साइलेंट होता है ना, एंड वी वांट टू कंसंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर थॉट। हम चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने का अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं। इट्स एन एक्सरसाइज। तो जब जैसे अगर हम एक्सरसाइज शाम को करें जब ऑलरेडी शरीर बहुत थका हुआ है, तो इट्स लिटिल टायरिंग। और अगर मॉर्निंग में करें जब शरीर एकदम फ्रेश है, सिमिलरली माइंड की एक्सरसाइज भी जब माइंड बिल्कुल फ्रेश है मॉर्निंग में, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ी सी एक्टिव, दिस इज फॉर इनिशियल, बाद में तो वंस आपको प्रैक्टिस हो जाए आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब बिना आपने किसी से बात नहीं की, अभी आपने न्यूज़पेपर नहीं देखा, आपने कुछ भी नहीं किया, टेलीविजन नहीं ऑन किया, तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी माइंड में नहीं है। जैसे ही मैंने बात करनी शुरू कर दी तो वो एक प्रोसेस साइकिल शुरू हो जाता है, या न्यूज़पेपर उठा लिया तो वी हैव गॉन इन टू अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। तो फर्स्ट उठते ही थोड़ा सा फ्रेश होकर आप बैठ जाइए और अपना स्थान एक अलग सा बना लीजिए। स्थान का भी बहुत महत्व है कि हमारा एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां हम, अगर पॉसिबल हो, इफ इट इज पॉसिबल, हम रोज उसी स्थान पर बैठकर मेडिटेशन करें उसी टाइम पर। यू नो, एक डिसिप्लिन। राजयोग ऑल्सो टीचर्स सेल्फ डिसिप्लिन। टुडे आवर लाइफ इज नॉट वेरी डिसिप्लिन। हमारा खाने का टाइम सेम नहीं है, सोने का टाइम, लेकिन मेडिटेशन करने का टाइम हम ट्राई करते हैं कि सेम रहे मॉर्निंग में, फ्रेश मॉर्निंग में, और स्पेस एक हो अलग से बैठे, क्योंकि धीरे धीरे उस स्थान के वाइब्रेशन बनते जाएंगे। जैसे मंदिर होता है तो मंदिर की एक अलग वाइब्रेशन होती है। तो आप देखो जब आप मंदिर जाते हो आपको प्योर थॉट्स क्रिएट करने में एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, वो नेचुरल है बिकॉज स्थान का। तो इसी तरह जब आप अपने घर में एक स्थान चूज करते हो और रोज उधर ही करते हैं, धीरे धीरे वो वाइब्रेशन, पहले आप वाइब्रेशन बनाएंगे और फिर वही वाइब्रेशन आपको बहुत जल्दी उस स्टेज तक पहुंचने में
1: फैला रहे हो,
2: राइट। तो एक ऑरा सा, यू नो, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है उस जगह में। अगर हम ऐसे रूम में बैठे जहां टेलीविजन चलता है तो फिर वो रूम का वाइब्रेशन इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि टीवी देखते समय ऑल काइंड ऑफ थॉट्स आर देयर, वायलेंस, नेगेटिव। तो प्रेफरेबली वो रूम नहीं, प्रेफरेबली वो रूम नहीं जहां हम जस्ट सोकर उठे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लोग सोकर उठकर बेड पर बैठ जाते हैं, यू नो, मेडिटेशन करने, तो वो फिर नींद आ जाती है क्योंकि उस स्थान की नींद के वाइब्रेशन है। तो या तो जहां आपका ऑलरेडी कहीं पूजा का स्थान बना है आप उस स्थान पर बैठ सकते हैं, या नेचर में अगर बैठें तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे बालकनी में, टेरेस पे, या फिर जो भी स्थान, क्योंकि हर एक के घर के भी। तो एक अर्ली मॉर्निंग टाइम बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस टाइम पर दो फैक्टर होते हैं, एक तो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश है एंड बाकी सब लोग अगर उस टाइम अभी भी डोमेंट अवस्था में है, यू नो, जितना जितने लोग जागते जाएंगे
1: उतनी हलचल होती है।

0: नहीं हलचल जैसे हम कहते हैं ना,
1: साइलेंस होगा।
0: हाँ मतलब इट्स एज सिंपल एज कि मुझे अगर ड्राइव करके कहीं जाना है तो आई से लेट्स गो एट 6 इन द मॉर्निंग, 6 बजे सुबह निकलेंगे, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हम जल्दी पहुंच, द जर्नी विल बी इजियर फॉर मी। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और लोग सड़क पर आते जाएंगे, मैं अटकता जाऊंगा रास्ते में। सेम थिंग, जैसे जैसे लोग जागते जाएंगे, थॉट्स वाइब्रेशन वायुमंडल में आते जाएंगे, और क्योंकि मेजोरिटी थॉट्स आज बहुत नेगेटिव और वेस्ट में है, तो देन दैट इज द एनवायरमेंट इन द हाउस एंड ओवरऑल। तो उस वायुमंडल में फिर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करना, इट्स स्टिल पॉसिबल, जस्ट गेट्स लिटिल टफर, जर्नी फिर भी पॉसिबल है। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उस टाइम उठकर बैठते हैं जब मेजोरिटी लोग अभी भी सोए हुए हैं, सो वी फिनिश आवर जर्नी एट दैट टाइम। तो मॉर्निंग का एक टाइम बहुत अच्छा है, एक इवनिंग टाइम जब आप सब कुछ अपना वाइंड अप कर लेते हैं, जिसको हम संध्या का समय भी कहते हैं ना, जस्ट बिफोर सनसेट, हम उस समय भी बैठे तो वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगता है, एंड देन बिफोर गोइंग टू स्लीप, क्योंकि बिफोर गोइंग टू स्लीप हमें सारा दिन की जो थॉट्स है उसको बिल्कुल यू नो डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड एनी अकाउंट, नहीं तो क्या होगा, जिस थॉट्स में हम सोते हैं अगले दिन सवेरे फर्स्ट डोमिनेंट थॉट वही आ जाता है, आज उसने मुझे ऐसा कहा था, ये हुआ, ये सोचते सोचते सो गए, कल सुबह उठते पहले उसी का चेहरा सामने आएगा। और फिर एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट होता है सुबह हमने सबसे पहले कौन सी थॉट क्रिएट की, वो हमारा पूरा दिन की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है। और उसी के लिए आज तक अभी तक दुनिया में लोग कहते हैं सुबह सुबह पता नहीं किसका चेहरा आज देखा था, यू नो, तो इट्स नॉट किसी का चेहरा, लेकिन ये मेरा जो मन है इसमें सुबह सुबह सबसे पहला
1: विचार
0: कौन सा आया था, वो मेरे दिन का फाउंडेशन है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल फर्स्ट थॉट कौन सी है, और कॉन्शियसली अगर थोड़े दिन के लिए अटेंशन रखे कि फर्स्ट थॉट परमात्मा से याद की हो, यू नो फॉर मी इट वुड बी गुड मॉर्निंग टू हिम by whatever name I call him for each one, लेकिन it's good morning to him, first thought, no other thought at all. तो जब दिन की शुरुआत परमात्मा की याद से होती है, it you know, फिर आपकी next thought भी अच्छी होगी।
1: Actually आपने पहली चीज समर्पित कर दी,
0: पहला
1: कर दिया।
0: It's like अभ्यास करते करते ये हो जाएगा ना कि सबसे पहले मुझे याद कौन आता है,
1: first thing in the morning।
0: ये एक बहुत बड़ी चेकिंग होती है कि सबसे पहले मुझे याद कौन आता है, और वो ही फिर सारा दिन मेरे साथ चलेगा कि जब भी मुझे प्रॉब्लम कोई आती है, जब भी कोई बात, सबसे पहले मुझे याद कौन आता है। अभी पहले क्या होता था, सबसे पहले संबंध दोस्त सारे याद आते थे, उनसे मदद मांगते थे, फिर कोई हेल्प नहीं कर पाता था, फिर कहते हैं भगवान कोई हेल्प नहीं कर रहा, अब आप हेल्प करो। लेकिन जब गॉड के साथ परमात्मा के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप वो बने, फर्स्ट थॉट उसी को याद करते हैं, और फिर किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: मेडिकल रीजन भी है, कहते हैं शरीर में जो हार्मोन्स हैं, हमारे दो प्रकार के हार्मोन हैं, एक तो अच्छे हार्मोन और दूसरे बुरे हार्मोन। जैसे कॉर्टिसोल एक बुरा हार्मोन है, तो ये कॉर्टिसोल का लेवल सबसे ज्यादा होता है, डबल होता है सवेरे,
1: अच्छा मॉर्निंग में,
2: हाँ, और आफ्टरनून में आप लो तो उससे आधा होगा। तो उस समय ये जो बुरा हार्मोन है उसे भी कम करने की जरूरत है। तो सवेरे सवेरे उठ के थोड़ा आप ऐसे अवेयरनेस करो, मेडिटेशन करो, तो उसको आप कम कर सकेंगे। कहेंगे सुबह शुगर भी सबसे लो होती है, फास्टिंग शुगर उस समय सबसे लोएस्ट है, तो उस समय भी आप ऐसे मेडिटेशन करो तो देन यू विल बी इन ट्यून विथ योर सेल्फ, अपने उसके साथ डील करना सीखेंगे। तो दिन में भी कभी शुगर लो हो तो यू आर एबल टू डील विथ इट प्रॉपरली।
0: क्रिएटिविटी भी कहते हैं ना, उस टाइम पर बहुत अच्छी होती है,
1: और एब्जॉर्ब करने की पावर, आपने कहा था कि ब्लॉटिंग पेपर की।
0: और ज्यादातर हमने देखा है कि अगर कोई प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई यू नो वर्क से रिलेटेड डिसीजन है, कई बार सारा सारा दिन सोचते रहते हैं कि क्या इसके लिए करना चाहिए।
1: एक्चुअली कि स्लीप ओवर इट, इट मींस इट नेक्स्ट मॉर्निंग एक्चुअली।
0: व्हाई? बिकॉज स्लीप ओवर इट, बिकॉज मॉर्निंग जब आप उठेंगे वो एकदम क्लीन माइंड और इंटेलेक्ट के साथ, द सोल्यूशन इज जस्ट देयर
1: एंड क्लियर,
0: एब्सोल्युटली, इट कम्स लाइक दिस, प्रोवाइडेड आप उसको देख रहे हैं। सी अगेन, दैट्स इंट्यूशन क्या है। कई लोग कहते हैं ये बहुत क्रिएटिव है, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, यू नो इनको बहुत सारे ऐसे आइडियाज आते हैं, सबको आते हैं। I think everybody is creative. Everybody is creative. Everybody is intuitive. Intuition हर एक की work करती है, लेकिन हम में से majority के इतने ऊपर इतनी सारी layers हैं, you know, noise की और waste thoughts की, कि वो intuition वाली layer
2: ऊपर नहीं
0: आती ही नहीं है।

0: तो ये मॉर्निंग टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है. तो बहुत अनुभव है हम सबके कि मॉर्निंग में ऐसी कोई थॉट आ जाती है विच इज लाइक हम सोचते हैं पहले नहीं आइडिया आया ये वाला,
1: और सारे दिन के लिए हमें तैयार भी
0: कर एब्सोल्युटली फाउंडेशन.
1: सो अगेन पहले हमने शुरुआत सी विल अगेन कम डाउन टू दैट ओनली की शुरुआत हमें, क्योंकि अभी भी हम
0: और अगर उस टाइम आपको अवेयरनेस वाला प्रोसेस प्रैक्टिस करेंगे, सी अगेन लुक एट इट व्हेन इट्स द स्लोएस्ट, है ना, माइंड जब स्लोएस्ट स्पीड पर है तब उसको देखने की कोशिश करेंगे तो प्रोसेस विल बी सिंपलर.
1: सो वही
2: मोर डीपर इवन, जैसे अवेयरनेस क्यों, तो इसलिए क्योंकि अवेयरनेस से हम डीप जाना चाहते हैं, हमारी चेतना की गहराइयों में जाना चाहते हैं, वह भी अवेयरनेस से ही होगा.
0: और जो सुप्रा कॉन्शियस की बात थी कि जागने की, वो भी उसी समय ही मतलब अर्ली मॉर्निंग टाइम पे भी पॉसिबल है. लेकिन अर्ली मॉर्निंग की डेफिनेशन भी आज हम सब में मेजोरिटी के लिए चेंज हो गई है. तो व्हाट पर्टिकुलर टाइम,
2: जब सब सोए,
0: जब सब सोए.
1: तो जब अगर तभी मेडिटेशन करना चाहते हैं तो फिर तब क्या होगा,
0: अपने अपने टाइम इज बिटवीन 4 और 5.
1: ओके, 4 और 5
2: 1%
1: तो फिर उसके बाद ये इसके बाद कोई सो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता.
0: नहीं ऐसा हो
2: नहीं, अच्छा है ऐसा तो बेस्ट तो ये है
0: कि नहीं सोए उसके बाद, लेकिन डिपेंड दिनचर्या पे,
2: दिनचर्या पर थोड़ा सा लेकिन नहीं सोए तो बेस्ट है. फिर भले थोड़ा देरी से आफ्टरनून में शॉर्ट एक माइक्रो स्लीप भले ले लो
1: नैप लेके,
2: परंतु उस समय नहीं हो तो बेस्ट है.
1: वो आप
2: क्रिएटिव, आपने एक बार इंजन को स्टार्ट किया फिर से बंद किया फिर से स्टार्ट किया अच्छा नहीं.
1: तो 4 से 5 बजे के बीच या 5 से 5:30 थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली
2: लोग लोगों के लिए
1: 6 बजे तक तो लोग उठते हैं मैंने सुना है, क्योंकि काफी सारी तैयारियां करनी होती हैं. तो 5:30 तक अगर कई लोग मैंने देखा है जो व्यायाम के लिए जाते हैं, जो योगा के लिए जाते हैं, वो लोग 5:30-6 बजे एग्जैक्ट उठ के जाते हैं, वॉक करके आते हैं, फिर अपनी बाकी चीजें शुरू करते हैं. डॉक्टर साहब शिवानी बहन, अभी तक तो हमने ये तो बात कर ली कि सजगता के लिए सबसे अच्छा टाइम सुबह है, अगर हम सुबह करें या आपने कहा कि संध्या काल भी और खासकर सोते वक्त भी करें, एक पर्टिकुलर जगह तय कर लें कि ये एक्चुअली ये सब इतना आसान है, किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर जगह हम तय कर लें घर पे, वहां बैठ के शुरुआत करें परमात्मा से हेलो करके, नमस्कार करके या उन्हें याद करके, आगे क्या करें
0: जब बैठते हैं उस टाइम पर. तो डिपेंड्स हर एक किस प्रोसेस से उसको करते हैं. राजयोग में जो हम करते हैं, क्योंकि थॉट्स को चैनलाइज करना है, सबसे पहले तो अपने आप को रियलाइज कि अवेयरनेस भी कौन है जो मैं हूं, जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, कौन है जो मैं अपने आप को देखने की कोशिश कर रही हूं, तो क्या आंसर अंदर से निकलता है. जो हमने बात की कि ईगो है मैं को नहीं जानना, तो सेल्फ, अब ऑल दिस वी आर डूइंग ताकि हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़े, डिप्रेशन फिनिश्ड हो, हॉलोनेस फिनिश हो जाए, तो वो सब तब खत्म होगा जब वो मैं की अवेयरनेस होगी कि मैं कौन हूं. तो वो आइडेंटिटी को अपनी फिर से पहचानना कि हु एम आई एक्चुअली. तो शुरू में वी जस्ट गो थ्रू अ रिलैक्सेशन प्रोसेस, जैसे गिरीश भाई ने भी बताया कि शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दे, एकदम रिलैक्स
1: कर दे, अवेयर हो जाए,
0: एक एक बॉडी के हर एक पार्ट को फील करते हुए उससे डिटैच होते जाए. यू नो डिटैच इन द सेंस, जैसे सपोज ये हाथ मैंने पड़ा है यहाँ, बहुत देर ऐसे ही रखे अगर एक पोजीशन में, थोड़ी देर के बाद ऐसे लगता है कि ये है ही नहीं, ये है नहीं, बट इट्स स्टिल देयर. लेकिन जैसे ही उसकी तरफ फिर ध्यान जाएगा देन आई कैन फील इट्स देयर. तो इसलिए शरीर के एक एक अंग को उस तरह से फील करके फिर डिटैच होते जाए, एंड देन कम बैक टू दैट हु एम आई एक्चुअली, यू नो, एंड स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ. क्वेश्चन भी पूछते जाए, आंसर भी आता जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें थॉट से ही होनी है. द क्वेश्चन इज ऑल्सो अ थॉट, द आंसर इज ऑल्सो अ थॉट.
1: इट इज पार्ट ऑफ अवेयरनेस,
0: इट इज पार्ट ऑफ अवेयरनेस,
1: इट इज पार्ट ऑफ, ये सजगता का ही
2: नेक्स्ट स्टेप है सच. बहुत अच्छा स्टेप है जो शिवानी बहन बता रहे हैं, दैट इज अ नेक्स्ट स्टेप. सजगता कोई अगर हमें प्योर लाइक नो प्योर अवेयरनेस इफ यू आर टॉकिंग, तो उसमें कहते हैं भी रिलैक्स होने का भी नहीं सोचो, सिर्फ आप उसे ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बस उसी को साक्षी भाव से ऑब्जर्व करो. और साक्षी भाव से जैसे आप ऑब्जर्व करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक विचारों की गति कम होगी.
1: साक्षी भाव से हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, वही
2: जो कुछ भी
1: जो हो रहा है
0: माइंड में, जो हो रहा है
2: अभी, एक माइंड में बॉडी में भी कर सकते हैं वे शुरुआत, बॉडी में भी करना है तो करो, बॉडी में भी करो कि भाई आईब्रोज में क्या हो रहा है, आंखों में क्या हो रहा है, अंदर में क्या हो रहा है, जीभ है वहां क्या हो रहा है, शोल्डर्स में क्या हो रहा है, ऐसे. लेकिन एक डायरेक्शन डिसाइड करो पहले, वो डिफरेंट

0: एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि हमें बैठना तो वहाँ 20 मिनट है ना, 20 से 25 मिनट है, तो हम ये जो अवेयरनेस वाली बात है अपने बारे में, हम आंख में क्या जा रहा है, ये तो मुझे बहुत जल्दी पता चल गया।
1: जल्दी नहीं करना है ना, वो 20 मिनट में यहाँ से नीचे पहुँचना है, जल्दी नहीं करो, इवन 45 मिनट्स भी कहते हैं। कम से कम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम आपको टाइम देना है तो मिनिमम 15 मिनट्स, क्योंकि इट कैन बी लॉन्गर ऑल्सो, तब है ना क्या अभी फायदा। ये तो कहीं कहते ये तो बोरिंग एक्टिविटी है, क्या करना है हमको, परंतु इसका फायदा यह है कि आपके जो डीप रूटेड थॉट्स है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, चाहे डिप्रेशन न भी हो और भी आप में जेलसी क्रिएट कर रहे हैं और नेगेटिविटी ला रहे हैं, तो वह फिर आपको पता चल जाएंगे। जिसको कहेंगे कि हमारी गहराई में जो सबकॉन्शियस में है वह सरफेस पर आएंगे, उसी समय आएंगे कि आप यहाँ देख रहे क्या हो रहा है, तभी हो सकता है। क्योंकि मेरा दोस्त है ना, वो बहुत अपने आप को अहंकारी समझता है, मुझे उसको कुछ करना पड़ेगा, तो वो विचार क्यों आया था, अभी दूसरा कोई नहीं आया, क्योंकि डीप में था।
0: कई डीप रूटेड चीजें इमर्ज हो जाती हैं,
1: रूट कॉज भी इमर्ज हो
0: जाती है, तो फिर कभी कभी हमें लगने लगेगा कि ओहो मैं तो कितना नेगेटिव हूँ, दैट ऑल्सो हैपन्स,
1: कोई बात नहीं,
2: बट इट्स ओके। जैसे कहते हैं ना, होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू किया तो सारा वो निकल आएगा बाहर, दैट्स गुड, दैट्स अ साइन दैट इट्स ऑल कमिंग आउट,
1: हैपनिंग, पीपल स्टार्ट क्राइंग समटाइम्स,
0: कैथारसिस जो होता है,
1: वो हो सकता है, तो अच्छा एक्चुअली, वो बुरी साइन नहीं है कि आप अभी अपने आप को पहचानने लगे, जो ना कैच की बात है, अभी पहला था अवेयरनेस या वॉच, और फिर सेकंड है कैच,
0: और इसी में जो सारे विचार आते जाएंगे आपको फिर वापस उसी पे पहुंचना है,
1: आपको तो वही
0: कई बार कि भाई अब मैं गले तक पहुंचा था या मैं यहाँ कंधे तक पहुंचा था,
1: ठीक है, तो उसको मैंने देख लिया कि विचार आया, नहीं ठीक है,
0: फिर उसे क्या किया उस विचार,
1: अगर आपको थेरेपी करनी है तो लिख भी लो भले। मैं कई बार ये कहता हूँ कि सचमुच अभी थेरेपी के रूप में, हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात कर रहे थे, तो मैं कहता हूँ भले नोट भी कर लो, तो शायद आप भूल जाएंगे 20 मिनट में भी क्या आया था,
0: अच्छा ये विचार आया है,
1: भले नोट कर लो कोई बात नहीं, और फिर से मुझे इसी में आगे बढ़ना है।
0: ओ अच्छा,
1: तो फिर उसको कैच करने में आपको बहुत बड़ी मदद मिल सकेगी।
0: ओके, और आपने कहा कि कम से कम 5 दिन लगातार,
1: ज्यादा, एक मास करो
2: कम से कम,
0: अच्छा एक महीना सिर्फ यही एक्सरसाइज करते रहे,
1: तब ना रूट मिल गया तो आपके 50% विजय हो गई।
0: ओके,
1: रूट नहीं मिला, सारी जिंदगी कुछ भी करते रहो कोई फायदा नहीं।
0: और शुरू शुरू में लगेगा कि नहीं हो पा रहा हमसे, लेकिन हमें प्रैक्टिस करते जाने, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है डीप विद इन कि दिस इज फॉर द गुड, क्योंकि हमारे सामने वो लक्ष्य दिख रहा है कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचना है, अवेयरनेस से शुरुआत करके ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचना है। बहुत सुंदर, आज इनफैक्ट मेरे लिए भी एक बहुत अवेयरनेस की बात थी, मेरे लिए मुझे एक तरीका मिल गया, एक रास्ता मिल गया, बहुत से हमारे दर्शकों को ये रास्ता मिला होगा, हो सकता है मेडिटेशन के अलग अलग तरीके हों, सब कुछ एक पूरा हर तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं वो शामिल हैं, लेकिन ये खुद से बात करना, एक्चुअली खुद को पहचानना, अवेयर होना एक जरूरी एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ में, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग नाउ। सिस्टर शिवानी एंड डॉक्टर गिरीश पटेल, थैंक यू सो मच, और अगला कदम जो होगा वो कैच करने का होगा। ये आपने बताया तो है कि लिख लें, लेकिन कैच करना जरूरी हो जाएगा। एक जल्दी से रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है हमें। सुबह का समय अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संध्या के समय या फिर रात सोने से पहले एक जगह तय करेंगे, मंदिर या कोई भी ऐसी जगह जो लगता है हमें कि हम उसकी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कर सकते हैं और वो पॉजिटिव रहेंगे और हम हर रोज वहीं बैठ सकते हैं। कोशिश करके देखते हैं, आज से मैं और आप सब प्रयास करते हैं कि ये एक समय निश्चित करके हर रोज हम शेयर भी करेंगे, आपके ईमेल्स और फोन कॉल से हमें वो शेयरिंग जरूर मिलेगी, और उसके बाद कोशिश ये करनी है कोई भी तरीका अपना के कि 15 मिनट से अगर हम शुरू कर लें तो
1: ठीक है,
0: तो 15 मिनट से हम ये पूरे प्रोसेस को शुरू करेंगे, अपने ही बारे में जानेंगे कि यहां से लेके पांव तक क्या कुछ हो रहा है मेरे साथ, ये वॉच करेंगे। तो वॉच आप भी कीजिएगा, अपने आप को भी और इस प्रोग्राम को भी, क्योंकि हर कड़ी में हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अगली बार हम बात करेंगे कि कैसे कैच करना है, कैसे जो वो विचार जो नेगेटिव हैं जो हमें ट्रांसफॉर्म करने हैं उन्हें कैच करना है। तो अगर आपके पास कोई सवाल है या आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि आपने ये जो सजगता का प्रोसेस है ये शुरू किया है कि नहीं, आप हमें फोन पर या मेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर आज इस वादे के साथ एक दूसरे से कि ये प्रोसेस हम शुरू कर

करेंगे और जल्द ही हमें इसके जो अंजाम है, रिजल्ट्स हैं, ये भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अब दीजिए इजाजत, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी मुलाकात।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म।

0: करना. इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में. तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा. ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील के नथिंग इज इन माई कंट्रोल. सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: दिए किसी का मन न तोड़ो, देखो सुनो जाने को छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी
1: नारायण,

0: क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करो।

0: तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही, आप करें व्रत की तैयारी, भामा जी की रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वानरज जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचू, दासों के बाजार में बेचू। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी?

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां बिरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: क्रांतिकारी गुंडाधुर बस्तर में हुए भूमकाल आंदोलन के नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन में देश के हर प्रदेश से आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इन्हीं आदिवासियों में से एक थे बस्तर के क्रांतिकारी नायक गुंडाधुर। 19वीं सदी में भूमकाल विद्रोह बस्तर के लिए भूचाल साबित हुआ था। फिरंगियों द्वारा चलाए गए लंबे दमन चक्र ने आदिवासियों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था। इंद्रावती नदी के तट पर गुंडाधुर के नेतृत्व में माड़िया आदिवासियों ने सशस्त्र विद्रोह करने की ठानी और 29 मार्च 1910 की मध्यरात्रि को ब्रिटिश अधिकारी गेयर पर हमला कर दिया। इस हमले से अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए और उन्होंने विद्रोहियों के दमन की कार्यवाही शुरू कर दी। भूमकाल आंदोलन में हजारों की संख्या में आदिवासी शहीद हुए थे। आज भी बस्तर की भूमि का हर कण गुंडाधुर के पराक्रम की कहानी सुनाता है।

0: काका काका
1: क्यों रे छोटू? अरे लेट आने की आदत तो राजू की है, हैं? तुझे क्या हो गया, कहाँ रह गया था?
0: अरे काका तुम भी क्या याद करोगे, ऐसी खबर लाया हूँ।
1: अच्छा तो बताई दे बेटा जल्दी, और अब इस उम्र में मुझे तंग मत कर।
0: अरे काका पिछले चौराहे पे बड़ी गाड़ी देखी फिल्म वालों की, और तिरंगे लगे थे खूब सारे, कुछ 1857 जैसा पड़ा, तो मैंने पूछ लिया।
1: फिर क्या, फिर बात क्या है?
0: वो बोले भैया तू भी आ जाना शाम को, और ये कागज थमा दिया मुझे, अब आप ही पढ़ो, शायद वहाँ बड़े पर्दे पे दिखाएंगे कुछ।
1: ला ला इधर दे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का 150वां साल मनाया जा रहा है, उसी में रोड शो के तहत गांव गांव शहर शहर गली गली स्वतंत्रता संग्राम और गली फिल्में दिखाई जा रही है। अरे वाह। अरे पर छोटू

0: टाइम कितने बजे का बताया था उन्होंने?
1: हाँ, 6 बजे शुरू करने का बोला है, वही कॉलोनी के चौराहे पर। वो लोग एक बड़ा सा पर्दा भी लाए हैं साथ में।
0: चल चल, हम लोग जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, हैं? अभी 5 बजे बहुत टाइम है।
1: अरे आइए काका, नमस्ते।
2: राम राम बेटा।
3: अरे राम भरोसे काका, तो आप आ गए, छोटू ने बताया होगा है ना?
2: ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। उस दिन हॉल में देवी चौधरानी का नाटक देख के मजा आ गया था। और तुम लोगों का नाटक वाटक कैसा चल रहा है?
4: बस देख के बहुत अच्छा लग रहा है।
2: कम से कम आजकल के लड़के बच्चे उस पठान चीजों से हटकर कुछ और जान तो सकेंगे।
3: काका ये दादा है जिनके साथ हम नाटक करते हैं ना, वो?
1: हाँ काका, यहाँ सरकार की तरफ से आए हैं हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर बनी फिल्में लेकर, ताकि लोगों को कुछ जानकारियाँ दे सके।
3: अच्छा काका बैठो, अब बस शुरू ही होने वाली है पिक्चर, काफी लोग इकट्ठे हो गए, फिल्म के बाद चलते हैं आपके ढाबे चाय पीने।
2: और सर को जरूर लेके आना।
5: ये कहानी उस कालखंड की है जब रामायण का दंडकारण्य बस्तर बन चुका था। देश पर अंग्रेज राज कर रहे थे और खूब अत्याचार किए।
6: क्यों रे, कहाँ हो गया? भागो भाई भागो, सफेद घोड़ा में बैठ के 15 मन आवत है। उनके हाथ में कोड़ा है कोड़ा और आंखों में जुलम। अरे बाप रे, भागे चल चल चल।
3: सब बात गए।
7: नो सर, लुक, आई थिंक चौपाल के पास कोई खड़ा है।
3: ओह ये,
7: ओ मिस्टर, हु आर यू?
8: सॉरी सर,
7: इसको इंग्लिश नहीं आता है।
3: यू आर राइट,
7: कौन है तुम? सर ही इज नॉट आंसरिंग।
3: जवाब कैसे नहीं देगा इस कोरे के सामने?
7: सर लगता है वो मर गया, थिंक ही इज डेड।
3: जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसका यही हाल होगा। गियर, यू अंडरस्टूड?
7: यस सर।
3: चलो।
7: यस सर।

0: पी क्यों है रे?
1: क्यों माँ?
0: जब संभाग गए थे तो तुम्हें रुकने की क्या जरूरत?
2: हाँ माँ, वो तो अच्छा हुआ जो मैंने देख लिया, नहीं तो देखो ना मारा है फिरंगियों ने।
0: गुंडा सीधे ले जा बेटा, दवाई लगा दूँ।
3: तुम लोग नहीं समझोगे, हम भाग खड़े होते हैं इसलिए तो अंग्रेज हम पर हावी है।
0: क्या कह रहा है गुंडा?
3: हाँ माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। आज सुबह मुझे बाबा मिले थे, पता है क्या कह रहे थे?
2: क्या?
3: अत्याचार करने वाला और सहने वाला दोषी होते हैं। अगर हम अत्याचार सहना बंद कर दें तो इन अंग्रेजों की क्या मजा लेगी?
2: क्या कहना चाहता है गुंडा?
3: केवल दो अंग्रेजों को देखकर पूरा गांव भयभीत उठता है, कुछ सौ अंग्रेजों की टुकड़ियों को देखकर पूरा बस्तर कांप उठता है।
2: ये तो तू सही कह रहा है गुंडा।
3: तुम खुद सोचो डेवरी, हमारे इसी गांव में 100 से ज्यादा लोग और वो केवल दो। पूरे बस्तर में हम लाखों की संख्या में हैं और सामने कुछ सौ अंग्रेज, क्या तुम उनका सामना नहीं कर सकते?
2: जब तू बोलता है गुंडा तो ऐसा लगता है जैसे दंतेश्वरी माई बोल रही हूँ। तू एकदम ठीक कहता है गुंडा।
3: माँ जल्दी दवाई लगा दे ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, अभी बहुत से काम करने हैं।
0: हाँ बेटा, तू जल्दी ठीक हो जा, फिर तेरा ब्याह करा दूँ, फिर तू करते रहना सब काम।
3: नहीं माँ, मुझे नहीं करना ब्याह। ब्याह
0: क्यों?
3: मैंने ब्याह कर लिया है माँ।
0: किससे?
3: बस्तर की इस पावन माटी से माँ। जब तक ये आजाद नहीं हो जाता तब तक।
0: अरे देवरी, अब तू ही समझा बेटा, क्या बातें करता है ये, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता।
2: माँ वैसे ठीक ही कह रहा है गुंडा।
3: मेरा एक ही लक्ष्य है, इन फिरंगियों को मार भगाना। बस्तर की ये पावन माटी जिस दिन आजाद हो जाएगी मैं उसी दिन तिलक लगवाऊंगा।
2: माँ अब तू ज्यादा चिंता मत कर, जब तक कि मैं साथ हूँ गुंडा के, गुंडा को कुछ नहीं होने दूंगा।
0: भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे बेटा।
2: गुंडा तू तो आराम कर, जल्दी ठीक हो जा, फिर बात करेंगे। अच्छा माँ चलता हूँ, जोहार।
0: अरे अरे रुक डेवरी, खाना खा के जाना।
3: हाँ डेवरी रुक जा, अभी बहुत सारी बातें करनी है।
4: गुड इवनिंग सर।
5: गुड इवनिंग डियर। सो ऑली बहुत जल्दी आ गया।
4: जस्ट लाइक दैट सर, यू ही।
5: इनसे मिलो, ये है राजा रुद्र प्रताप, द किंग ऑफ बस्तर स्टेट।
4: गुड इवनिंग राजा रुद्र प्रताप।
6: गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हैव सम विस्की।
4: थैंक यू, ये विस्की बहुत अच्छा है।
6: ये बस्तर भी बहुत अच्छा है।
5: राजा रुद्र प्रताप, रानी सुबरन कहाँ है?
6: शहर पे गई, आती ही होंगी।
5: नजर रखना होगा उन पर।
6: क्यों तुम?
5: आज पूरा बस्तर में पहली बार कोई मेरा तरफ सर उठा के देखा है।
6: अजी आप चिंता ना करें, मैं उसे देख लूंगा।
5: उसका जरूरत नहीं, वो तो शायद मर गया होगा, इतना मारा है उसे।
6: आगे ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
5: आम यही चाहता है, आम ये भी चाहता है कि तुम रानी सुबरन पर नजर रखो।
6: जी ऐसा ही होगा, मैं आज ही रानी को भी नजर बंद कर देता हूँ।
5: बहुत अच्छा रुद्र प्रताप, हम तुमसे यही चाहता है, समय आने पर तुमको इसका इनाम दिया जाएगा। यू विल बी रिवॉर्डेड।
3: मेरी आवाज सुन रहे हो?
2: सुन रहा हूँ गुंडा, और सो भी रहा हूँ। तुम्हारी बात ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।
3: क्या सोच रहे हो?
2: सोच रहा हूँ कि अंग्रेजों के आने से ये जीवन नरक हो गया है, सबके चेहरे की रौनक न जाने कहाँ चली गई है।
3: इसका समाधान निकालना होगा डेवरी, कब तक इनका अत्याचार सहेंगे हम?
2: हाँ गुंडा,
1: इनके रहते ना जमीन हमारी है, ना ये जंगल, यहाँ तक कि गांव की बहन बेटियों की इज्जत भी।
3: यही ख्याल मुझे भी हो रहा है। कुछ ना कुछ समाधान तो।
1: कैसा समाधान?
3: यही तो मैं सोच रहा हूँ। क्या लाल साहब से मिलना उचित होगा?
1: हाँ, ये तो एकदम ठीक रहेगा गुंडा। और सुना है रानी सुबरन से भी उनकी कुछ मंत्रणा हो चुकी है। मैं एक बार उनसे मिल भी चुका हूँ। वो भी तुम्हारी तरह बात करते हैं गुंडा।
3: फिर तो ठीक रहेगा, तुम कल ही ले चलो उनके पास।
1: अरे रुक गुंडा, पहले चलने फिरने लायक तो हो जा, फिर चलते हैं हम।
3: ये ठीक रहेगा।
0: दरवाजा खोल बेटा, कहाँ खुसुर फुसुर कर रहे हो? खाना तैयार हो चुके हैं।
1: हाँ माँ।
3: माँ, तेरे हाथों में जादू है।
0: वो कैसे?
1: मैं बताता हूँ। एक तो तू खाना बहुत अच्छा बनाती है माँ, फिर जब अपने हाथों से खिलाती है तो उसका स्वाद दो गुना हो जाता है।
0: धत पागलो,
1: बात तो एकदम सही है माँ।

0: क्या बात है मुकुंद, ये तैयारियां किस बात की हो रही हैं?
1: क्यों, तुम्हें नहीं मालूम?
0: नहीं।
1: अरे आज इस मछमारा गांव का सौभाग्य समझो।
0: ऐसा क्या हो रहा है इस गांव में?
1: लाल साहब पधार रहे हैं और सुन, रानी सुबरन भी साथ आ रही हैं।
0: अच्छा, अहो भाग्य हमारे। पर इनके आने का मकसद?
1: मकसद तो बैठक होने

0: बाद ही पता चलेगा। वैसे और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं।
1: कौन कौन?
0: अब ये भी आने के बाद ही पता चलेगा। बस एक बात का ध्यान रखियो आज।
1: वो क्या?
0: इस बात की खबर किसी और को न लगने पाए। गुप्त मंत्रणा है ये।
1: हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूँगा।
2: मुकुंद, लाल साहब अभी तक नहीं आए, समय तो हो गया है।
0: आते ही होंगे। अरे वो देखो, कोई आ रहा है।
2: अरे हाँ, वो लाल वस्त्र पहने, लगता है वही लाल साहब है। साथ में एक पालकी भी है।
0: वो रानी सुगरन होंगी।
3: रानी माँ, लाल साहब, बैठक के बारे में सभी को बता दिया गया, अब आपके आदेश की प्रतीक्षा है।
4: पहले आप ही कहिए लाल साहब।
5: रानी माँ, पानी सर के ऊपर चला गया है, अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है।
4: ये मन छोटा करने का समय नहीं है लाल, ये अरण्य हमारा है, इसकी गोद में पले बढ़े हैं हम।
5: इसी की तो चिंता है रानी माँ।
3: रानी माँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
4: हाँ हाँ, कहो गुंडा, बेहिचक कहो।
3: रानी माँ, इन फिरंगियों के अत्याचार को देखकर खून खौलता है, मन होता है जला दूं इनको।
6: जी रानी माँ, गुंडा बिल्कुल ठीक कह रहा है।
3: रानी माँ, लाल साहब, हम सभी चाहते हैं कि एक भूमकाल हो, एक नई सुबह हो, नया दौर हो।
5: भूमकाल, नई सुबह, नया दौर, ये तो उत्तम है रानी साहब।
4: भूमकाल, विचार तो अच्छा है, लेकिन कैसे रचेंगे भूमकाल?
3: मैंने इसके बारे में सोचा है रानी, आप कहें तो।
4: निसंकोच कहो गुंडा।
3: सबसे पहले पूरे बस्तर में भूमकाल का संदेश देना होगा, योग्य युवाओं की एक फौज तैयार करनी होगी, फिर एक नियत तिथि को पूरे बस्तर में एक साथ होगा भूमकाल।
5: अवश्य होगा, अवश्य होगा भूमकाल। जय भूमकाल,
4: जय भूमकाल,
7: जय भूमकाल, जय भूमकाल।
0: ये असंभव है, गोरों के पास जादुई मशीनें हैं, इतनी बड़ी फौज है, उनके पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि पल भर में यहाँ की खबर लंदन पहुँच जाती है।
5: डराओ मत मुकुंद, भूमकाले किसी से नहीं डरता, क्यों गुंडा?
3: हाँ साहब, कैसा भय, किसका भय?
0: लेकिन हम संदेश कैसे देंगे, हमारे पास तो कोई मशीन भी नहीं है, और तो और बात खुल जाने का खतरा भी है।
3: हम गांव-गांव में घूम घूम कर लाल मिर्च और रोटियां बांटेंगे, ये लाल मिर्च और रोटियां प्रतीक होंगी भूमकाल की।
0: और जादुई मशीनों से लैस इस फिरंगी सेना का सामना कैसे करेंगे?
3: हर चीज को करने का एक तरीका होता है, हम मैदान में नहीं जंगलों में उनका सामना करेंगे, जंगलों में वो हमसे नहीं जीत सकते।
0: हाँ, बात तो ठीक है।
3: साथ ही हम पूरे बस्तर में एक साथ विद्रोह करेंगे, इससे अंग्रेजी सेना बढ़ जाएगी, उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं मिलेगा।
0: अंग्रेजों से हम जीत भी गए, चलो मान लिया, लेकिन राजा रुद्र प्रताप से कैसे निपटेंगे?
3: राजा रुद्र प्रताप, जगदलपुर के अलावा और कहीं अंग्रेजों की मदद नहीं कर पाएंगे, उनसे तो हम राजमहल में निपटेंगे। और रानी माँ, इसमें हमारी मदद करेंगी?
6: राजा रुद्र प्रताप ने बस्तर के शौर्य को कलंकित किया है, अगर मुझे मिल जाए तो।
3: नहीं देवरी, इस पर फैसला लेने का हक रानी माँ का है, हम उनके आदेश का पालन करेंगे।
5: रानी माँ, गुंडा ने हमें कुछ कहने ही नहीं दिया, सारा काम इसने आसानी से कर दिया।
4: सचमुच गुंडा ने सचमुच हमारा काम बहुत आसान कर दिया।
5: जी हाँ, तो क्या अब सभा समाप्त की जाए?
4: नहीं, अभी एक काम बाकी है। गुंडा इधर आओ।
3: हाँ रानी माँ।
4: आज मैं तुम्हारा अभिषेक करती हूँ, भूमकाल की कमान आज से तुम्हारे हाथ में है गुंडा, तुम गुंडा धूर नहीं।

0: गुंडा वीर हो, गुंडा वीर। जय भूमकाल,
1: जय भूमकाल,
0: जय गुंडा वीर,
1: जय गुंडा वीर, जय भूमकाल, जय गुंडा वीर।
2: मुखिया जी नमस्कार।
3: जोहार, जोहार बेटा। कहाँ से?
2: मैं डोंगर से हूँ, किसी खास काम से आया हूँ।
3: क्या काम बेटा, कहो।
2: मुखिया जी,
3: अरे कहो ना।
2: ये पोटली लेके आया हूँ।
3: क्या है इसमें?
2: लाल मिर्च और रोटियाँ।
3: अच्छा अच्छा, तुम गुंडा वीर के साथ ही हो, आओ अंदर आ जाओ बेटा। नहीं, यहाँ खुले में बात करना ठीक नहीं है। तो बेटा, फिर भूमकाल की तिथि क्या है?
2: भूमकाल की तिथि 6 जनवरी तय हुई है।
3: ठीक है बेटा, इस गांव की तरफ से निश्चिंत रहो।
2: आप अगले गांव तक यही संदेश पहुंचा दीजिए और उनसे विनती करिएगा कि वो लोग अगले गांव तक यही संदेश पहुंचा दें।
3: बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मैं ऐसा ही करूंगा।

0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा निशाना लगा रहे हो। अब एक काम करो, अब दौड़ते हुए तीर चलाने का प्रयास करो। हाँ ऐसे, बहुत अच्छा।
1: गांव गांव लाल मिर्च रोटी भेजना और युद्ध के लिए अभ्यास लगातार जारी है। इसी बीच एक शाम,
2: रानी साहिबा, गुंडा अभी तक नहीं आया।
3: चिंता नहीं करे लाल साहब, वो आ ही रहा होगा। गुंडा समय का पाबंद है, ज्यादा देर नहीं करेगा।
0: जोहार रानी माँ, जोहार लाल साहब।
3: जोहार गुंडा, जोहार। आओ, क्या खबर लाए हो?
0: पूरे बस्तर में संदेश भेजने का काम आज ही खत्म हुआ है रानी माँ, युद्ध का अभ्यास जारी है।
2: रानी माँ, महल की क्या खबर है?
3: महल में हजार विश्वस्त सैनिक मेरे साथ हैं।
2: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। नियत तिथि भी नजदीक आ ही गई है।
3: समय आ गया है कि हम अपना अपना मोर्चा संभाल लें।
2: हाँ गुंडा, केश काल में मैं रहूँगा, जगदलपुर में रानी साहिबा, इंद्रावती का पूरा तट तुम्हारा है, बाकी जगह कौन कौन रहेगा?
0: बच्चू पंडित और आए तू अबूझ बाढ़ को संभालेंगे, मुकुंद को माछ मारा और देवरी को दंतेवाड़ा की जिम्मेदारी दी जाए, कांकेर में बख्शी मूरत सिंह रहेंगे। आप लोग इजाजत दें तो आज ही इनको खबर कर देते हैं।
3: हाँ हाँ गुंडा, क्यों नहीं।
4: जय भूमकाली, जय दंतेश्वरी माई, जय बस्तर।
1: और वो दिन आ ही गया जिसका पूरे बस्तर को इंतजार था। 6 जनवरी 1910 को पूरे बस्तर में भूमकाल की आवाज गूंज उठी। जय भूमकाल, जय दंतेश्वर, जय गुंडावी, जय बस्तर, रणभूमि का स्वर।

0: name is Gunnar, sir.
1: What?
0: Yes, sir. Sunai, ye wahi ladka hai jo aapko Neknar mein mila tha.
1: Oh, I see.
0: Sir, Buster is sounding very different this time. Ye tribal log aapko pareshan kar sakta hai.
1: Tum aapko bahut darata hai kya? Lekin aap nahi darta. Mera paas tope aur Raja Rudra mera chamcha. Or tribal? Uska haath mein cheer kaman ke alawa kya hai?
2: रानी माँ हमारे हाथ में पूरा बस्तर आ गया है।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है लाल साहब।
2: हाँ रानी माँ, गीदम, बारसू, डोंगर, आभूजमार, काकी, सब जगह भूम कालेयों ने जीत हासिल की। देवरी, मुकुंद, आयतु, बच्चू पंडित सबने गजब की वीरता दिखाई है। और गुंडा ने तो कमाल ही कर दिया।
3: सच, यकीन ही नहीं होता।
2: बस अब राजधानी बच गई है रानी माँ। टिब्रेट और गियर वहीं है महल में।
3: हाँ, आज रात को ही महल पर हमला कर दिया जाए। गुंडा को खबर पहुँचा दीजिए लाल साहब।
2: ठीक है रानी माँ। आगे बढ़ो। आए तू बच्चू, तुम महल के पीछे से प्रवेश करो। जय भूतान, जय दंतेश्वरी। देवी,
4: राजा रुद्र प्रताप पर हथियार मत चला।
2: क्यों?
4: ये रानी साहिब का आदेश है।
0: राजा रुद्र प्रताप को कब्जे में ले लो।
1: यस सर।
5: ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ।
0: इससे हम अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता राजा प्रताप। गुंडा, रुक जाओ, नहीं तो हम गोली चलाएगा तुम पर। रुक जाओ गुंडा, तुम हमसे मिल जाओ, हम तुमको बहुत सारा इनाम देंगे।
5: मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूँ डिफेक्ट।
0: अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें राजा रुद्र सबको गोली मार दूंगा।
5: जय भूम काले।
0: राजा रुद्र, तुम गुंजा को मारो, नहीं तो मैं तुमको मार देगा।
5: उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा डिब्रेक। मैं तुझे मारे बगैर नहीं मर सकता डिब्रेक।
3: अरे अरे नहीं, ये तुमने क्या किया गुंडा?
5: कुछ नहीं रानी माँ, मैं तो बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। भूम काले को सार्थक करने के लिए ये जरूरी था।
3: क्या कह रहे हो गुंडा?
5: हाँ रानी माँ, हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो राजा रुद्र प्रताप को भूमकाल का अर्थ समझ में नहीं आता। इसके बिना बस्तर का भूमकाल अधूरा था।
3: तुम धन्य हो गुंडा।
5: अधूरा था।
3: धन्य हो।
5: अधूरा था।
3: जय गुंडा वीर।
6: इसी के साथ गुंडा वीर अनंत आकाश में लीन हो गया। बस्तर को मिली एक नई सुबह, एक नया दौर। इतिहास गवाह है, इसके बाद कोई गियर और डिब्रिट बस्तर में टिक नहीं सके। जय गुंडा वीर, जय बस्तर।

0: परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए फूनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर. तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांती.
1: ओम शांती एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
2: थैंक यू सो मच.
1: लास्ट एपिसोड में आप पर्पस की बात कर रहे थे और पर्पस ऑफ लाइफ तो दुनिया ढूंढती रहती है. व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई एम आई हियर, क्या है दुनिया, क्यों बनाई भगवान ने ये. और हम जब एक चीज रॉन्ग जगह ढूंढेंगे तो कितना मतलब गलत कर रहे थे. आज मुझे ये देख के और सुन के एकदम मतलब आंखें खुल गई कि मैं ढूंढ के आ रहा हूं और पर्पस को. इट्स जस्ट लाइक दैट सिली जोक कि मेरी नीडल खो गई.
2: हाँ.
1: तो आप कहां ढूंढ रहे हो? यहां. तो वहां लाइट नहीं, इसलिए मैं यहां ढूंढ रहा हूं.
2: हाँ.
1: तो आई थॉट इट्स सो सिली, बट एक्चुअली पर्पस ऑफ लाइफ इज विद इन मी एंड द गिफ्ट ऑल्सो. और गिफ्ट्स में आज तक वही समझता था, देखो इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इसको प्रेसिडेंट बना दिया, इसको फलाने नंबर वन एक्टर बना दिया, इसको नंबर वन स्पोर्ट्समैन बना दिया. मतलब आई यूज टू काउंट दोज इज गिफ्ट्स. बट जब आपने ये बोला तब से एकदम माय एटीट्यूड, माय थिंकिंग एंड समथिंग लाइटर आई एम फीलिंग.
2: क्योंकि व्हाई आर वी फीलिंग लाइटर? बिकॉज नाउ वी अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज नॉट अबाउट लुकिंग, फाइंडिंग एंड टेकिंग. क्योंकि नहीं तो खोज ही है ना सारा दिन, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. अच्छा, चाहिए चाहिए भी ठीक था, लेकिन फिर मिलने के बाद उसकी चिंता भी है कॉन्स्टेंटली, फिर फियर भी है कि खो ना जाए चीज.
1: ये तो नहीं खोती ना.
2: हाँ, ये तो बढ़ती है ना. ये तो बढ़ती है जितना देंगे, लेकिन अगर देंगे नहीं तो घटती है.
1: अच्छा.
2: देंगे नहीं तो घटती है. सम्मान चाहिए, सम्मान देंगे नहीं तो घटता है, लेकिन सम्मान देते जाएंगे, द एनर्जी विल फ्लो थ्रू मी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बेनिफिट. एंड जितना हम इसको करते जाएंगे, हमने ये देखा कि ये पर्पस हमारा वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की शक्ति को कॉन्सेंट्रेट करके कागज को जला सकता था. मतलब इतना प्रभाव था उसके
1: अंदर. आप कह रहे थे ना फोकस फोकस फोकस.
2: सो दैट फोकस will this purpose of life will become the magnifying glass. अब आत्मा की शक्ति को इस पर्पज के फोकस के थ्रू सारा दिन कार्य में लेकर आए तो वो शक्ति अब पावर का काम करना शुरू कर देगी. लेकिन सिर्फ ये याद रखते हुए that my purpose of life is guided by values. All my values. ये ना हो कि किसी और ही डायरेक्शन में चले जाए फिर. ये ध्यान रखेंगे
1: तो कैसे हो सकता है जब पर्पस ऑफ लाइफ अगर सोल

0: क्वालिटीज ये हैं, तो वैल्यूज कैसे हट जाएंगी।
1: इसीलिए ना हमेशा साथ में पकड़ के रखना पड़ता है ये कंपस, क्योंकि हमारे इतने जन्मों का संस्कार है ना दूसरे डायरेक्शन में जाने का, तो इट डजंट टेक टाइम फॉर अस टू स्लिप ऑफ इन द होल्डिंग। इफ यू बी वेरी केयरफुल दैट आई शुड नॉट स्लिप अवे फ्रॉम माई पर्पज।
0: जैसे जीवन में एक्सीडेंट हो जाते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं,
1: तो मुझे वो ध्यान हमेशा
0: अवेयरनेस नहीं रहती है ना।
1: जैसे आपने कहा कोई बात आएगी, किसी ने आपने कहा कोई सेल्फिश है, कोई मैनिपुलेटिव है, कोई श्रूड है, वॉट इज माई पर्पज ऑफ लाइफ, ये मुझे नहीं भूलना है।
0: बट सिस्टर एक बात बताऊं, श्रूड सेल्फिश कनिंग पीपल जब दिख जाते हैं और पता नहीं मुझे पता भी चल जाता है, तब मैं आई डोंट लाइक दम, ऑनेस्टली अच्छे नहीं लगते मुझे वो।
1: क्यों अच्छे नहीं लग रहे?
0: मुझे अच्छा ही नहीं लगता, अवॉइड करना चाहता हूँ। आप बोल रहे थे लास्ट एपिसोड में कि वो बीमार है, उसको प्यार दो, उसको ये दो, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि आदमी ऐसा है, इतना ही अपना आई रादर बी अवे।
1: और अगर उनसे दूर हो जाएंगे तो अपने पर्पज ऑफ लाइफ से भी दूर हो जाएंगे सर।
0: पर्पज ऑफ लाइफ तो अपने खुद को ही तो सुधार लूं पहले,
1: वो ही तो सुधारना हो जाएगा ना।
0: कैसे?
1: जैसे आपने कहा ये ऐसा है इससे दूर हो जाओ, ये सेल्फिश है इससे दूर हो जाओ, ये मैनिपुलेटिव है इससे दूर हो जाओ, तो हर एक से दूर होते गए तो अपने को कैसे सुधारेंगे फिर? अपने आप को सुधारना मीन्स पहले मैं उनके साथ डिस्टर्ब हो जाता था, पहले मुझ पर उनका प्रभाव पड़ जाता था, पहले मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उनको एक्सेप्ट करके स्वीकार करके मैं अपना नॉर्मल स्वभाव रखूं, वो पावर मेरे पास नहीं थी। लेकिन अपने आप को सुधारना मतलब वो सब कुछ करना शुरू कर देना, लेकिन भाग गए उनसे तो फिर कैसे करेंगे? फिर तो नहीं हम अपने आप को सुधारेंगे।
0: अब भागेंगे नहीं और दूसरे को सुधारने जाओगे,
1: दूसरे को तो सुधारना ही नहीं है,
0: समझा भी नहीं सकते, सिखा भी नहीं सकते। इट्स सो डिफिकल्ट सिस्टर। जो आदमी आप बीमार की बात कर रहे हो, जो आदमी सेल्फिश है और उसको मालूम भी रहता है कि आई एम ऑलवेज राइट, और आप उसको सुधार भी नहीं सकते, तो फिर आप भागेंगे ना। अभी तो यार छोड़ो, सुनता तो है
1: कि आई एम ऑलवेज राइट एंड फील करे कि आई एम ऑलवेज राइट। आपकी इंटेंशन क्या थी?
0: मेरी इंटेंशन तो ये थी कि मैं उसको सही बताऊं कि भाई
1: बताऊं, ठीक है,
0: क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुझे बता रहा हूं,
1: ठीक है। लेकिन हरेक नहीं है ना रेडी सुनने के लिए,
0: मोस्टली लोग नहीं है,
1: नहीं है सपोज। तो मुझे अपने ऊपर वर्क क्या करना है कि अब मुझे इनके साथ काम करते हुए मेरे मन की स्थिति की जो डिस्टर्बेंस पहले होती थी उसको मुझे धीरे धीरे कैसे कम करना है?
0: कैसे?
1: जस्ट बाय ऑलवेज कीप ऑन रिमाइंडिंग माई सेल्फ इट्स ओके, दे आर लाइक दिस।
0: पूरा दिन ये मंत्र पढ़ता रहो, ये सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है।
1: व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू? सी वी हैव टू, वी रियली नीड टू स्टॉप एंड थिंक कि हम क्या करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो बदल जाए, ये चाह रहे हैं हम वो बदल जाए।
0: एक्चुअली दीपा भी नहीं, ये तो यही निकल रहा है आपसे बात करते हुए।
1: हमें ये रिफ्लेक्ट करना पड़ता है हम क्या चाहते हैं। डीप डाउन हम ये चाहते हैं कि वो बदल जाए।
0: बदलने में भी और भी डीप डाउन ही चाहिए, वो अच्छा हो जाए ना, बेटर हो जाए।
1: क्यों?
0: बिकॉज आई फील दैट ही और शी इज रॉन्ग।
1: बट यू फील ना, दैट पर्सन डजंट फील। इट्स सिंपल। सपोज मैं ऐसे करके बैठी हूं इस पे, सपोज ये मेरे लिए कंफर्टेबल भी नहीं है और आप मेरे लिए बार बार कहें कि आप बदल जाओ, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे बैठो। आपका कहना अच्छा है लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इफ आई जस्ट टर्न बैक एंड से थैंक यू, आई एम वेरी कंफर्टेबल द वे आई एम, मैं सही हूं, मुझे नहीं चेंज होना है, अब क्या करना है? अब आपको अपने अंदर वो पावर लानी है कि मुझे देखते हुए ऐसे बैठे हुए आपके यहां एक भी थॉट नहीं क्रिएट होनी चाहिए।
0: यहां पर ये बोल सकते हैं कि भाई आई हैव डन माय ड्यूटी, मैंने बोलना था मैं बोल दिया, आगे उसकी मर्जी,
1: दैट्स इट। एंड बियॉन्ड दैट मेरी ड्यूटी क्या है कि उनको मैं अब कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं भेजू, क्योंकि जब हम ये लाइन भी कहते हैं आई हैव डन माय ड्यूटी, बियॉन्ड दिस आई कैन नॉट डू एनीथिंग, तो उसके बाद हम बोलना तो बंद कर देते हैं क्योंकि हम अपने आप को समझा देते हैं।

0: डन माई ड्यूटी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम बोलना बंद कर देते हैं, हम सोचना बंद नहीं करते हैं.
1: ओके
0: है ना, हम सोचना बंद नहीं करते. अब आप मुझे बोलना बंद कर दें, क्योंकि आपने मुझे चार बार बोला ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं बैठो. मैंने बोला थैंक यू, मैं ठीक हूँ.
1: लेकिन उसके बाद मैं पता क्या सोचता हूँ, इसको 10 बार बोला है अभी तक नहीं सुने.
0: हाँ.
1: क्या करूँ, कैसे बोलूँ, सुनते ही नहीं है, इनके साथ तो बैठना ही नहीं चाहिए.
0: हाँ.
1: ये तो जब यहाँ आएंगे तो मैं तो कहीं और चला जाऊंगा.
0: हाँ.
1: ये लोग खाना खाएंगे तो मैं बोलूंगा नहीं खाना है, भूख नहीं लग रही.
0: हाँ.
1: क्या क्या क्या क्या सोचता हूँ.
0: एक एक थॉट सोल पावर को
1: डिप्लीट
0: कर रहे हैं, ये एक एक थॉट शरीर की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं. जितनी ये एक एक थॉट मुझ तक पहुंचेगी, तो मैंने भी आपके लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर देना. फिर मैंने जो सोचना है आपके लिए,
1: कैसे?
0: क्यों, आपकी जब नेगेटिव वाइब्रेशन मेरी तरफ आएगी तो
1: मैं अगर सोचा कि ये तो 10 बार बोला, 20 बार बोला, सुनते नहीं, ठीक है आजकल ऐसे ही है, जो मर्जी करें, लेकिन देखो कितना खराब लग रहा है.
0: वेरी गुड. अब ये जब थॉट्स कॉन्स्टेंटली और ये थाउजेंड्स के नंबर में आएंगे मेरे पास,
1: क्यों,
0: क्योंकि आप बहुत बार सोचेंगे ऐसा.
1: हाँ, मैं कंटिन्यू सोचूंगा, 1000 बार सोचूंगा.
0: अब जितनी ये थॉट्स,
1: अच्छा ये भी नहीं कि मैं छोड़ के चला जाऊं उठ के, तब वहां भी सोचूंगा.
0: तो फिजिकल तो जाने का कोई फायदा नहीं होता कहीं.
1: तो वो फिर वापस सोचेंगे.
0: आप यहाँ मेरे को लिए ये सब सोचेंगे तो मैं आपके लिए क्या सोचूंगी. जब देखो अपने आप को ही सही समझते हैं, सोचते हैं सब कुछ, यही जानते हैं, ये मुझे बताएंगे कि मुझे कैसे बैठना है.
1: इंटरेक्शन चलता जाएगा,
0: अंदर चल रही है. मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे बैठना है. आपको जैसे बैठना है आप बैठो अपने जीवन में, मुझे जैसे बैठना है मैं
1: सिस्टर एक मिनट इसको क्लियर कर लो. मैं समझ रहा था मेरा इंटरेक्शन मेरे साथ चल रहा है, उनका अंदर में उनके साथ चल रहा है, एक दूसरे के साथ भी चल रहा है.
0: वी से द टू माइंड, जो एक के लिए सोचेगा वो दूसरे तक पहुंचेगा,
1: फिर वापस वो सोच के भी यहाँ पहुंचाएगा.
0: जब आप मेरे लिए ये सोच रहे हैं तब आपकी पावर डिप्लीट हुई फर्स्ट स्टेप. फिर यहाँ आई, फिर मैंने आपके लिए कैसा कैसा सोचा. मैं कितना गंदा सोच सकती हूँ उसके बाद, पता नहीं अपने आप को क्या समझा हुआ. जब देखो दूसरों को कंट्रोल करते रहते हैं, ऐसे होता है क्या, हमें नहीं रहना इनके साथ, मैंने ऐसा सोचना शुरू कर देना, तो ये सारी थॉट्स भी आप तक पहुंचेंगी. ये भी आत्मा की पावर को क्या करेगी, डिप्लीट
1: करेगी
0: आपको भी.
1: हाउ द अदर पर्सन कैन डिप्लीट माइंड.
0: व्हेन वी रिसीव नेगेटिव वाइब्रेशंस फ्रॉम पीपल, हाउ विल वी फील. अगर हमारे लिए कोई गलत सोच रहा है और हम
1: ऑलरेडी, ये तो बहुत डेंजरस बात है.
0: ये है बहुत डेंजरस.
1: इसका मतलब लोगों को भी मेरे बारे में गलत सोचने नहीं दूं.
0: हाँ, उसका एक सिंपल तरीका है, मैं लोगों के लिए अच्छा सोचूं, मुझे और कुछ नहीं करना. ऐसे नहीं है कि मैं हरेक की जाके थिंकिंग को चेंज करूंगा अपने बारे में, लेकिन ये विशेष साइकिल देखो कितना बनेगा. आप मेरे लिए नेगेटिव सोचते सोचते पावर डिप्लीट हो गई, तो पहले ही कमजोर है ना, डिप्लीट हुई ना, मन की स्थिति अभी कैसी है, लो है, वो यहां पहुंचा, तो मैंने आपके लिए और नेगेटिव सोचा. वो जब आपके पास पहुंचेगा तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डिप्लीटेड कंडीशन में थे. अब जब वीक और हुए तब मेरे बारे में अच्छा सोचना तो इम्पॉसिबल है, अब और नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे. दिस, लुक एट हाउ दिस कैन एस्केलेट.
1: एक बीच, एक थॉट कैन डू सो मच ऑफ,
0: से तो वृक्ष बनता है,
1: सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन.
0: एक बीच से वृक्ष बनेगा उस रिश्ते का.
1: ओह माय,
0: उस रिश्ते का वृक्ष है ये.
1: सो हाउ इम्पोर्टेंट इज वन थॉट.
0: वन थॉट,
1: इसमें इतनी शक्ति है.
0: थॉट संकल्प से सृष्टि है,
1: पूरी सृष्टि संकल्प से बन सकती है.
0: संकल्प से सृष्टि है, हमारे संकल्पों से हमारी दुनिया है, हमारी पूरी दुनिया हमारे संकल्पों के आधार पे है. माय वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्लोब, आई एम टॉकिंग अबाउट माय वर्ल्ड. माय वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन माय थिंकिंग.
1: आई यूज्ड टू थिंक माय वर्ल्ड मींस माय बिलोंगिंग्स, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, मेरी दुनिया है ये.
0: ठीक है, बट इसमें भी ये मेरी दुनिया है ना, माय फैमिली, माय बॉडी, ये मेरी दुनिया है सारी, यही मेरी दुनिया
1: है.
0: लेकिन इस दुनिया की क्वालिटी क्या होगी, किस पे डिपेंडेंट होगी,
1: मुझ पे,
0: मेरी थिंकिंग,
1: मेरे थॉट्स पे,
0: मेरी थिंकिंग. इसीलिए आत्मा की पावर कितनी इम्पोर्टेंट है. अब ये जो हम कर रहे हैं पिंग पोंग गेम ऑफ नेगेटिव एनर्जी, ये सिर्फ एक आत्मा के साथ नहीं करते. फिर कमजोर होने से हम दूसरी आत्मा के साथ भी यही करना शुरू कर देंगे. ये करते करते वी जस्ट नीड

0: विजुअलाइज,
1: मतलब ये करते करते इसी को आप संस्कार कहते हैं, हैबिट,
0: ये हैबिट फिर
1: ग्रूव जो आप कह रहे थे,
0: ये फिर हैबिट सिर्फ मेरे साथ नहीं होगी ना।
1: हाँ, तो आदत पड़ जाएगी सभी के साथ करें।
0: सभी के साथ होते होते किसकी पावर डिप्लीट हो गई, नुकसान किसका हुआ, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हुए, दूसरों के बारे में गलत बोलते हुए, दूसरों को ब्लेम करते हुए कमजोर कौन हुआ? आई बिकेम वीक।
1: यू सो राइट सिस्टर। जैसे आप कह रहे कि एक ही चीज में, जैसे उस दिन वो चाय, मुझे देर हो रही थी, गोल्फ खेलने जाना था, गाड़ी में सामान रख दिया था, तो मैं चाय मांगा तो मतलब मैं कहाँ रखूं, तो मतलब मेरे सर पे रख दे क्योंकि मुझे देर हो रही। उसके बाद ये चीज खत्म नहीं हुई, गाड़ी में ड्राइवर थोड़ी देर के बाद पूछता कहाँ जाना, तो मतलब आपको वहां फिर मैंने कुछ बोल दिया, मैंने गोल्फ का सामान रहे, जाना कहाँ है और क्या, एयरपोर्ट जाना है। तो मतलब ये बात अंत नहीं होता है ना, एक शुरू हुआ तो एक बीच एक थॉट।
0: लेकिन आप अभी यहाँ बैठकर आपको लग रहा है कि वो ऐसे बोला, लेकिन उस टाइम जब बोला था
1: तो मतलब इतनी अकल नहीं है,
0: तब उस टाइम सही लगा था ना।
1: उस टाइम पे वो आदमी मुझे बेवकूफ लगा था, ड्राइवर
0: की
1: मैं गोल्फ का बैग लाया, सामान लाया, फिर कहाँ जाना है बुझ रहे।
0: वो जवाब जब हम देंगे तो इसका मतलब हमारी मन की स्थिति इरिटेबल है ना,
1: थी ना, अच्छा ऐसे ही शुरू हो गई, एक तो लेट आई, एक तो फिर वो शक्कर भूल गया।
0: इसीलिए जो आपने कुछ दिन पहले वो थॉट सुनाए ना, वन थॉट विल अट्रैक्ट द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन
1: एंड द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन
0: एंड द नेक्स्ट वन। कितना इम्पोर्टेंट है एक थॉट। इसीलिए जैसे ही अपने आप को देखें ऐसे होते हुए, कट करना पड़ेगा, एंड इट वर्क्स,
1: हो जाएगा,
0: इट वर्क्स, बिल्कुल वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सारे संस्कार बदल जाएंगे, वो आएगी थॉट्स, लेकिन उसको अगर वृक्ष बनने दे दिया, फिर वो वृक्ष से जंगल बन गया।
1: अच्छा, अब यहाँ जो आप कह रहे थे कि अपने आप से जब हम बात करते हैं तो वो टाइम पे अपने आप को जस्टिफिकेशन नहीं देना, तो अब जब मैं वहां बात करूं कि तो हाँ यार वो तो नौकर चाय नहीं लाया, चक्कर नहीं लाया, ये नहीं, तो बोलूंगा ना, चिड़ूंगा, और रखने की कहां जगह, इतनी तो अकल होनी चाहिए, ट्रेन नौकर घर पे होने चाहिए, चाय तो टेबल पे ही रखते हैं, ये सब मैं अगर करूं तो फिर मैं अपने आप को सुधारने में,
0: ये करने की वजह से गाड़ी में बैठते फिर से सेम चीज कर दी। यही अगर उसी टाइम ये कर दिया होता कि ठीक है उसका क्वेश्चन बहुत सही नहीं था, लेकिन मुझे जवाब इस तरह से नहीं देना चाहिए था,
1: नहीं था।
0: मैं बोल सकता था हाँ टेबल पे रख दो, और अगर मैंने
1: उसमें नहीं कहा रखो तो यहाँ एक वर्ड ही बोल सकता था,
0: मैंने कहा था दो लाइन बोल दी उसकी जगह, कितनी पावर,
1: एक ही वर्ड बोल सकता यहाँ
0: बस। सी इट्स नॉट, वी कैन नॉट गो इन टू गिल्ट सेइंग कि मैंने क्यों नहीं बोला उस टाइम, मुझे ऐसे करना चाहिए था। आफ्टर इट हैज हैपेंड, इंसिडेंट यहां से नहीं जाता है, जब यहां खत्म हो जाता है सिचुएशन, यहां खत्म हो जाती है, यहां नहीं खत्म होती है, इट विल स्टे ऑन द माइंड फॉर सम टाइम। वहां उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दो कि उसने ऐसा बोला, मुझे जवाब देना चाहिए था, यहां रख दो। अगर वो हम कर देते उस टाइम, फिर जब हम कार में बैठते और तब अगर ड्राइवर बोलता ना कहां जाना है, तब आपका जवाब होता गोल्फ के लिए जाना है, तब आप ये नहीं बोलते एयरपोर्ट थोड़ी जाना है। Just that little thing which had to be done.
1: एक बात और पूछना चाहूंगा यहाँ, यहाँ मैंने तो बोल दिया, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे चले, वो छोटे से लड़के के स्टाफ के, उसके मन में क्या चला होगा जब मैं बोले सर पे रख दे।
0: अगर आप उसकी जगह होते तो आप कैसा सोचते सामने वाले के बारे में?
1: नहीं, यहाँ तो मैं गेट में जाता कि मुझे अकल नहीं है, यहाँ ऐसे जाता, यहाँ बोलते ये साहब पागल है, इनसे पूछो नहीं।
0: लेकिन जब वो आपके बारे में ऐसा सोचेगा कि सर ऐसे हैं, तो उसने आपको कौन सी वाइब्रेशन भेजी?
1: उसने तो बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन,
0: ये नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से कार में बैठ के फिर से गलती हो गई,
1: तो उसने भी फिर नेगेटिव
0: भेजी,
1: ड्राइवर ने भी दी,
0: फिर जब नेक्स्ट जगह पर पहुंचेंगे कोई और स्टिमुलस आएगा, फिर गलत रिएक्शन हो जाएगा। This is only the meaning of one thought to the next, to the next, to the next, to the next. And ये सही एक चेन में भी अगर गलत गलत गलत भी चल रही है, उस चेन को बीच में कट के एक सही भी डाल दी थॉट, एक सही भी, सपोज स्टाफ के साथ चाय पर गलती हो गई, नेवर माइंड, कार में बैठ के फिर गलती हो गई, नेवर माइंड, लेकिन थर्ड गलती होने से पहले अपने आप को चेंज कर लिया, चेन बाकी थी कुछ है।
1: मैं एक थॉट आया मुझे अभी कि हम बात कर रहे थे इतनी बड़ी सोल की और सोल की क्वालिटीज की, और

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुणे री आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो,
1: सबके कदम देखो रंग पम पम। उठे सबके कदम देखो रंग पम पम।

0: कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंसो और हंसाया करो
1: उठी सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तररम

0: था मेरा ज़मान जब हम तुम
1: हम बन गए हैं सनम बेधड़क मेरे घर आया करो कभी खुशी कभी गम सारा राम हम

0: internally stable, but now I'm being assertive. So internal stability means, you know, no trace of anger. Usko jab pura khatam hoga, internally bilkul calm and in control hai, lekin phir bhi aapko discipline karna, you know. And assertive jab hum hote, hume bahut kam bolna padega, bahut zyada, you know, aur bahut soch samajh ke ek ek bol niklega. Kyunki aap full in control hai. Anger mein या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है श्रेष्ठ वृद्धि का निर्माण कैसे करें। वृद्धि का अर्थ होता है रुझान, लालसाएं आदि, जो किसी भी विषय किसी भी दिशा में हो सकती है। वृद्धि का निर्माण संकल्पों से होता है और संकल्प हमारी आत्मा में संस्कारों, संबंध, संपर्क, वातावरण, घटनाओं आदि के प्रभाव से निर्मित होते हैं। हमारे चयनित संकल्पों से हमारी वृद्धि का निर्माण होता है। वृद्धि से प्रकंपन, वायुमंडल, वातावरण आदि का निर्माण होता है, जो हमारे कर्मों को श्रेष्ठ या भ्रष्ट बनाते हैं। जैसे संकल्प आया कि हमारे पास आने वाला व्यक्ति चोर है, इससे हमारी वृद्धि उसके प्रति अशुभ हो सकती है, जो हमारे बोल, व्यवहार व कर्म को प्रभावित कर सकती है। जैसा कि हम देखते हैं, भक्ति मार्ग का सर्वोच्च योग शास्त्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में इसमें वर्णित है कि योगश्चित वृत्ति निरोधक, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। यह हमें संकल्प शून्य की अवस्था व निसंकल्प समाधि की ओर ले जाता है, परंतु संकल्प शून्य होने के कारण ये शून्य से प्रश्न उत्पन्न होता है कि आत्मा गुण व शक्तियों को उनके संकल्पों के चिंतन के बिना कैसे अपने में समाएगी या धारण करेगी, वह आत्मा सत्व प्रधान कैसे बनेगी। शिव परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे सरल ज्ञान व सहज राजयोग को ग्रहण करके ही आत्मा सत्व प्रधान या गुण शक्तियों से संपन्न बन सकती है। अच्छे संकल्पों के माध्यम से श्रेष्ठ प्रीति विकसित करके हम श्रेष्ठ कर्मों द्वारा ही सत्व प्रधान बन सकते हैं। वृत्ति के आधार से हम अपने पुरुषार्थ को ज्ञात कर सकते हैं कि किन किन विषयों में हमारी अवस्था क्या है। जिस विषय में हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है, उनमें हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा होगा। जिस विषय में हमारी वृत्ति कम है, उसमें पुरुषार्थ भी कम होगा। कमजोर वृत्ति को श्रेष्ठ बनाकर चारों विषयों के पुरुषार्थ में बैलेंस को हमें बढ़ाना है। शिव बाबा कहते हैं कि संकल्पों से वृत्ति व वृत्ति से दृष्टि, कृति सृष्टि आदि की रचना होती है। अपनी दृष्टि, कृति व सृष्टि को श्रेष्ठ बनाने के लिए

पत्नी को श्रेष्ठ बनाना होगा, परंतु कैसे? तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है श्रेष्ठ विभूति का निर्माण कैसे करें। एक होता है ऐश्वर्य ज्ञान, जितना हम ज्ञान मुरली को सुनते हैं या हम जितनी भी ही ज्ञान की पुस्तकों को बार बार पढ़ेंगे उतनी ही श्रेष्ठ संकल्पों की रचना अधिक होगी। इससे ही हमारी वृत्ति उत्तम बनेगी। इसके लिए इस निश्चय के साथ प्रतिदिन पढ़ना जरूरी है कि परमात्मा शिव हमें पढ़ा रहे हैं। एक होता है कमजोर संकल्प। संकल्प जो होता है, अगर कमजोर संकल्प श्रेष्ठ संकल्प के साथ मिक्स होने से वृत्ति खराब बन सकती है। इससे भ्रष्ट, गलत व पाप कर्म हो सकते हैं। श्रेष्ठ संकल्प के साथ कई बार विकल्प व कमजोर संकल्प भी आता है। तो यहाँ पे हमें देखना है जो श्रेष्ठ संकल्प को दबा देता है, इस कारण श्रेष्ठ वृत्ति के साथ इसके स्थान पर गंदी वृत्ति बन सकती है। अतः जागरूक रहकर श्रेष्ठ संकल्प को सदा ऊपर रख उसी पर ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है, तभी श्रेष्ठ वृत्ति का निर्माण हो, श्रेष्ठ कर्म हो सकती है। ईश्वरीय सेवा भी हमें करनी है। ईश्वरीय सेवा से हम अपना भाग्य बनाते हैं। सेवा करने से पहले यदि हम श्रेष्ठ वृत्ति का भी निर्माण कर लेगी, क्वालिटी की सेवा करनी है, तो सेवा ज्यादा प्रभावी या फलदायक सिद्ध हो सकती है। मेरा अनुभव है कि कुछ दिन पहले स्कूल सेवा पर जाने से पहले मैंने श्रेष्ठ वृत्ति का निर्माण किया कि बाबा आज मैं जो हूँ वह विद्यार्थी और टीचर्स को धारण और उन्हें समा जाए। इसका यह असर रहा कि प्रोग्राम की जो प्रोग्राम की गुणवत्ता थी वो बहुत अच्छी रही। प्रोग्राम के बाद टीचर ने कहा, सेवा निवृत्ति के बाद मैं आप जैसा जीवन जीना चाहती हूँ। शिव बाबा ने भी अपने एक अव्यक्त संदेश में कहा है कि ऊंची प्रीति के साथ सेवा करो। तो आपने देखा कि ऊंची प्रीति रखने से और सेवा करने से सभी का कल्याण होता है और सभी का इसमें भला भी है। हमारी भलाई भी इसी में, जब सबको श्रेष्ठ प्रीति के बारे में बताएं और समझाएं, इससे हमारी प्रीति और अच्छी बनेगी। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं संगीत।

सकता, कोई और हो ही नहीं सकता ब्राह्मणों के संग से पवित्र प्रीति का उदय होता है। इसी प्रकार दादा नेकराज, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और सुकरात आदि महापुरुषों की जो जीवन कहानी आदि पढ़ने से भी श्रेष्ठ प्रीति का निर्माण हो सकता है, इसके लिए श्रेष्ठ मित्रों का ही संग करना चाहिए। एक होता है मन का, एक निष्कर्ष होता है श्रेष्ठ प्रीतियों का निर्माण। व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्मों का आधार है इनका निर्माण करने के लिए लेख में उल्लिखित उपायों का को अपनाना है, उसे अपना कर श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अपने जीवन को महत्व देने या महान देव की श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारी श्रेष्ठ वृत्ति जो है वो किस प्रकार बन सकती है, हमारे वृत्ति हमारे संकल्पों पे ही, उसी के आधार पे हमारी वृत्ति बनती है। और इसे बनाने के लिए हमें थोड़ी सी प्रेरणा की जरूरत होती है और हम ज्ञान मूल्य से इसकी प्रेरणा ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

quoi, ça sert à quoi? سب کا کوا

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रन नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुणे की आवाज़ 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

जीवन अपना सुंदर सपना कौन पराया कौन है अपना प्यार सभी का अपने दिल में हो हर एक रंग के फूल है खिलते हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब हैं भाई भाई।

घर मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी है तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो मेरे खेत की मट्टी ने सोने के।

आइकुम बाइकुम काला तुणी जोदर मस्त ससुर बाड़ी रेल कम छमा छम पापिस के आलू दम आलू दम आलू दम दिंग पट्टा पट्टा दिंग रिपक्को।

0: रजम रजम रजम रजम रे
1: रिंग फटाफट ढिंग रे पाका
0: जन के सिख

नजर में कह दिया, नजर में कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा आँख में दिल रहता है दिलदार का। नजर में कह दिया, नजर में कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा

हर को खबर न मिले, समझने वाला समझ ले। ये भी अंदाज है इस बात के इजहार का, हमेशा आँख में दिल रहता है दिलदार का। नजर में कर दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा आँख में दिल

का एतबार टूट गया कि सब्र टूटने लगा। बाहर बोलिए मौका नहीं इनकार का, हमेशा आँख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा आँख में दिल रहता।

झीला झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किपला

हो नजर कहीं तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं कहिए हाथों में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जब

इस तन्हाई में ऐ हसीं इतनी दूरी भली नहीं, आया मौसम बहार का, रख ले दिल बेकरार का, मेरे हाथों तो मैं हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमा, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का, जा जा जा जा।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों के लिए हार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?